हर दान देवे सब मंगी जियो, भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा, हर कथा मंगे हर चंगी जियो, हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी जियो, आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा, रब रहा नहीं दूरी जियो, हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा, हर आप रहा पर पूरी जियो, हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा, हर वेखे आप अधूरी जियो, हर अंतर वाजा कौन है मेरे गोविंदा, हर आप वजाए त्यों वाजे जियो, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा, गुर शब्दी हर कब गाजे जियो, आपके शरण पवाएंदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राख लाजे जियो, वडभागी मिल संगति मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिदका जय जियो, गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो, मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो, मेरा नाम सखा हर पाई जियो, गुण गावो संत जियो, मेरे हर प्रभ केरे जियो, जप गुरमुख नाम जियो, भाग वडेरे जियो, हर हर नाम जियो, प्राण हर मेरे जियो, फिर बहुड़ न पव जल फेरे जियो, क्यों हर प्रभु वेखा मेरे मन तन चाओ जियो, हर मिलो संत जियो, मन लगा पाओ जियो, गुर शब्दी पाये हर प्रीतम राओ जियो, वड पागी जप नाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो, हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रभ पासा जियो, सतगुर मत नाम सद

इन विद कुशल होत मेरे भाई, क्यों पाइए हर राम सहाई। रहाओ कुशल ना गए मेरी सब माया, ऊंचे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया। हस्ती कोड़े देख विगासा, लस्कर जोड़े नेब खवासा, गल जेवड़ी हूं मैं के फासा, राज कमावे दैग सारी, माने रंग भोग बहुनारी, जो नरपत सुपने पे खारी। एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किच करे सो हर क्या पगता पाया, जन नानक हूं मैं मार समाया। इन

छाप कर उपाया, लख 84 जोन परमाया, साध संग पयो जन्म परापत, पर सेवा पद हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरहे दर्द।

पंजवां कर्म पूम में बो हो नाम पूरन होए तुम्हारा काम फल पावे मिटे जम त्रास नित गावे हर हर गुण जास हर हर नाम अंतर उर्धार।

अविनाशी गुर के बचन कति जम फासी गुर का बचन जी के संग गुर के बचन रचे राम के रंग जो गुर दिया सो

संत का किया सत्कर्मान रहाओ, गुर का बचन अटल अछेद, गुर के बचन कटे परम पेद, गुर का बचन कतो न जाए, गुर के बचन हर के गुण गाए, गुर का बचन जी के साथ, गुर का बचन अनाथ को नाथ, गुर के बचन नरक ना पवे, गुर के बचन रसना अमृत रवे, गुर का बचन प्रगट संसार, गुर के बचन न आवे हार, जिस जन होए आप कृपाल, नानक सतगुर सदा दयाल, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, जिन कीता माटी ते रतन, गर्भ में राखिया जिन कर जतन, जिन दीनी शोभा वड्याई, किस प्रभ को आस पहर त्याई, रमैया रेन साध जन पावो, गुर मिल अपना खसम त्यावो, रहाओ, जिन कीता मूड ते बक्ता, जिन कीता बेसुरत ते सुरता, जिस प्रसाद नवे निध

गुरका शब्द अमृत रस चाख। अवर जतन कहो कौन काज, कर कृपा राखे आप लाज। क्या मानस कहो क्या जोर, चूठा माया का सब शोर। करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। सर्व सुखा सुख साचाए हो, गुरु उपदेश मने में ले हो। जाको राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो।

सिर ऊपर ठाडो तवन राए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतुर सियाना, करने हार न बुझे बिगाना। अपनी गत मित आपे जाने, क्या को कहे क्या आंख वखाने। जित जित लावे तित तित लगना, अपना पला सब काहू मंगना। सब किछ तेरा।

ला पंजवा अनिक जतन नहीं होत छुटारा बहुत सियाणत आगल पारा हर की सेवा निर्मल हेत प्रभु की दरगे शोभा सेत मन मेरे गहो हर नाम का।

हजन शीत का लाह सुख, नाम जपत मन होवत सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिस आप दिवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसे, दुख दर्द ते नानक नसे। गौड़ी द्वारे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर मन ना अघाना। अनक रूप देख नहीं पता।

अखेड़ गिरत राजन की लीला, मन ना सुहेला पर पंच हीला, कर कृपा संतन सच कया, सर्व सुख एहो आनंद लया, साध संग हर कीर्तन गाये, कहो नानक वड पा।

पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाये राम के दासा। कवन सो विद जित राम गुण गाए, कवन सो मत जित तरे ए माए राव। जो पलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो बिखे समाने। जाने नाही जीत अर हार, इहो वलेवा साकत संसार। जो हला हल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग के नाही नेर, लख चौरासी परमता फेर। एक जाल पहाए पंखी, रस रस को

प्रब कृपा से नाम से आये, प्रब कृपा से बंधन छुटे, तो कृपा से हो मैं टूटे। तुम लावो तो लागे सेव, हमसे कछु न होवे देव। रहाओ खुद पावे ता गावा बाणी, खुद पावे ता सच वखाणी, खुद पावे ता सतगुरु मया, सर्व सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद पावे सो निर्मल कर्मा, जो तुद पावे सो सच धर्मा, सर्व निदान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेवक अरदास। मन तन निर्मल होए हर रंग, सर्व सुखा पावो सत्संग, नाम तेरे रहे।

निमख ना कृष्णा तेरी लाके हर रास्ता तू चाखे साद चाखत होए रहे विस्माद अमृत रसना पियो प्यारी ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ हे जेवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हर हर हर त्याओ आन न सुनिए कतहु जाइए साध संगत वड पागी।

कवन बपारी जाका उहां विसाहो नाम रतन को व्यवहारी अमृत भोजन करे आहारी रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय कवन सो जुगत जित कर पी जय पाए लगो तज में।

संगा ठाकुर नाम कियो उन्वर्तन त्रिपत अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हर सोग दो हूं ते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दीसे सब में सब ते रहते पार ब्रह्म का।

पुत्र कलत्र संग राता, व्यापत हस्त कोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत पूम रंक अर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल सिगार, पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हो फासा, व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा, आचार व्यवहार व्यापत ही जात, सब कुछ व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापै माए, तहु नानक जिन

संख प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संख प्रसाद सगल दुख मिटे, संख प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब कर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल ते आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक।

खैर अब मत दिन सी दुष्ट बिगानी जब ते सुनिया हर जस्तानी रहाओ सहज सुख आनंद निधान।

ओ सुखदाता जे नाम जपावे कर कृपा तिस संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस आप मिलावे सर्व निधान गुरु ते पावे आप त्याग मिटे आवन जाना साध के संग पावे।

दुख रोग कष्ट ना व्यापे, अमृत नाम हृदय हर जापे, पार ब्रह्म परमेश्वर क्या गुर पूरे ते मत पाए रहाओ, करण करावन हार दयाल, जी जन सगले प्रतपाल, अगम अगोचर सदा बेअंता, सिमर मना पूरे गुरुमंता, जाति सेवा सर्व निधान, प्रभ की पूजा पाये मान, जाति कहल न बिरती जाए, सदा सदा हर के गुण गाए।

प्रभ सेवक साचा वेसाओ गुर पूरे राखे दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे री महला पंजवा गुरु प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ वाणी पूरे गुरु की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बाँ पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुनः चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर करे साध कै संग सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खटियो जाका नहीं सुमार जिसे प्राप्त किस गुर दे नानक बिरथा कोई नहे गौड़ी द्वारे री महला पंजवा हस्त पुनीत

आप कमाओ अवरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश। जाके माथे एहो निदान, सोई पुरख जपे भगवान। आप तैर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हो तिस।

बिचर आ गया तिचर पोगे पोग जले न पाये राम स्नेही किरत संयोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हाथ जल जाये प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये शील संजम प्रिय आज्ञा माने इस नारी को दुख न जमाने कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया तन सती दरगे परवानिया गौरी ग्वारेरी महला पंजवा हम तनवंत पाग

सतगुरु अपनी कौ बलिहार है, छोड़ न जाई सर पर तार है। रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा पला कोई ना कही जाए, छोड़ मान हर चर।

दुख दर्द प्रमता का पाजी रहाओ। जा को रस हर रस है आयो, सो अन रस नाही लपतायो। जा का तहे दर्दे चले, सो किसको नजर ले आवे तले। जा का सब किस

सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए, ताको चिंता कतहु नाहे, जाके दिन सो मन से फरमा, ताके कछु नाही डर जमा, जाके हृदय दियो गुरनामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का

आपन तन नहीं जाके दरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं काको लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ, सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोयना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम, कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, इसका सब किस जिसका।

चाहे हर सा प्रीतम कर मन मीत प्राण आधार राखो सब चीत रहाओ। रे मन मेरे तू ताको सेव आद पुरख अपरंपर देव किस ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा।

कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ आया, केवल नाम रिदमाए समाया। गौड़ी महला पंजवा, साकी माई काको बाप, नाम तारीख झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

सो वड़ा जिन राम लिवलाई रहाओ पूमिया पूम ऊपर नित लुजे छोड़ चले कृष्णा नहीं बुझे कहो नानक ये तत बिचारा बिन हर भजन नाही छुटकारा। गौरी महला पंजवा

साथ जोग हर कै मार्ग पतित पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सद वसै हदूरा कहु नानक मेरा सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा। संत की तूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग मिटिया अंकार दृष्ट आवे सब एकंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय ले संचा कहो नानक जाका पूरा कर्म किस पेते साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा। हर गुण जपत कमल प्रगासे हर सिमरत त्रास सब नास।

हर गुण गावे वडे पाग साधु संग पावे रहाओ साध संग पाए निज नामा साध संग पूरन सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम बखान कहो नानक सो जन परवान जा कै हृदय वसै भगवान गौड़ी महला पंजवा एक सो जा का मन राता जिसरी तिसे पराई पाता बिन गोविंद ना दिसे कोई करण करावन करता सोई रहाओ मने कमावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत्कत है न डोले जाके हर तन सो सत्साओ गुर पूरे कर दीनो विसाओ जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा नाम भगत के प्राण आधार नामो तन नामो व्योहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत के सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे साफ साफ जन नाम समारे कहो नानक जिस पूरा पाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा संत प्रसाद हर नाम से आया तब के तावत मन तृप्ताया सुख विश्राम पाया गुण गाए श्रम मिटिया मेरी हति बलाए रहाओ चरण कमल आराध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊंच स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसिया करण हार नानक मन बस

चरण ठाकुर के मार्ग कहावो पलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम तय पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन का।

चरण कमल ठाकुर उरदार, दुलभ दे नानक निस्तार। गौरी महला पंजवा, जाको अपनी कृपा तारे, सोजन रसना नाम उचारे। हर बिसरत सहसा दुख व्यापे, सिमरत नाम परम पौ पागे। रहाओ हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। हर की टहल कर जन सोहे, ताको माया अगर न पोहे। मन तन मुख हर

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरु पूरा पेटिया लिव लाए, रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेज जमजाल, कहो नानक गुर पूरा पाया, ताके बहुर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा, रास लिया गुर पूरे आप, मन मुख को लागो संताप, गुरु

पर मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुख छीना रहाओ। अनेक वस्त्र सुंदर पहराया जो डरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम नेफल मानुक जपे नहीं नाम कहो नानक जा को कहे दयाला साध संग मिल पजे गोपाला। गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे तय दिन से निरपो हर के आया साध संग हर के।

चरण कवल रिद अंतर तारे, अग्न सागर गुर पार उतारे, बूढ़त जात पूरे गुर कांडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कहो नानक किस गुर बलिहारी, जिस पेटत गत पई हमारी, गौड़ी महला पंजवा, साग संगता की सरनी परो, मंकन अपना आगे तरो, अमृत नाम पीवो मेरे पाई, सिमर सिमर सब तपत बुझाई, रहाओ तज अभिमान जन्म मरण निवारो, हर के दास के चरण नमस्कारो, सास सास प्रभु मने संभाले, सो तन संचो जो चाले नाले, तिसे प्राप्त जिस

अमृत दृष्ट संत जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव, रहाओ मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण ताशा, दुख नाठे सुख आए समाए, ढील न परी जा गुर फरमाए, इस पुनी पूरे गुर मिले, नानक के जन

सगल रोग का बिन सिया खाओ। सहज सुभाए बोले हर बाणी, आज पहर प्रभ सुनरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हों बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल।

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से ब्रह्म पौ पागे। पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी। करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सतरास। गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा। हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग दे बिगानी। रहाओ नाम बिना नाही।

जो कुछ वर्त है सब तेरा पाना, हुक्म बूझे सो सच समाना, कर कृपा दीजे प्रभु दान, नानक सुमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्श पाये वड़ पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने भी नाही। राव सर्व निधान राखे जन माहे, ताके संग किलविक दुख जाहे, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाये, कर कृपा प्रभु बिनो सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय। गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

मेरे पाई मिल साधु हर नाम से आई रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुरु ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग तय परम मिटाया जत तत देखो तत

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुरु प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर स्यों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा। करे दो कर्म दिखावे होर, राम की दरगे बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल थल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बांदा चोटा खावे, अनक पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस

बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पए निहाल, कहो नानक गुर पए हैं दयाल। गौड़ी महला पंजवा, सिमरत स्वामी किल रिथना से, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा, रहाओ साध संग कछ पौ ना पराती, गुण गोपाल गाये दिन राती, कर कृपा प्रभु बंधन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस की गय जननीत। गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता।

सब सोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजे सागर वाला। गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए किस क्यों आलस क्यों बने माए खसम विसार आन कम लागे कौडी बदले रतन त्यागे रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सोभा अमृत रस खावे खान पान जिन दिए तिसे न जाने स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतरगामी। गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माए ध्यान सगल तीर्थ मजन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोट जन्म की मल ले जाए रहाओ हर की कथा हृद माए बताए मन बाचत सगले फल पाए जीवन मरण जन्म परवान जाके हृदय वसे भगवान कहो नानक से जन पूरे जिना प्राप्त साधु पूरे। गौड़ी महला पंजवा खादा पैन दा मुह कर पाए किसनो जो है दूत धर्म राए किस त्यों बेमुख जिन जियो पिल दीना कोट जन्म पर मैं बहुजूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो विसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उदर कृपा सागर पार ब्रह्म तेरी।

औखद मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार तज सब परम पजियो पार ब्रह्म कौ नानक अतल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग ना व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुरु मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संजम पूरी वजाई गुर कृपाल हर पै साई मान मोह खोए गुर परम तेस नानक पसरे पार ब्रह्म गौरी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का

नानक हर अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा आठ पैर संगी बटवारे कर कृपा प्रभ ले निवारे ऐसा हर रस रमो सब कोए सर्व कला पूरन प्रभ सोए रहाओ महातपत सागर संसार प्रभ खिन में पार उतारन हार अनित बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुक्त फल पाए उकत स्यान किसके कछ नाहे कर कृपा नानक गुण गाहे गौड़ी महला पंजवा थाती पाई हर को नाम विचर संसार पूरन सब काम वड पागी हर कीर्तन गाये पार ब्रह्म तू देहता पाये रहाओ हर के चरण

गिरदे उर्धार, पाव सागर चढ़ उतरे पार, साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख ना होए, प्रेम भगत पद गुणी निधान, नानक दरगे पाई मान, गौड़ी महला पंजवा, जल तल मैयल पूरन हर मीत, ब्रह्म बिन से गाए गुण नीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ, जा के सिमरन जम नहीं डरुआ, रहाओ चरण कमल प्रभु हृदय निवास, सगल दुख का होया नाश, आशा मान तान तन एक, साचे साकी मन में टेक, महा गरीब जन साध अनाथ, नानक प्रभु राखे देहात, गौड़ी महला पंजवा, हर हर नाम मजन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मूचे, रहाओ हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किल विख नसे, साध संग कीर्तन फल पाया, जम का मार्ग दृष्ट न आया, मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुटियो बिक संसार, कर कृपा प्रभु कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना, गौड़ी महला पंजवा, पौ शरणाई जिन हर जाते, मन तन शीतल चरण हर गाते, कै पंजन प्रभु मन ना बसाही, दरपत दरपत जन्म बहुत जाही, रहाओ जा कै हृदय बस्यो हर नाम, सगल मनोरथ ताके पूरन काम, जन्म जरा मृत जिस वास, सो समरथ सिमर सास गिरास, मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक, गौड़ी महला पंजवा, बार राख्यो हृदय समाल, कर आए गोविंद ले नाल, हर हर नाम संतन कै संग, मन तन राता राम कै रंग, रहाओ गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किल विच सब हिरिया, शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत, चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेक जीवे प्रताप, गौड़ी महला पंजवा, तन एहो थान गोविंद गुण गाए, कुशल खेम प्रभ आप बसाए, रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जह हर गुण गाही, हर बिसरिय दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे न नेरे, सोवड पागी निचल खान, जह जपिय प्रभ केवल नाम, जह जाइए ते नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी, गौड़ी महला पंजवा, जो प्राणी गोविंद त्यावे, पढ़िया अनपढ़िया पर

रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग में आया सो परवान। काट काट

साध तूर कर सुध मंजाई, अनक जला जे तो वै देही, मैल न उतरे सुध न तेही। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौ काल। मुकत पुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा, जीवन पदवी हर के दास, जिन मिलिया आत्म प्रगास। हर का सिमरन सुन मन कानी, सुख पावे हर द्वार प्राणी। रहाओ आठ पैर त्याई है गोपाल, नानक दर्शन देख निहाल। गौड़ी महला पंजवा, सांस पई

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करकारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मारस पीने, निरपो होए।

हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अंग निजागे, हर संग राता सहज कर वसे, हर संग राते प्रम पौ नसे, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिनको बल जाए, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी मैला पन्नवा, उद्यम कर शीतल मन भये, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पय आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कर आए, केतत साध संग गई बलाए, रहाओ, नेत्र पुनीत ते खत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की चीनी आप सहाये, सुख पाया लगदा

अस्थिर पर बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौरी महला पंजवा, कोट मज्जन तीनो स्नान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे, अनेक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम।

नाम जपते प्रभु सो मन माने, अदाज बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभु कृपा धारे। गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरु हृदय बसाया, गुरु गोविंद पार ब्रह्म पूरा, किसे अराध मेरा मन कीरा रहा, अंगिन जपो गुरु गुरु नाम ताके।

माई प्रभु की शरण उभरे सब कोए करण करावन पूर्ण सच सोए रहाओ अब मन बसिया करने हारा कै दिन से आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्याप काई। रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निर्भो गाई। गौरी महला पंजवा, कुछ बल वीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत गह लेहो अंगुरिया, रहाओ श्रवण ना सुरत, नैन सुंदर नहीं आरत। द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ, करुणा में साजन नीत।

मोहे करो बेनती को संत मिले वडपागी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोहे सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे आन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरुष रसिक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौरी महला पंजवा निकसरे पंखी।

मैं कोई संत मिला वे मेरा रहाओ। सेवा करो दास दासन की अनित पांच किस करो निहोरा। तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा। संत प्रसाद दाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा। अनद सुख पेटत।

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हो मैं पाई माया मो सबो जग सोया तिहु परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते पाई एक बस्त बिन पंच दुहेले ओ बस्त अगोचर ठाई। जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सो पाई अंत उपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर शरणाई। जिनके बंधन काटे

कर कृपा संत मिले मोहि तुमते तीरज पाया संति मंत दियो मोहि निरपो गुरु का शब्द कमाया जीत ले ओए महादुखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा ओ अविनाशी राया निरपो संग तुम्हारे बसते इहो धर्म कहाँ ते आया रहाओ एक महल तू हुए अफारो एक महल निवानो एक महल तू आपे

जाने जैसा पेट करावे बाजीगर ओ तैसो ही साज आने अनुक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या हो करे बिचारा जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक अप

सदन सुहेले सर्व सुखा में तुझते पाए मेरे ठाकुर अगे अतोले बरन नासा को तुमरे रंगा गुण निधान सुख दाते अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते प्रम्पो काट किए ने केवल जब के हूँ मैं मारी जन मरण को चूक।

सिर सिर करत सगल कर जोरे हैं, सर्व माया ठाकुर तेरी दोहे। पतित पावन ठाकुर नाम तुमरा, सुखदाई निर्मल शीतलो।

माँ पासी चेतक गनिये जन पार ब्रह्म रंग राते सूक सहज आनंद तिना संग उन समसर अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा। ताके चरण परो ता जीवा जन के संग निहाला भगतन की रेण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला। राज जोवन अवध जो दिसे सब किछ जुग में तातिया नाम निधान सब नवतन निर्मल एहो नानक हर तन खातिया। गौरी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुर के मोको सतगुर शब्द बुझायो।

अरे इकतरा एक किसके वस्तीये दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई विपूता पंच एक कर पेखिया सहज सुख सोकीनी पुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जय कहो नाही ता आसन बांधियो सिंगी अनहत बानी तत विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वद पागी पेटे माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औषध जा को गुर दिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो किन तंते गुर शब्द दीपक पर दासा।

श्रृंगार पूरन होई मन की आशा गुर के त्योहार श्रृंगार नाम खजाना भगति पाया मन तन तृप्त।

संग तुम प्रवरासे पोत पोत भगतन संग जोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत में भेद किछ नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहिय प्रगट प्रभ हुआ हम जन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अत ऊंचे सुखदाते प्रप्राण अधोरी।

सर्ब उजियारा गुरजान मने प्रगटायो अमृत नाम पियो मन कृत्या अनकह ठहरायो मान आ गया सर्व सुख पाए दुख है ठाउ गवायो जो सो प्रसन्न

ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जय रे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाए रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याए रे कोट पतित उधारे किन में करते बार न लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे रे

परम सुख दाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ महा कष्ट काते खिन पीतरे रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्न निवारे गर्भ कुंड नरक के राख पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वरे ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत।

मेरे हर भगत बिना जीत जन्म के रतन अमोलक साध संगत जप एक किना रहाओ सुख संपत बनता विनोद छोड़ गए बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चलियो है मूड़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन कर संग रूलिया मोहे मोया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है। गौरी महला पंजवा मन तर कर दे हर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नो रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिखिया पसरी अतकनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गुर के तत प्रम्पो खोया।

पीरे ओला नाम का अवर जे कर्म करावनो तिन में पव है जाम का रहा अवर जतन नहीं पाये वदे पाग हर के आये।

राम सेवक पैर कीन लख चौरासी जोन फिरे गोविंद लोक नहीं जन्म मरे बल बुद्ध स्यान पहुँ में रही हर साध शरण नानक गही। गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाये नीत नीत हर सेविये सास सास हर त्याये रहाओ संत संग हर मन वसे दुख दर्द अनेरा प्रम नसे संत प्रसाद हर जापी है सो जन दुख ना व्यापी है जा को गुर हर मंत्र दे सो उब

तू गुर प्रसाद कर राज योग हर रस जिन जन चाखिया ताकि कृष्णा लाखिया हर विश्राम निध पाया सो

गौड़ी महला पंजवा जा को बिसरे राम नाम ताहू को पीर साध संगत मिल हर रवे से गुणी गहीर रहाओ जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ताके कर तल नव निज सिद्ध जो जाने हर प्रभ तमी किचना ही ताके कमी करने हार पछानिया सर्व सुख रंग मानिया हर तन जाके गृह वसे कहो नानक तिन संग दुख नसे गौड़ी महला पंजवा।

पान सब का खाना रहाओ। ऐसे है रे खसम हमारा, खिन में साज सवार नहारा। काम करी जे ठाकुर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा।

अज्ञानी मानस पया जो नाही सो लो रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे प्रम तो हारिया।

सुख भय अकाल पुरख अदाद बोध सुनत जसो कोट अद थे कृपा निज प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाओ एक रैन के पावन तुम आए बहु जुग आस बदाए गृह मंदिर संपे जो दिसे जो तरवर की छाए तन मेरा संपे सब मेरी बाग मिलख सब जाए देवनहारा बिसरियो ठाकुर सुन मैं होत पराए।

रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलहरिए रहाओ, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइए, जो होए दयाल सतगुर अपना, ताए मत बुद पाइए।

कारी बुरा पला नहीं सुझिए, बुरा पला नहीं सुझिए। अनक बंधन माया परमत परमाया गुण नहीं गाया, मन बिछे ही मैं लुझिए। जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे, साध संग माया।

डाले हो, अब दुखों पंथ पहान रहाओ, सेवक सेवक सदा सेव तेरे संग बस है काल, कर सेवा तू साध की हो काती है जम जाल, होम जग तीरथ किए बिच होमे बदे विकार, नरक सुरग दोए पुंचना होए बहुर बहुर।

थिया। सतगुर सब समाया रहाओ, लाठी भूख त्रिसन सब लाठी, चिंता सगल बिसारी, कर्म मस्तक गुर पूरे तरयो, मन जीतो जग सारी। त्रिपद अधाए रहे रिद अंतर, दोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुरु दिया, टोट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाए पर्दा ठाकुर जो पेट्यो, तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई एहो अचंबो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पे बिगाता, गुर निधान हृदय ले राखिया। गौड़ी माला मैला पंजवा, उबरत राजा राम की सरणी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरणी रहाओ, शास्त्र सिमरत वेद विचारे, मां पुरखन यूं कहया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सुख न किन्हू लया। तीन पवन की लखनी जोरी, बूझत नाही लहरे, बिन हर भगत कहां स्थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मनमोहन, पूरन होत न कामा, जलतो जलतो कभू न बूझत, सगल बिरसे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, यह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की तूरा।

गुर सेवो अर नाम त्यावो त्यागो मनोगुमानी। गौड़ी माला पन्या माधो हर हर हर मुख कही है, हम ते कछु न होवे स्वामी, ज्यो राखो त्यों रही है रहाओ, क्या किस करे के करने हारा, क्या इस हाथ बिचारे, जित तुम लावो तित ही लागा, पूरन खत्म हमारे, करो कृपा सर्व के दाते, एक रूप लिवलावो, नानक की बेन

जिन प्रभत्याया सो सोभावन ताजियो, जिस साधु संगत तिस सब सो करणी जियो, जन नानक सह समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ सितारे जियो, संत देव संदेशा पै चरणारे जियो, खुद दिन कित बिद करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिद संदा जियो, पेट दर्शन इहो सुख लइए जियो, चरण पखार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पह कहिए जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन देखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप करिया जियो, इहो अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन वित प्यारे जियो, मन तन तेरा इहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरणाई जियो, जिस मिले मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाए जियो, प्रभ को सद बल जाए जियो, एहो निधान जपै वट पागी जियो।

माया मोहड़िया दे बुजार सारता से अखी जिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहा इकस दो चौ क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अद नाए रसियड़ा का विरली।

दिए पूरन सतगुरु ज्ञान रहाओ। जित कट वसे पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ। जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध। ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाद। पाए किरपाल गुसाइया नखे सोग संताप। तत्ती वाव न लगई सतगुर रखे आप। गुर नारायण दय गुर गुर सच्चा सृजन हार। गुर तुठे सब किस पाया जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा जप पूरन होए कामा रहाओ। राम गोविंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र। हर जस सुनिए जिससे सोई पाई मित्र। सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे। क्यों गोविंद मनो विसारिये जिस सिमरत दुख जाहे। जिस लड़ लगे है जीविये पव जल पईये पार। मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रात। नानक उबरे नाम जप दर सच्चे सा बात। गौड़ी माज महला पंजवा मीठे हर गुण गाओ जिंदु तू। मीठे हर गुण गाओ सच्चे सेती रतिया।

फिट सो जीवन सोए अंचल गह के साध का तरना इव संसार पार ब्रह्म आराध्य उदरे सब परवार साजन बंध सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थो कर हर के चरण निदान नानक जाचक।

मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते एनस पागो, रहाओ सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर शोक ते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक ए खेल कठन है किन्हों गुरमुख जाना, गौड़ी महला नावा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने।

जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एन इस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुन गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यों ए विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो चूठो इहु जग देख ताक उठतावे। फुगत मुकत का

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिपुटी छूटी विमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ इक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम सुकाया लाल पहे सूहा रंग माया नगर पई दिख ठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साध रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म।

जिन बूझिया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त इक नाई, तही निरंजन रहा समाई, निज कर व्याप रहा निज ठाई।

ए, तरण गगन ने देखो दोए, नारी पुरुष सबाई लोए, रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मोको एक बुझाया, एक निरंजन गुरुमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एको हुक्म वर्ते सब लोई, एक से सब ओपत होई, राह दोवे खसम एको जान, गुर कै शब्द हुक्म पछाण, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्त पेद क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत विचार है, पंच मार सात उधार है, रहाओ जिसके अंतर सात वसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, राम सत एको गृह उद्यान है, करनी कीरत कर्म समान है, एक शब्द एक पिछला मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सत जागे, पैर अच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिवलाए, आपे मेले परम सुपाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हमें मारे करनी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौड़ी महला पहला, सीमा गही व्रत शील संतोखं, रोग ना व्यापे ना जम दोखं, मुक्त पाए प्रभ रूप न देखं, जोगी को कैसा डर होए, रूख बिरख गृह बार सोए, रहाओ निरपौ जोगी निरंजन त्यावे, अंदिन जागे सच विवलावे, सो जोगी मेरे मन पावे, सो जोगी मेरे मन पावे, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्व निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुरु सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरपो होए, जैसा सेवे तैसो होए, नर नहीं केवल निरपो ना हो, अनाथे नाथ करे बल चाओ, पुनरप जन्म ना ही गुण गाओ, अंतर बार एक हो जाने, गुर के शब्दे आप पछाने, साचे शब्द दर निशाने, शब्द मरे तिस निज कर वासा, आवे ना जावे चूके आसा, गुर के शब्द कमल पर गासा, जो दिसे तो आस निराशा, काम क्रोध बिख भूख से आता, नानक बिरले मिले उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरे पावे सत सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अखट मज्जन चरने तूरी, रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर रस तारा, सत करनी अब अंतर सेवा, मंत्र तास्या अलख अपेवा, जय जय देखो तैसे साचा, दिन बूझे जगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख बिरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु कहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीने सो तप विचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ताके दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्म में गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है, रहाओ बल राजा माया अंकारी, जगन करे बहु पार असारी, दिन गुर पूछे जाए प्यारी, हरी चंद दान करे जस लेवे, दिन गुर अंक ना पाए अपेवे, आप पुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरनाथ दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ परहारी, प्रहलाद उधारे कृपाकारी, पूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका की समेत, गर्भ गया बिन सतगुर हेत, सहस बाहो मद कीट में खासा, हरनाकसले नखो विदासा, दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा,
जरा संद काल जमुन संगारे रकत बीज काल नेम बिदारे दैत संगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संगारे।

जनमे जय गुर शब्द न जानिया क्यों सुख पावे परम पुलानिया इक तिल पूले बौर पछतानिया कंस के चांडूर ना कोई राम ना छीनिया अपनी पत कोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर दर्ब ना मेटिया जाए गुरमत धर्म तीरज हर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला चोआ चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पहर हटावो बिन हर नाम कहाँ सुख पावो क्या पहरों क्या ओढ़ दिखावो बिन जगदीश कहाँ सुख पावो रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला बिन जगदीश कहाँ सुख पाला नैन सलोनी सुंदर नारी खोर सिगार करे अति प्यारी बिन जगदीश पजे नित खुआरी दर कर महला सेज खाली एनक फूल बिछावे माली बिन हर नाम सो देह दुखाली हैवर गैवर नेजे वाजे लक्कर नेब खवासी पाजे बिन जगदीश चूठे दिवाजे सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो ताज कुल है सिर खतर बनावो बिन जगदीश कहाँ सच पावो खान मलूक कहावो राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सवरस काजा हो मैं ममता गुर शब्द विसारी गुरमत जान्या हृदय मुरारी प्रणवत नानक शरण तुम्हारी गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जानत अवरे पर पंच ब्याज त्याग है कवरे पाय मिले सच साचे फसरे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाय मिले मल तोई रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत अग्न जगत पर जा।

कामन हितकारी, क्रोध विनाश है सगल विकारी, तत मत खोवे नाम विसारी। पर कर कीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूटस हर गुण गाए, जो तन विधवा पर को दे, काम दाम चित पर वसे, बिन फिर तृपत न कभू होई, पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़े सुन साटा, बिन रस राते मन बो नाटा, ज्यों चात्रिक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृप्ताता, गौरी मैला पहला, हट कर मरे ना लेखे पावे, वेद करे बहु पसंद लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख, रहाओ चोवा चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम विसारे सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तख सलाम, अद की तृष्णा व्याप काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावे नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन

किसको वाह वाह जी शब्द सुनावे, किसको वाह वाह जी मेल मिलावे, वाह वाह किसको जिसका इहो जियो, गुर सब जी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाने दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अनदिन जपत रहूं तेरी शरणाए, नानक नाम रते पत पाए, कौड़ी मैला पहला हूं मैं करप देखी नहीं जानिया, गुरुमुख भगत बिरले मन मानिया, हूं करप नहीं सच पाई है, हूं मैं जाए परम पद पाई है, रहाओ हूं मैं कर राजे बहुत आवे, हूं मैं खपे जन्म मर आवे, हूं मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है, अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे, सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के कर तारी लावे, हों कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे, जेसी है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही, हों में बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौरी मैला पहला प्रश्न ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया, हम हर राखे गुर शब्द विचारिया, रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा, ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो पूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यों राखो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम, मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकद

सेवा करें, ठाकुर नहीं दिसे, पोखर नीर विरोली है, माखन नहीं दिसे। इस पद जो अखाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझिए सब जम समाया।

मन का सूतक दूजा भाओ, परने फूले आवो जाओ, मन मुख सूतक कवे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राओ, सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किसाहे, सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, सातक सिमरत सोध देखो कोए, बिन नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख उतरत पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी मैला कीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर्धारा, गुरमुख सोबा साथ द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा, रहाओ गुरमुख विच्चों हो मैं जाए, गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म कर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किस कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे खौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग जो लाए बहन जाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पत नामे।

आई राम पढ़ो मन करो विचार गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ वाद विरोध ना पाया जाए मन तन फीका दूजे पाए गुर के शब्द सच लिवलाए हो मैं मैला यो संसारा नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा बिन गुर पेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हो मैं मारे गुर के शब्द पंच संगारे आप तरह सगले कुल तारे माया मोह नट बाजी पाई मनमुख अंध रहे लपटाई गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई बहुते पेख करे पेख तारी अंतर तिसना फिरे अंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोह अत परम पुलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी ग्रही अंतर साच लिव लागी नानक सतगुर सेवे सेवड़ पागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अव्यासा तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा त्रै गुण परमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मिलाया अन दिन भगत हर नाम दृढ़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पढ़ वाद वखाणे सिर मारे जमकाला तत नाचीने बन्ने पंड पराला मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए हर नाम विसारिया बहु कर्म दृढ़ाए पवजल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिखिया राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे गुरुमुख जम काल ने

समावे। हर कथा सुने से तनवंत दिसे जुग माही, तिनको सब निवे अनदिन पूज कराही। सहजे गुण रवे साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया।

परम पुनाए, मनुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुरु ते कवन कवन ना सीधो मेरे पाई, भगती सीधे दर शोभा पाई, नानक

बंधन ना टूटे मुक्त ना पाए, मुक्त दाता सतगुरु जुगमाए, गुरुमुख प्राणी परम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिव लाए रहाओ। त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम न चेते उपावन हारा, मर जमे फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम न जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिखा माता बिख माए समाई, माया कर मूल जंत्र पर माए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बार साच वर्ताए, साच न छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझे सह सुबाए, गुरुमुख साच रहा लिवलाए, हों मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरमुख बूजे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अंधिन हृदय जपो जगदीसा, गुरुमुख पावो परम पद सुखा रहाओ, हृदय सुख पया प्रगास, गुरुमुख गावे सच गुण दास, दासन दास नित होवे दास, गृह कुटुंब मैं सदा उदास, जीवन मुक्त गुरुमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए, जा हृदय वस्या सच सोए, गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होए, हुकम पचाने बूझे सच सोए, तू करता मैं अवर न कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए, कृपा करें गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग में लोए, गुरुमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसे अंधिन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वड पागी, हों मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरुमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास, जब हृदय

शब्द मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुर सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाईए गुणी निधान। रहाओ मन बैरागी जा शब्द पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पहु जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम ले विलाई, गुर मिलिए हमको शरीर।

मन करहला गुरु गोविंद समाले रहाओ, मन करहला विचारिया मन मुख फाथिया महाजाले, गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाले। मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुर पाले, सत्संगत लग हर त्याये हर हर चले तेरे नाल। मन करहला वड पादिया हर एक नजर निहाल, आप छाए छुट्टी है सतगुर चरण समाल। मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुरु नौ निज नाम विखा लिया हर दात करी दयाल। मन करहला तू चंचला चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ तारिया जम मारे अड़ा जमकाल। अंतर निधान मन करहले प्रम पवे बार पाल, गुर पुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल, वड पागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल।

जब यो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाए कांते इस संग नहीं बहराए जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किछ कर माने पेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो सब किछ सूझिया।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना ने

पास जपत पाओ अपदा जाए, तावत मनुआ आवे खाए। जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत ए हो मैं पागे। जास जपत वस आवे पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा। जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगे सिजे। जास जपत कोट मिटे अपराध, जास जपत हर होवे साध। जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे। जास जपत रतन हर मिले, बहुर ना छोड़े हर संग हिले। जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सह निवास। जास जपत ए अग्न न पोहत, जास जपत एहो काल न जोहत। जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाता। जास जपत मुश्किल कछु न बने, जास जपत सुन अनहत तुने। जास जपत ए निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन पोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुरु पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तारे। पंच जना स्यों संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास। ताके आत्मे होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ताके होए। जा को दया मया प्रभ सोए, रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है। जेता बोलन तेता ज्ञान है, जेता सुनना तेता नाम। जेता पेखन तेता ध्यान, सहजे जागन सहजे सोए। सहजे होता जा

जो कबहु ना करे कवन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ। इंद्रपुरी में सर पर मरना, ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना, शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया बिनस बिताला, गिर तर तरण गगन अरतारे, रव सस पवन पावक नीरारे, दिनस रैन बर्त अरपेदा, शासत सिमरत बिन सेंगे बेदा, तीरथ देव देहोरा पोथी, माला तिलक सोच पाक होती, तोती दंडौत प्रसादन पोगा, गमन करे गो सगलो लोगा, जात वर्ण तुर्क अर हिंदू, पस पंखी अनेक जोन जिंदू, सगल पसार दिसे पासारा, बिनस जाए गो सगल आकारा, सहज सिफत भगत तत ज्ञाना, सदा आनंद नेचल सचताना, तहां संगत साध गुण रसे, अनपौ नगर तहां सदवसे, तें पौ परमा सोग ना चिंता।

कहो नानक जिस कृपा करे नेचर थान साध संगत रे। गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसे वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जो दुबदा मार दवावे इसे मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे तिसको पौना है जो इस

जो इस मारे सो नहीं चलता नहीं, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाय न परे, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छुटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै किरपाल किरपा निज, तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध, गुरदुबदा जाकी है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म विचारी, गौड़ी महला पंजवा। हर स्यों जुरे ता सबको मीत, हर स्यों जुरे ता नहीं चल चीत, हर स्यों जुरे ना व्यापे काड़ा, हर स्यों जुरे ता होए निस्तारा, रे मन मेरे तू हर स्यों जोर, काज तुहारे नाही होर, रहाओ वडे वडे जो दुनियादार, काहू काज नाही गावार, हर का दास नीच कुल सुने, तिसके संग खिन में उदरे, कोट मजन जाके सुन नाम।

मन अपने में फिर चेत बिनस जाए माया के हेत। हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग। जाके काम उतरे सब भूख जाके काम ना जो है दूत। जाके काम तेरा वड गमर जाके काम होवे तू अमर जाके।

जाके ऊन नाही काहू बात, एक आप अनेक पात, जाकी दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे कर्ता की काल, ना को चतुर नाही को मूढ़ा, ना को हीन नाही को सूरा, जित को लाया तित ही ला।

बोलें कूर साकत मुखकारा, बिन सिमरन गर्दब की न्याई, साकत थान परिष्ट फिराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंध न पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीचे तिस कुल नहीं जाती, जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत कराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर के बचन मोह परम गत पाई, गुर पूरे मेरी पैज रखाई, गुर के बचन से आयो मोह नाओ, गुर प्रसाद मोह मिलिया थाओ, रहाओ, गुर के बचन सुन रसन वखाणी, गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी, गुर के बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर के बचन मिटिया मेरा परम, गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म, गुर के बचन कीनो राज जोग, गुर के संग तरिया सब लोग, गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर के बचन पाया नाव निद, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा, तिसकी कटिये जम की फासा, गुर के बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर पेटिया पार ब्रह्म, गौड़ी मैला पंजवा, तिस गुर को सिमरों सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी

अपना दासरा आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार। कल कलेश पै परम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी मैला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो, रहाओ नाम बिना जो पहरे खाए, जो कूकर जूठन में पाए, नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिगार, नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग, नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए चूठे सब पाज, नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे, हर का नाम जिन मन ना आराधा, चोर की न्याई जम पुरबादा, लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना चूठे पासारा, हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। गौड़ी मैला पंजवा, आद मध्य जो अंत निवा है, सो साजन मेरा मन चाहे, हर की प्रीत सदा संग चाले, दयाल पुरख पूरन प्रतपाले, रहाओ बिन सत नाही छोड़ न जाए, जह पेखा तह रया समाए, सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता, पाई पूत पिता प्रभ माता, जीवन प्राण आधार मेरी रास, प्रीत लाई कर हृदय निवास, माया सिरक काटी गोपाल, कर अपना लीनो नगर निहाल, सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग, पूरन पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बार संग रख

पहला पंजवां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया सेई होए भगत जिना कृपारिया हों वारिया हर वारिया रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया मैं तक्की और संता लेहो उबारिया मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया चौ दिस जपिए नाउ सूख सवारिया मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया गुर काढ़ियो पूजा पसार मोह कुपारिया मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया मैं पायो सर्व निदान अकत कतारिया हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया जन नानक लगा रतन अमोल अप

हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो राव तज हो मैं गुर ज्ञान पजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो जो दी सह सो संग न गयो साकत मूड लगे पच मोयो मोहन नाम सदा रव रहयो कोट मदे किने गुरमुख लहयो हर संतन कर नमो नमो नौ निद पावे अतुल सुखो नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निदो काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दो ते रहयो दुख अंधेरा करते मिट्यो गुर ज्ञान दृढ़ आयो दीप बलियो जिन सेव्या सो पार परयो जन नानक गुरमुख जगत करयो। महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत परम गए मेरे मन सब सुख पायो रहाओ बल तो जल तो तौ क्या गुर चंदन शीत लायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो पावक सागर गहरो चर संतन नाभ तरायो ना हम कर्म ना कर्म सुच प्रभ गह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ नाथ कृपाल दीन समरथ संत ओटायो निर्गुनी आरे की बेनती देहो दर्श हर आयो नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के पोगा इन संग अंध ना जानी हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहानी रहाओ हौ सूरा प्रधान हो को नाही मुझे समानी जो बनवंत अचार कुलीना मन में होए गुमानी जो उलझायो बाद बुद्ध का मर्त्या नहीं बिसरानी पाई मीत बंदव सके पाछे तिन्हों को संपानी जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी आंग बुद्ध सुच कर्म कर ए बंधन बंदानी दयाल पुरख।

सिगार मिठ रस भोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे। मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे। नानक सातन मिले मिलाई बिन फिर नींद ना आवे। मुंद निमानड़िया जियो बिन तनी प्यारे। क्यों सुख पावेगी बिन उर्धारे। ना बिन करवास ना ही पुछो सखी सहेलिया। बिन नाम प्रीत प्यार ना ही वसे साथ सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सो जानिया। नानक नाम ना छोड़े सातन नाम सहज समानिया। मिल सकी सहेलड़ियो हम फिर रावे हा। गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछाणिया। निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन

जियो हम कर साजने आया, मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहसी, मुंद मन उमा हो, साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो, कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया, नानक पिरता।

कहगी ना बिना प्रभु वे परवाहे तन ना बाजो रह न साके बिखम रहन कनेरिया नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए नानक सातन।

सबदे सुहावे ता पत पावे, दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुणसारे, सतगुर मेली ता फिर रावी बिगसी अमृत बाणी नानक सा तन।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई न पावे हाथ निग्रह बेबाने नानक सच कर शब्द सिंजापे दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जियो शब्द सच्चा विचारो तेरा महल सच्चा जियो नाम सच्चा वापारो नाम का वापार मीठा भगत लाहा अंदिनो जिस बाज वखर कोई न सूजे नाम लेवो खिन खिनो परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम।

तन बिनो करे जियो हर के गुण सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाई है जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए तन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए सतगुरु सेवे पाओ करे जियो विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अंदिन लागा पाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर के शब्द समाओ हर गुण सारी ता कंत प्यारी।

नानक कामन सदा रंग राती, हर जियो आप मिलाए। ता मिली है हर मेले जियो, हर बिन कौन मिलाए। बिन गुर प्रीतम अपने जियो, कौन परम चुकाए। गुर परम चुकाए, यूं मिली है माए, तासा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोर अंधार, बिन गुर मग न पाए। कामन रंग राती सहजे माती, गुर कै शब्द विचारे। नानक कामन हर वर पाया,

चित लाये सदा सुहागन जा सतगुर सेवे गुर के अंक समाये गुर शब्द मेला ता फिर रावी लाहा नाम संसारे नानक कामन ना प्यारी जा हर के गुण सारे सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हों मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे सा तन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार निवारे नानक कामन हर भर।

अन ना पानी, पानी अन ना पावे मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाये। गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावे, ज्यों मिले तिवे मिलाये, आपे मेल ले सुखदाता, आप मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागन, ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर के सह सुवाए, मन मोहन मोह लिया जियो, दुबदा सह समाए, दुबदा सह समाए, कामन वर पाए, गुरुमती रंग लाए, एहो शरीर पूर कुसत परिया, गलताई पाप कमाए, गुरुमुख भगत जित सहज तुन उपजे, बिन भगती मैल न जाए, नानक कामन पिरे।

मिली है प्यारे अंदिन दुख निवारे अंतर महल फिर रावे कामन गुरमति विचारे अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे नानक सच मिली सुहागन गुर कै हेत अपारे आवो दया करे जियो प्रीतम अत प्यारे कामन बिनो करे जियो सच शब्द सिगारे सच शब्द सिगारे हों मैं मारे गुरमुख कार सवारे जुग जुग एको सच्चा सोई बूझे गुर विचारे मनमुख काम व्यापी मोय संतापी किस आगे जाए पुकारे नानक मनमुख थाउ न पाए बिन गुर अत प्यारे मुंद एयाणी पोली निगुणिया जियो फिर अगम अपारा आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शनहारा अवगुण बख्शनहारा कामन कंत प्यारा कट कट रहा समाई प्रेम प्रीत पाए भगती पाए सतगुरु बूझ बुझाए सदा आनंद रहे दिन राती अंदिन रहे लिवलाई नानक सहजे हर वर पाया सातन नौनिद पाई गौड़ी महला तीजा माया सर सबल वरते जियो क्यों कर दुत्तर तरिया जाए राम नाम कर बोहता जियो शब्द खेवट विच पाए शब्द खेवट विच पाए हर आप लंगाए इन विद दुत्तर तरिए गुरुमुख भगत प्राप्त होवे जीव त्या यो मरिए किन में दाम नाम किल विख काटे पए पवित्र शरीरा नानक राम नाम निस्तारा कंचन पए मनूरा स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो राम नाम की विद नहीं जानी मात पिता सुत पाई करे प्यारे जियो डूब मोए बिन पानी डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी हो मैं ताप संसारे जो आया सो सबको जासी उबरे गुर विचारे गुरमुख होवे राम नाम वखाणे आप तरह कुल तारे नानक नाम वसे कट अंतर गुरमत मिले प्यारे राम नाम बिन को थिर नाही जियो बाजी है संसारा दृढ़ भगत सच्ची जियो राम नाम वा पारा राम नाम वा पारा अगमा पारा गुरमति तन पाई है सेवा सुरत भगत के साची विचों आप गवाई है हम मत हीन मूरख मुगद अंधे सतगुरु मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंदिन हर गुण गाए आप सराय करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुरु आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए आपे गुण दाता अवगुण काटे हृदय नाम वसाए नानक सद बलिहार।

सदा हर रस पाए जहाँ हर पाए रसना सब सुहाए नाम प्याए सदा सुख पाए नाम रहे लीलाए नामे उपजे नामे दिन से नामे सच समाए नानक नाम गुरमति पाए आपे ले लवाए ए विदानी चाकरी पिया जियो तन छोड़ परदेश सिधाए दूजे किने सुख न पायो पिया जियो बिख्या लोभ लुवाए बिख्या लोभ लुभाए परम पुलाए ओ क्यों कर सुख पाए चाकरी विदानी खरी दुखाली आप वेच कर्म गवाए माया बंधन टिके नाही छिनछिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूके जा गुर सबदी चितलाए मन मुख मुकुट गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का परम अंग पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुरचरणी चित लाए जिसनो हर जियो कृपा करे सदा हर के गुण गाए नानक नाम रतन जग लाहा गुरुमुख आप।

मन आस दर्श निमानिया सास सास ना करी विसरै पल मूरत दिन राते नानक सारंग ज्यो प्यासे क्यों मिलिए प्रभु दाते। एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों ती रहे गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण भरपूर है फिर दोष नाही सुखै दाते हो विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया तारो कर आवो नहा प्यारे। हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो सिर अर्पी किसमी प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पिया ता शीश सो पान गुर पे संग प्रभु दिखाया खिन माहे।

बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ते हम जैसा। मेरे मन अनंद भया जियो वजी वादाई, कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया, सब मीत बंदप हरख उपजा दूध ठाऊं गवाया। अनहतवा जे वजह

वे जह साध संत इकत्र हो गए हैं तहां तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिन वंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एक अलेख ठाकुर जिने सब कल तारिया तुद बचन गुर के वस किया आद पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया बिन वंत नानक पैज

मन वचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे। मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर सो ज्ञाना। बिन वंश नानक राज निःचल पूरन पुरुष भगवान।

बेअंत गुण तेरे कथे न जाहि, सतगुरु पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौड़ी महला पंजवा श्लोक। पतित असंख

संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याए मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख पातो दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कमल आराध्य जम पंख बिखरा अगन सागर निमक सिमरत साधिय कल मले दहता शुद्ध करता दिन सरण आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया भगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाये तम अंग कूप ते उधार नाम मन वसाय सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत नाम।

बिनवंत नानक करो कृपा, समर्थ सब कल धारे। गुण गाओ मना अचुत अविनाशी, सबके ऊंच दयाला। दिसंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला, प्रतपाल महादयाल दाना। दया तारे सब किसे, काल कंटक लोभ मोह नासे। जी जा के प्रभु बसे, सो प्रसन्न देवा, सफल सेवा, पई पूरन काला। बिनवंत नानक।

गीत गोविंद गाय कल कलेश मिटे क्रम नासे मन चिंदिया फल पाये पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आये। सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रभु मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवद पागी माए। सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं आप नड़ा फिर मिलिया प्रम खोयो सांत सह स्वामी परगास तया कौल खिलिया वर पाया प्रभु।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंदक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एक और रव रहा दूसर हुआ न होग पौड़ी ओं साध सतगुरु नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे

ਰਹਿਤ ਆਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾ ਕੈ ਉਸਨ ਸੀਤ ਸੰਸਰ ਸਭ ਤਾਂ ਕੈ ज्ञानी तत् गुरुमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी। श्लोक आमन आए सृष्ट में बिन बूझे पस्तोरे नानक गुरुमुख सो बुझे जाके पाग मथोर। पौड़ी या युग में एक को आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर्ग तप करते सास सास सिमरत प्रब रहते उर्ज परे जो छोड़ छदाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई इत उत नानक तिस बिसरो नाही। श्लोक आ

ने ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो विषम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने, तिन प्रभ आप पस आपन हो।

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवार नहारा। श्लोक

0: कौड़ी
1: रे मन बिन हर जय रचो, कहते बंधन पाहे जे विद कतहु ना छूटी है।

जोड़ा ते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दरगे कहे न को आओ बैठ आदर सुख देव ओआ महली पावे तू बासा जन्म मरन न होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै।

कै रस राते अहं बुद्ध माया मधमाते या माया में जन्मे मरना जो जो हुक्म तिवे त्यों करना को ऊन ना को पूरा को सुगर ना को मूरा जित जित लावो।

गमिय जास रसन हर हर जस पन्य आए बसे साधु के संगे आम दिन नाम त्यावे रंगे आवत सो जल नामे राता जाको दया मया विदाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्श समाया श्लोक यास जपत मन होए आनंद बिन से दूजा पाओ दुख दर्द किसना बुझे नानक नाम समाओ। पौड़ी जैया जारो दुर्मत दो

एक नाम ले मने परो। यैया जन्म नहारी है गुरपुरे की टेक, नानक ते सुख पाया जाके ही रे एक। श्लोक। अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत, गुरपुरे उपदेशया नानक जपिए नीत। पौड़ी। अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए, ए बिख्या दिन चार छे छार चलो सब कोए, ताको मात।

ध्यान परमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो। श्लोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट न जाए पंडार हर

खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिगसे अनद स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल खेद ना दुख ना दान के।

लोग आस अनित गुरमुख मिटाए नानक नाम अरोग पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जपनीत कहा बिसासा देह का बिलम न करहो मीत न बारक न जोगने न बिरदी कछ बंद ओ बेरा न बूझिए जो आए परे जम

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक पाग नानक आए सफल के जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोठे शास्त्र दे सब आम न कत्तो कोए आप जुगा दी हुन होवत नानक एक कैसोए पौड़ी कद्दा तालो मने ए बिन हर दूसर नाहे नै होवा नै होवना जत कत ओही समाहे कूले को मन जो आवे सरना नाम तत्कल मह पुनः चरना काल काल अनक पछतावे बिन हर भगत कहा थित पावे कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुरु जाको दिया। श्लोक काले सब दिवस सास

काल से जो साकत प्रभु कीन अनेक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे

सभागा चार कुंट देह दुष्कम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ।

छच्छाचार हो तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता। छाड़ सियान बहु चतुराई।

पौड़ी जजा जाने हो कछुआ बांध्यो जो नलनी प्रमसुआ जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी।

बिनस्तो कास्यों करिए संग ज्ञानो या विद सही चित झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंधकूप ते ते कढ़ो जे होवो सो प्रसन्न ज्ञा के हा

या डेरा को श्रम कर काले जाका तसू नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जाको दृष्ट पूरन भगवाने डेरा ने चल सच।

रेण दिन सिमरत रहे सो प्रभु पुरुष अपार। रेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए, हुक्मे बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक। तन मन तन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे, नानक प्रम को काटिए चूके जमकी जो। पौड़ी। तत्ता कांस्यो प्रीत कर गुण निध गोविंद राए, फल पावे मन बांचते तपत तुहारी जाए। त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ, गत पावे मत हुए परगास मैली पावे ठाओ। ताहू संग न तन चले गृह जो बन ने राज, संत संग सिमरत रहो यह तुहारे काज। ताता कछु न होई है जो तात निवारे आप, प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप। श्लोक। था के बहु विध काल ते तृप्त ना तृष्णा लाथ, संच संच साकत हुए नानक।

पौड़ी। पत्ता परमित पार न पाया, पतित पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपह मिल साधु। पर पच त्रोह मोह मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई, पात साओ छत

आवे। बांध्यो आपन हों हों बंदा, दोष देत आगे को अंधा, बातचीत सब रही सियानप, जिसे जनाबो सो जाने नानक। श्लोक पै पंजन अग

मम्मा जाहू मरम पछाना, पेटत साध संग पतियाना, दुख सुख उआ के समत बिचारा, नरक सुर्ग रहत अवतारा, ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख बिसेखा, उआ रस में उआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे, नानक ते बंधन कटे, गुर की चरणी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विदिया, एक नाम बिन कह लोस दिया, याहू जतन कर होत छुटारा, वाहू जतन साध संगारा, या उबरन तारे सबको, वाहे जपे बिन उबर न हो, याहू तरन तारन समराथा, राख लेहो निर्गुण नरनाथा, मन बच कर्म जे आप जनाई, नानक ते मत प्रगट।

आवे खसमता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो अगनता असंख खते खिर बख्शन हारा नानक साहिब सदा दियारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परो हर राय उकत सियानक सगल त्याग नानक ले समाए। पौड़ी ससा सियानप छाड़ एयाना हिकमत हुकम न प्रपति आना सहस पाठ करें चतुराई संग तुहारे एक न जाए। सो सो जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख न।

पौड़ी। हे रो काट काट सगल कै पूर रहे भगवान, होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हों छुटके होए आनंद ते हों नाही ते आप, हटे दुख जन्म मरन संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला, संते संग होत कृपाला, पूरे कछु न किन्हू किया, नानक सब कछ प्रभ ते।

पाव जल ते काडू प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी। खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए। खिमा गई सच संचयो।

खरा दिलासा गुर दिया, आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप, आगे पाछे आप, नानक सो सराही है, जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी। अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचारे, अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना, अक्षर नाद कथन वख्याना, अक्षर मुक्त जुगत पै परमा, अक्षर कर्म कीर्त सुच परमा, दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, पुस्तक कह न जाए।

हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जा कै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है भी होवन हार, हे संत के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दी जय नाम दान, राखो ही है परोए।

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा।

प्रभ के सिमरन दुख जम हसे, प्रभ के सिमरन काल पर हरे, प्रभ के सिमरन दुश्मन तरे, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभ के सिमरन अंधन जागे, प्रभ के सिमरन पौ न व्यापे, प्रभ के सिमरन दुख न संतापे, प्रभ का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तक बुद्ध, प्रभ के सिमरन जप तक पूजा, प्रभ के सिमरन विनसै दूजा, प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ के सिमरन दरगे मानी, प्रभ के सिमरन होय सो भला, प्रभ के सिमरन सो फल फला, से सिमरन जिन आप सिमराए, नानक का कहला गुरु पाए, प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरन सब किछ सुझे, प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माहि सुनाए, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरे से तनवंते, प्रभ को सिमरे से पतवंते, प्रभ को सिमरे से जन प्रवान, प्रभ को सिमरे से पुरुष प्रदान, प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरे से सुखवासी, प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभ को सिमरे से परोपकारी, प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरे तिन अनंत घनेरे, प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अंजन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन कभो न झूरे, प्रभ के सिमरन हर गुण बानी, प्रभ के सिमरन सहज समानी, प्रभ के सिमरन निचल आसन, प्रभ के सिमरन कमल विगासन, प्रभ के सिमरन अनहद जुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिन को प्रभ नया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर पगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेत उपाय, हर सिमरन तय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते, हर सिमरन तारी सर करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पास लोक, दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, अष्टपदी, जय मात पिता सुत नीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाय, जय मां प्यान दूत गम दले, तह केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माए उदारी, अंत पुने चरण पर नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख घनेरे, सगल सृष्ट को राधा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोड़ी बंदना करे, हर का नाम जपत निस्तरे, अनेक माया रंग सिखना बुझावे, हर का नाम जपत आभावे, जे मार के हो जाति के ला, ते हर नाम संगोत सोएला, ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत ते पार कराही, अनेक बिघन जय आए संगार है, हर का नाम तत्काल उधार है, अनेक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मल कभू न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाये साध के संग, जे मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा, जे पैंदे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंख तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पहचानू,
जय मां प्याम सत बो काम तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम जहाँ त्रिखानन तुझ आकर खै तै नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर दस पर संत दिन रात हर हर औसत साध समाट हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब करे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत पछवाए वियोग जन वाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप सब दीना हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपे हर का भगत प्रकट नहीं छपे हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते करे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लता नाम की महिमा संत हृदय वसे संत प्रताप दीर्घ सब नसे संत का संगवड भागी पाये संत की सेवा नाम ध्याये नाम तुल कछ अगर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व तंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ज्ञान खत शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनेक प्रकार की ये बहु जतना पुन दान हो में बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तुझ राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिरजीव महा उदास कपि सरथीव अगन माए हो मत प्राण कनक अश्व है वर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम अच्छादन निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी हो मैं मेल न जावे हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गप पाहे मन कामना तीरथ दे छुटे गर्भ गुमान न मन ते हुटे सोच करे दिन और रात मन की मैल न तनते जात इस देही को बहु साधना करे मन से कभू न बिख्या करे जल को वह बहु दे अनीत शुद्ध कहा होए काची वीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहुमूच बहुत श्यांत जम का पौ व्याप अनेक जतन कर प्रसन्ना धाप पेट अनेक अगर नहीं बुझे कोट उपार दर गैनी सिजय छूटत ना ही ऊप बयाल मोह व्याप माया जाल अगर करतूत सगली जमदाने गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे सात जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए हो मैं चोरे जे को जन्म मरण से डरे सात जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ता कह बल बल जासा सगल पुरुख में पुरुख प्रदान साफ संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सबसे ऊंचा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट पर चीना मन अपने ते बुरा मिटाना देखे सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन कम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेता निर्पण

आपन संग आप प्रवराते तुमरी युस्तक तुमते होए नानक अवर ना जानस कोए। सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया।

बख्श लियो तो नानक सीजे। जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे, सुत प्रात मीत बनता संग हसे। जे प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावत अमूला। जे प्रसाद भोगे सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा। जीने हक पाव कर नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना। ऐसे दोख मूड अंग व्यापे, नानक काज लेहो प्रव्यापे। आद अंत जो राखनहार, तिस्यो प्रीत न करे गवार। जा की सेवा नव निध पावे, तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे। जो ठाकुर सब सदा हजूरे, ताको अंदा जानत दूरे।

संग मचे। जो छदना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर कराने। छोड़ जाए किसका श्रम करे, संग सहाई किसका हरे। चंदन लेप उतारे धोए, दर्द प्रीत पसंद संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काट लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेट अंतर मल माया, छप सुनाए कछ करे छिपाया। बाहर ज्ञान त्याग स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुहान। अंतर अगन बाहर तन सुहा, गल पाथर कैसे करे अथाह। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लो और निभावे। कहां बुझारत बूझे डोरा, निष्कैय तो समझे पोरा। कहां विषण पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहा उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा करे। संग सहाई सो आवे ना चीत, जो बैराई तासो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसे।

त्याहो जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सर तेरी रास। तुम मात पिता हम बार तेरे तुमरी कृपा में सूख गनेरे।

नमस्कारा जाके मन लागा प्रभु मीठा सर्व सुख काहु मन बूठा जिस जन अपना हुकुम मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साओ अपनी देरास खात पीत बरते अनत उलास अपनी अमान कछ बहुर साहले अज्ञानी मनी रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोए।

अष्टपदी जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे, जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे, जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर, जे प्रसाद दे संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना, जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग, जे प्रसाद पाठ

सब ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी मन तिस प्रभु को कभू ना बिसारी।

अष्टपदी। साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान। साध के संग बुझे प्रवनेरा, साध संग सब होत निवेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी। साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ल है।

आप आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग न कभू धावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस अगोचर लहे, साधु के संग अजर सहे। साध के संग बस है थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान। साध के संग सब कुल उधारे, साध संग साधन मीत कुटम निस्तारे। साधु के संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल। साध के संग कलू कतहरे, साध के संग नरक पढ़हरे। साध के संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग ना मन से बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु के संग कट कट बीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संग।

ज्ञानी पूरन पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बंत्र में उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब काब विचारे, कई कोट नरसन नाम ध्यावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख मिट जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, नारक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र,

तिन होवत आत्म प्रगास। कई कोट तक के बेटे सदा निहारे एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे अमर पह सत सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सहे समावे। अपने जन को साथ साथ समारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे।

गुरु प्रसाद नानक सच कहे। कबू होए पंडित करे बखान, कबू मोन तारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा वरना कोए, कबू साध संगत ते पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रते इक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग, जो जल में जल आए खताना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन।

के गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतर राग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने में जोगनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

अष्टपदी संत के दुखन आरजा कटे हैं, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जो लवे, संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन जगत जोन किरमाए, संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी जत पाहे, संत का निंदक महा अपताई, संत का निंदक खिंच करना पाई, संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होय मोख, संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसे का नहीं मित, संत के दोखी को दान लागे, संत के दोखी को सब त्याग, संत

सहकाई है, संत का दोखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दोखी की पूजा ना आशा, संत का दोखी उठ चले निराशा। संत के दोख ना त्रिष्टे कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए। पया किरत ना मेटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए। सब कर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तुझको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे ते आवो सास विरास। सब कछवर तय तुझका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ पागी नानक जन से श्लोक। तजो सियानक सुरजनो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी मानुक की टेक बिरती सब जान, देवन कोई कह भगवान।

अरविंद कर हर करम श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड़ता गीते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करें विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एक को एक एक पछाने इत उत कियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद आपन आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत अंजन कीर्तन केवल ख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जन की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक किसे न लागे दुख जिसको हर प्रभु मन से त्यावे सो संत सुहेला नहीं बुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तक सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई अस्थूल न किस जन्म न किस मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रखाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड तारण तार रहे ब्रह्मांड अलख अभेद पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभावंत सगल संसार उदर तिन मंत प्रभु के सेवक सगल उदारन प्रभु के सेवक दुख विसारन आपे मेल ले कृपाल गुरु का शब्द जप पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करें बट पागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुष को उत्तम करमान जो किस करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुबाए हो वै सो होए करने हार पछाने सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिस्माए समाए ओए सुख निदान उन्हों बने आए आप उसको आप दीनो मान नानक प्रभ जन एक को जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जाननहार जाके सिमरन उदरी नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप अपन किया

वार जिस गुर पर साल तू तहो रोग नानक सोजन सदा अरोग ज्यो मंदर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन ज्यो पाखान नाल चढ़ता रहे प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है ज्यो अंधकार दी पत्तर गास गुरु दर्शन देख मन होए विनाश ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बाँचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिल लाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख कर देवन हार अवर त्याग तू तिस चितार जो कछ करे सोई सुखमान पूला काहे फिरे अजान कौन बख्त आई तेरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पथ सेती कर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान लो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाभ के संत संचाल अवर त्याग दिखिया जंजाल तन तन कहे सब कोए मुख उजल हर दरगे सोए तो वापार विरला वापार है नानक ता कह सब बलिहार है चरण साध के तोय तोय पियो अरब साध को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वड पागी पाइए साध संहर की संगाइए अनेक विघन ते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे ओट गई संतें दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवालनहार पूखे को देवत आधार सर्व निधान जा की दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लेना पाए सब किस किस का ओ करने जोग किस दिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सबके ऊंच निर्मले करनी पर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत किस जन आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिए ते लोए जाके हृदय को होए सच करनी सचा की रहत सच हृदय सतमुख कैत साची दृष्ट साचा आकार सच वर्ते साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग किछ त्रिगुण ते प्रभु भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदी।

सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद। साफ तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन एवं नराओ मनसा पूरन सन्ना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जा का नेत्र फोर किसका मंत्र न जाने होर अनद रूप मंगल सज्जा कै सब थोक सुनिए कर पाके राज में राज जोग में जोगी तप में तपी सरग्रस्त में भोगी चाहे चाहे भगत सुख पाया नानक किस पुरुष का किने अंत न पाया जाकी लीला की मितना है सगल देव हारे अवगाहे पिता के जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान त्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण में जाको भरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जन आवे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना तेख करे एक रंग नाना विद कीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूरे ओ पूरन सब ठाए नाना विद कर दंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कब किसके सब किसके ठाओ जब जब जीवे नान खरनाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगाश कपाल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जा का सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरुष सब माए समानी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत्त सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब पली सत नाम प्रभता सुखदाई विश्वास सत नाम गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कह रहे प्रवेश सत निरत बूझे जे कोए नाम जपत्ता की गत होए आप सत की आ सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्टि हो करने हार और न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पे बिस्माद जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभ के रंग रात जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख का तनहार जाके संग करे संसार जन का सेवक सो वड़पागी जन के संग एक लिव लागी गुन गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जहाँ कह हृदय विश्वास प्रग आया सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया कहते निर्भो होए बसाना जिसते उपजा तिस माए समाना बस्त माए ले बस्त गदाई ताको पिनना कहना जाई बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आ गया कारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक साथ साथ समारे अपने जन का प्रदाता कह अपने सेवक की सर पर राखे
अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पतराचे ताकि दत्मित कोई न लाचे। प्रभु के सेवक को ना पहुँचे, प्रभु के सेवक पूछते ऊँचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दैन प्रगटाया। नीकी कीरी महफल राखे, पसंद करे लश्कर कोट लाखे। जिसका साफ ना काटत आप, ताको राष्ट्र दे कर हाथ। मानस जतन करत बो पाक, किसके कर्तव्य गिरते जात। मारे न राखे और न कोए, सर्व जिया का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी। बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत इहो मन तन तृपिए। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, किस किच अवर नाही दृष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग। नाम रस जो जन तृष्टाने, मन तन नामे नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सब काम। बोलो जस जे बै दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात। करें भगत आत्म कह चाहे, प्रभ अपने सो रह समाये। जो हुआ हो वत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो। आठ पैर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे। मन मेरे तिन की ओट ले, मन तन अपना तिन

सब पात्रता में अवर से आप सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा नाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सब तेरा। श्लोक सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसके संग सिख उदर नानक हर गुण गा। अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड़ पागी है सतगुर सिख का हल्क पलक सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार गुर के गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आप उसको कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत होए ने कामी किसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नाम सो सेवक गुर की मतले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म जन राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कच भरम सह स्यान लया न जाइये नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत पर सत चरण गत निर्मल रीत पेखत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर वचन करन आघाने मन सुन तो खातम पतियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तुस लय मिलाए जेबा एक पुस्तक अनेक सतपुर पूरन विवेक काहू बोल न पहुँच प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनिक भगत बंधन मुक्त करे चरण कमल हृदय सिमरे सब बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने क्यों हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सोए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण पास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग ना लेप मन में राखे हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख तहसे नासे तपत माए ठाट वरताई अंध भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पहुंचू का निरपौ हो बसे सगल व्याद मंगते खैन से जिसका साथ तिन कृपा भारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके क्रम गवन सुन नानक हर हर दस श्रवन निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाकार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर को सोए ओत पोत रव्या रूप रंग कहे प्रभा साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो धमसार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार हवर उपास सब मीत विसारो चरण कमल में उधार करण कारण सो प्रभ संगरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत्स यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठ भावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बांचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर औखद लाए
सर्व निदान में हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान। मंत्र बोधो हर कहनाए, दैज स्थावत आवे ठाए। ताको बिघन ना लागे कोए, जा कह हृदय बसे हर सोए। कल पाती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पौ बिन से पूरन होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास। चित कर जाए बसे अविनाशी, कहो नानक काटी जम फासी। तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा। आवागमन मिटे प्रभु सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। त्यों रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनेक उपाव न छूटन हारे, सिमरत सास वेद विचारे। हर की पगत करो मन लाए, मन बंशत नानक फल पाए। संग ना चाल तेरे धना, तू क्या लगता में मूर्ख मना। सुत मीत कुटम अर्बनता, इनसे कहो तुम कर्म सना था। राज रंग माया विस्तार, इनसे कहो कर्म छुटकार। अहस्ती रथ असवारी, चूठा डंप चूट पासारी। जिन दिए तुस बुझे ना बेगाना, नाम विसार नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने, पगत बिना धो डूबे स्याने। हर की पगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारे चीत। चरण कमल वाको मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए। आप जपो अगरा नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ। सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नानक गुन गाओ। गुन गाव तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हो मैं विख फैल। हो है अचिंत बसे सुखनाल, साफ ग्रास सर नाम समाल। छाड़ स्यान सगली मना, साफ संग पावे सत घना। हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगे जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जा कह मस्तक लेख। एको जप एको सलाह, एको सिमर एको मन आहे। एक के गुण गाव अनंत, मंतन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूरन पूर रहो प्रव्याप। अनेक विस्तार एक ते भये, एक अराज प्राशक गए। मंतन अंतर एक प्रवराता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया।

अष्टपदे जाचक जन जाचे प्रदान कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो साथ साथ प्रभु तुम्हें ध्यावो। चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार। प्रभु की दृष्टि मां सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ता में पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध के संग। परे शरण आम सब त्याग अंतर प्रगा सम दिन लिवलाग। बड़ पागी जपिया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभु होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुकुट जन भया जन्म मरण दुख क्रम गया। इच पुनी सरदा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी। जिस पासा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे की आ जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिखते काडे जन्म जन्म का टूटा गांडे। गुरपुरे सत्य है बुझाया प्रभु अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपाओ। भगत पाए तरी है संसार बिन भक्ति तन हो सीछार। सर्व कल्याण सुख निज नाम बूढ़त जाप पाए विश्राम। सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुण पास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एहि सुआव। नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन बिकसे साध चरण तोए। भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग। एक बस दीजे कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभु संग दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त कृपाल। आद पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो हुए पुनीत भगत पाए लावे मनहित। हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत। फली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग प्रभु देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक हर गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार यो कचना दृष्टि ताप पाप पुन तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संग समात। जब इसका वरण चेन ना जापत तब हरक शोक कोप से व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम। आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकुट को किसको गनी। जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब शिव सकट को कित ठाए। जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे। आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहा विनाशन। जब पूरन करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे।
ਆਪਣ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰ ਜਾ, ਨਾਨਕ ਆਪਣ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰ ਜਾ। ਜੈ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ, ਤੈ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਤੋਤਾ। ਜੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਨ, ਤੈ ਕੌਣ ਕਉ ਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਿਮਾਨ। ਜੈ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼, ਤੈ ਛਲ ਛਿਦਰ ਲਗਤ ਕਹੋ ਕੀਸ। ਜੈ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ, ਤੈ ਕਿਸੇ ਪੂਕ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਤਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹਿ ਕੁਮਾਰ। ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣ ਸੰਗ ਬਨਾਈ, ਤਬ ਕੌਣ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਭਾਈ। ਜੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਤੈ ਬੇਦ ਕਤੇ ਪਾ ਕੋ ਚੀਨ।

नानकिए को पसरिया दूजा कह विस्तार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार। जात विस्तावे ता श्रेष्ठ उपाय, अपने भाणे ले समाए। कुंते पिन नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए। जाको प्रभ जियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो संदर्शी तप का बेता, नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सबका कह हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखे तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस तज अगर कहा को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। गुण निदान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपाल है जी अनुभव पात, जो जो रचियो सो तिस एहतियात। जिस पावे तिस लय मिलाए, पगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक इक जान्या। जन लागा हर एक कहनाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बने आए, हुकम बूझ परम पद पाए। किसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार। बंधन तोर पए निर्वैर, अन दिन पूजे गुर के पैर। ए लोक सुखी ए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तक करो विचार, दुर्लभ देखा करो उदार। अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ। आठ पैर प्रत्येक खोनेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। हलत पलत दोए लिहो सवार, राम नाम अंतर उधार। पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसे तिस साच परीखिया। मन तन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मंगते पहुँचाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगे निभे खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे, नानक दौर न आवे जाए। किसते दूर कहा को जाए, उभरे राखन हार ध्याए। निरपौ जपै सकल पौ मिटे, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे। जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अंकार, तिस जन को कोई न पहुँचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाके दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रदान। जिस मन बसे सोत निहाल, ताके निकट नावत काल। अमर पे अमरा पद पाया, साथ संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रगीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्पट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा है। नवनिद अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तहनाद, कह न जाई अचरज विस्माद। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत। तरण माए आकाश दयाल, सर्व लोक पूरन प्रताल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा करम। पौन पानी बह संतर माहे, चार कुंट बह दिसे समाहे। तिसते पिन नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नाम सुख पाओ। वेद पुराण सिमृत में देख, ससियर सूर नक्षत्र में एक। बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कभू डोले। सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाई है गुणे अमोल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तार रहे हो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद धर्म का नाश, नानक तिन में यो विश्वास।
संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म, संत जना सुने शुभ वचन, सर्वव्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिसकी यह रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, करण करावन हार सब जाने, अंतर बसे बार भी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस तब ते सगली उत्पत, तिस पावे ता करे विस्तार, तिस पावे ता एकंकार, अनेक कला लखी न जाए, जिस पावे तिस नहीं मिलाए, कौन निकट कौन कही है दूर, आपे आप भरपूर, अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्वभूत आप वर्तारा, सर्व नैन आप देखनहारा, सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया, सब कह मद अलिप तो रहे, जो किस कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता ले समाए, इसते होए सो नाही बुरा, ओरे कहो किने कछ करा, आप भला करतूत अतने की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच, ताकि गतमित कहीं न जाए, दूसर वो ता सो जी पाए, तिस ताकि या सब परवान, गुरु प्रसाद नानक हो जान, जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रसोए, ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, तन तन तन जन आया, जिस पर साथ सब जगत तराया, जन आवन का यह सुहाओ, जन के संचित आवे नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक किस जन को सदा नमस्कार। श्लोक। पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जा का नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख।

संत जना की तूर मन मांग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद।

हम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रगधारी नानक निभी खेप हमारी।

प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए, सबसे ऊंच पाए अस्थान, बहुर न हो वे आवन जान, हर तन काट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद्ध नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध,

पास सुंदर चतुर तत्व का बेता सुंदर सी एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा से जमते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिस दन आवे हर प्रभ चीत जन्म मरण ता

जानी, दुख रोग बिन से पे परम, साध नाम निर्मलता के कर्म, सबते ऊंचता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुखमनी, सबते ऊंचता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुखमनी।

रह हर दर गए पतवंत, राम नाम तन संच वह साच सहा भगवंत। उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। श्लोक तीन ब्यापे जगत को तुरिया पावे कोय, नानक संत निर्मल पए जिन मन वसिया सोए। पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखे फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग प्रमतो कणो सदा संगारे मीच। हरक सोग सहसा संसार, हौ हौ करत बिहाए, जिनकी ये तिसे न जाननी चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस, कभो न टूटे ताप, पार ब्रह्म पूरन तनी नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो महानरक में वास, कर कृपा प्रभ राम।

पौ बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए।

बेदियो अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जोन प्रमण कीने कर्म अनेक, रचनहार ने सिमरियो मन ना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त न रंच, नानक बिरले पाये जो ना रचे परपंच। श्लोक। खट शास्त्र ऊंचो कहे अंत न पारावार, भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ के द्वार। पौड़ी खस्ता।

नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोबिंद रस गी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान प्रम बिन सियो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर जस कथे बोले सत सुभाए नानक मन संतोखी है एक स्यों लिवलाए। पौड़ी सप्तम संचो नाम तन टूट न जाए पंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राए दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म परवान।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल पौड़ी। अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत्र, सगल धर्म पवित्र स्नान, सब में ऊंच विशेष ज्ञान, हर हर भजन पूरे गुर संग, जप करिए नानक नाम हर रंग।

प्रीत, हर नाम न जपें करत विपरीत, परत्रय रमें बकें साध निंद, करन न सुनही हर जस बिंद। हिरे पर दर्ब उदर कहताई, अगन न निवरे तृष्णा न बुझाई, हर सेवा बिन ए फल लागे, नानक प्रभु बिसरत मर जमै अपागे। श्लोक। दस दिस खोजत मैं फिरियो, जत देखो तत सोए, मन बस आवे नानका, जे पूरन कृपा होए। पौड़ी। दसवीं दस द्वार बस कीने, मन संत

द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तज मान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रवरंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंचकू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुरपूरे ते ए नेचो पाई है, नानक राम रमत फिर जोन न आई है। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या पूरन होत न काम, अतित उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरख सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसादियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर विसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभ पुरख।

कुंट प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दशे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ टेक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूक्ष्म अस्थूल सगल भगवान।

नाम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरिया कुटुंब स्यो गुण गोविंद प्रभ रमन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम गुर पूरे ते पाया नानक सुख।

को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार। किलबिख का तय होए निर्मला जन्म जन्म मल जाए हलत पलत मुख उजल।

सतगुरु पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुरु विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर

हर तन खटिया गुरमुख शब्द विचार हों मैं मैल बिख उतरे हर अमृत हर उद्धार सब कार्य तिनके सिद्ध हैं जिन गुरमुख कृपा तार नानक जो

संग स्यों गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर साबास। पौड़ी तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़िया है तुद जेवड़ होए सो आखिया है तुद जेहा तू है पड़िया है तू कट कट एक वर्तदा गुरुमुख पर गड़िया है तू सच्चा सब सदा खसम है सब दू तू चढ़िया है तू करें सो सच्चे।

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है, जिसनो दया सदा होए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म इक सोए। निर्वैरा नाल जे वैर चलाएंदे, तिन विच्चों तिस्तिया न कोए। सतगुर सबना दा कला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए। पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे, सोई वड जानी। जिस साहिब पावे तिस बख्श ले, सो साहिब मन पानी। जे को उस दी रीस करे, सो मूड अजानी। जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवे, गुण आख वखानी। नानक सच्चा सच है, बुझ सच समानी। श्लोक महला चौथा, हर सत निरंजन अमर है, निरपौ निर्वैर निरंकार। जिन जपिया इक मन इक चित, तिन लत्ता हो मैं पार। जिन गुरमुख हर आराध्या, तिन संत जना जयकार। कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की, तिसनो फिट फिट कहे सब संसार। सतगुरु विच आप वर्तदा, हर आपे रखन हार। तन तन गुरु गुण गावदा, तिसनो सदा सदा नमस्कार। जन नानक तिन को वारिया, जिन जपिया सिरजनहार। महला चौथा, आपे तरती साजियन, आपे आकाश। विच आपे जंत उपायन, मुख आपे दे गिरास। सब आपे आप वर्तदा, आपे ही गुणतास। जन नानक नाम त्याए तू, सब किलविक कटे तास। पौड़ी, तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चे पावे। जो तुद सच सलाह दे, तिन जम कंकर नेड़ ना आवे। तिनके मुख दर उजले, जिन हर हृदय सच्चा पावे। कूड़ यार पिछा हां सटियन, कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे। मोह काले कूड़ यारिया, कूड़ यार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा, सतगुर तरती तर्म है, तिस विच जेहा को बीजे, तेहा फल पाए। गुर सिखी अमृत बीजिया, तिन अमृत फल हर पाए। ओना हलत पलत मुख उजले, ओए हर दरगे सच्ची पहनाए। इकना अंदर खोट नित खोट कमावे, ओह जेहा बीजे तेहा फल खाए। जां सतगुर सराफ नदर कर देखे, स्वावगीर सब उगड़ आए। ओए जेहा चितवे नित तेहा पाएन, ओए तेहो जेहे दैव जाए। नानक दोही

रे कनेरिया जे कारवत होवे साई खाए बिन सतगुर सोजी ना पवे अंकार न विचों जाए अंकारिया नो दुख भुख है हाथ तड्डे कर कर मंगाए कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे मुलम्मा पाज ले जाए जिस होवे पूरब लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए ज्यो लोहा पारस पेटी है मिर संगत सुवरन होए जाए जन नानक के प्रभ तू तनी ज्यो पावे तिवे चलाए पौड़ी जिन हर हृदय सेविया तिन हर आप मिलाए गुण की साज तिन स्यो करी सब अवगुण शब्द जलाए अवगुण विकण पलरी जिस देह सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे आपने जिन अवगुण मेट गुण प्रगति आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो अंदिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुत संजम हर नामे ही तृप्तावे हर नाम तान हर नाम दीबाण हर नामो रख करावे जो चित लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सतगुर पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओ वेला ओ हथ ना आवे ओ अपना बीजिया आपे खावे नरक कोर मुह काले खड़िया ज्यो तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरणी पवे ता उबरे जा हर हर नाम से आवे हर बाता आख सुनाए नानक हर करते एवे पावे महला चौथा पूरे गुर का हुक्म ना मन्ने ओ मनमुख अज्ञान मुठा बिकमाया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे अनहोंदे झगड़े दे उस दे गल पाया ओ गल परोसी करे बहु तेरी उस दा बोलिया किसे न पाया ओ कर कर हंडे जो रन दुहागन उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया गुरमुख होए सो अलिप्तो वरते उस दा पाक छड़ गुर पाक बह जाया जो गुरगो पे अपना सो पला नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया पहला आगम निगम नानक आप सुनाए पूरे गुर का बचन ऊपर आया गुर सिखा वड्याई।

सब पाप जगते का तिन सिर लया, उस अगे पिछे कोई नाही, जिस अंदर निंदा मोह अंब पया, जे सोयने नो ओ हाथ पाए ता खेहू सेती रल गया, जे गुर की सरनी फिर ओह आवे ता पिछले औगण बख्श लिया, जन नानक अंदिन नाम से आया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब दू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याए दे सच सेवन सच्चे तेरा मान, ओना अंदर सच मुख उजरे सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाया।

पूरे सतगुरु से हुन सतगुरु मारे जे मेलन नो बहुते आलोचिए ना दे मिलन करतारे सत संगत तोई ना लहन विच संगत बुर विचारे कोई जाए मिले हुन ऊना नो तिस मारे जम जंदारे गुर बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद की।

कोई पुत्र सिक सेवा करे सतगुरु की, तिस कार्य सब सवारे, जो इच्छे सो फल पाए सी, पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे, सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे, सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे, जन नानक मांगे तूर तिन जो गुरसिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे वड्याई, जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए, डरिये ता जे किछ आप दू कीचै, सब करता अपनी कला वधाए, देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सब आन निवाए, अपने भगता की रख करे, हर स्वामी निंदका दुष्टा के मोह काले कराए, सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए, अन दिन नाम जपो गुर सिखो, हर करता सत

सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी। तू सच्चा साहिब आप है सच था हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवै सच वणंजले गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे तिसदा कदे न होवी पला, उस दे आखिया कोई न लगे नित उजारी पुकारे खला।

जिस अंदर चुगली चुगलो वज्जै कीता करत्या उसदा सब गया। नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके उसदा काला भया। कर्म तरती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए गला ऊपर तपावस ना होई।

जन नानक को सब सोजी पाई, हर दर किया बाता आप सुनाए। मैला चौथा होंदे प्रतख गुरु जो विछड़े, तिनको दर टोई नाहीं। कोई जाए मिले तिन निंदका, मोह फिके थुक थुक मोह पाही। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित पंबल पूसे खाई। जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहां फिराई, तिनकी पुख कदे ना उतरे, नित पुखा पुख कुकाही। ओना दा आखिया को ना सुने, नित हौले हौल मराही। सच गुर की वड्याई वेख ना सकनी, ओना अगे पिछे थाओ नाही। जो सतगुर मारे तिन जाय मिले, रेंदी खोंदी सब पत गवाई। ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके, जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही। हर तिन का दर्शन ना करो, जो दूजे पाए चित लाही। कुर करते आप लिख पाया, तिस नाल क्यो चारा नाही। जन नानक नाम अराध तू, तिस अपड़ को ना सकाही। नावे की

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें, जिसके मस्तक हाथ तरया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे पैज रखे प्रभ सोई पौड़ी। काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विन काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले, से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ को टोया, कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बलद कर नित पल के उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किछ तिद्दू किछ गुज्जा ना।

चरण तोया गुरु सतगुरु पिछे तर गया जो लोहा कार संगोया जन नानक नाम से आए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा वड पागिया सोहागनी जिना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत प्रगासिया नानक नाम समाए पौड़ी एवो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सत्य की विच जोत गुहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत सब आत्म राम पछाणिया ता इक रविया इको ओत पोत इक देखिया इक मन्या इको सुनिया श्रवण स्रोत जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत श्लोक महला चौथा सब रस्तिन कह हृदय है जिन हर वस्या मन माहे हर दरगह ते मुख उजले तिनको सब देखन जाहे जिन निरपो नाम से आया तिनको पो कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको तुर लिखिया आहे ते हर दरगे पे नाई है जिन हर उठा मन माहे ओए आप करे सब कुटम स्यो तिन पिछे सब जगत छड़ाहे जन नानक को हर वेल जन तिन वेख वेख हम

ते जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी, जिन गुरु जनिया माए।

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यों उबली मजीठ है रंग गहगा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू ले अतरती।

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया, ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया, हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया, गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया, तुद आपे आप रखिया, सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया, तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर को सिरजन हारिया, कोई बिछड़ जाए सतगुरु पासो, तिस काला मोह जम मारिया, तिस अग्गे पिछे टोई नाही, गुर सिखी मन विचारिया, सतगुरु नो मिले सही जन उबरे, जिन हृदय नाम समारिया, जन नानक के गुर सिख पुतो, हर जप्यो हर निस्तारिया, महला तीजा, हौ मैं जगत पुलाया, दुर्मत बिखिया बिकार, सतगुर मिले ता नदर होए, मन मुख अंध अंधियार, नानक आपे मेल ले, जिसनो शब्द लाए प्यार, पौड़ी, सच सच्चे की सिफत सलाह है, सो करे जिस अंदर पिजे, जिन्नी इक मन इक अरादिया, तिनका कंध ना कबहू छिजे, तन तन पुरख सावास है, जिन सच रसना अमृत पिजे, सच सच्चा जिन मन पामदा, से मन सच्ची दरगह लिजे, तन तन जन्म सचियारिया, मुख उज्जल सच करिजे, श्लोक महला चौथा, साकत जाए निवे गुर आ गए, मन खोटे कूड़ कूड़ आरे, जा गुर कहे उठो मेरे पाई, बह जाहे कुसर बगुलारे, गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै।

पौड़ी सच सुत्या जिनी आराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे हौ बलिहारी तिन कहो जे अंदिन सच लवे जिन मंतन सच्चा पामदा से सच्ची दरगें गवे जन नानक बोले।

लित उठ समालेन। महला चौथा, सत गुर सेविए अपना पाये नाम अपार, पौजल डुबदिया कढ लए हर दात करे दातार। तन तन से सहा है जे नाम करें वापार, वन जारे

जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच ला दिया सच साहिब सच जिनी सेविया काल कंटक मार तिनी साध्या सच सच्चा सब दू वड़ा है सच सेवन से सच रला दिया सच सच्चे नू सवास है।

बिन गुर मनुआ नाटके फिर जूनी पाए। हर प्रभ आप दयाल होए ता सतगुर मिलिया आए। जन नानक नाम।

रंग सुभाए, सतगुर सेती मन रता रखिया बणत बनाए, जिहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए, नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए। पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया, सो सच सालाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याया, सालाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया, जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया, सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा, मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़,

गुरमुख जापे शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, ज्योतिष पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी, तू करता सब किछ जानदा, जो जिया अंदर वरते, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणत है, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनते, तू कट कट एक वरत।

था। एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाई है चित, क्यों सास गिरास विसारी है, बहंदियां उठदियां नित, मरण जीवन की चिंता गई, एहो जीड़ा हर प्रभु वस, ज्यों पावे त्यों रख।

जिन गुर गोपिया अपना तिस ठौर न ठाओ, हालत पलत दो वै गए दरगे नाही ताओ। ओह वेला हथ न आवई फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणते कुसी है दुखे दुख विहाए। सतगुर

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डे मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका।

आपो आपनी आपे पछताणी अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े काणी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साह के सेई परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए।

चौथा मन मुख मूलों पुल्या विच लभ लोभ अंकार झगड़ा कर दिया अन दिन गुदरे शब्द ना करें विचार शुद्ध मत करते सब हिरलई बोलन सब विकार दित्ते किते ना संतोखिये अंतर तिसना बहु अज्ञान अंध्यार नानक मन मुखान।

पंजवा गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया पन्नन करण समरथ प्रभ सदा संभाले मित्र तू दुख सबाया लथ। महला पंजवा खुद आवंत ना जाने लाज कुलाज कु

गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरुष सुने सो

के पूरे सतगुरु पावे। गुर सिखा अंदर सतगुरु वरते, जो सिखा नो लोचे सो गुर खुशी आवे। सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे। गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे। विण सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना।

जे बिन सतगुर के मन मने काम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुह जेवर तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम

तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना थान थनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना नानक प्रभ शरणागति सद सद कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा। चेताई ता चेत साहिब सच्चा सोतने नानक सतगुर सेव चढ़ बोहित पौजल।

काम क्रोध लोभ मोह संग सादा पखे, कर कृपा प्रभ आपनी हर आप परखे, नानक चलत ना जापनी को सके न लखे। श्लोक महला पंजवा। नानक सोई दिन सुहावड़ा, जित प्रभ आवे चित, जित दिन विसरे पार ब्रह्म, फिट पलेरी रुत। महला पंजवा। नानक मित्राई तिस स्यों, सब किछ जिस कह हा।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊण न काई जाए, नानक लद्दा तिन सुआओ जिना सतगुर पेटिया।

नानक नाउ जो पंदो तिस्तानी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी। सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी। तोसा दिच्चे सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा। अंतर चिंता नैनी सुखी, मूल न उतरे पुख। नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो दुख। महला पंजवा। मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच न लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमिल इक पछाणिया। पौड़ी। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समरथ अपना बिनसे सब मंदा। पतित उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत वच्छल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा।

मर भी न सकें मूल, वेमुख होए राम ते ज्यो तस्कर उपर सूल। पौड़ी। सुख निधान प्रभ एक है अविनाशी सुनिया, जल थल मैयल पूरिया कट कट हर पणिया, ऊंच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया, मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया, तुस नानक देव।

बिखै कौड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाम पौड़ी। ए निशानी साधकी जिस पेटत तरिए जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिए पव सागर संसार बिख सो पार उतरिए हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिए।

जिन हर उठा चित गाली अल पला लिया कम न आवे मित। महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम नाम तन कीता पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी तो वो ना चली खसम नाल लब मोहे विगुते करतब करन पलेरिया मद माया सुते फिर जून पवायन।

तिस मन वसिया सोए पौड़ी। सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाव मिठा, साध आया तिन हर जना चख सादी डिठा। पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा, एक निरंजन रव रहा पाव दोया कुठा। हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुठा। श्लोक महला पंजवां।

जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया, जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया, रंग रते निर्वाण सच्चा गावही, नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी। जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे, जीवत से परवान होए।

एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ जियो हमारा खनी है हर मंतन संदड़ी वत। महला पंजवा जे कर गए प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोज कैसूल। पौड़ी सब निधान कर जिस दे हर करे सो होवे जप जप जीवे संत जन पापा मल तोवे चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे गुरपुरा जिस पेटिए मर जन्म ना रोवे प्रभ दर्श प्यास नानक घणी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा पूरी परम वंजाए प्री मोहब्बत हिक तू जिथों वंजे जाए तिथाऊ मौजूद सोए। महला पंजवा चढ़ के कोड़े कुंदे पकड़े

रसना उचरे हर श्रवणी सुने सो उदरे मिता हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता नानक लड़ लाए।

14 अब मोहे जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाये, सो जल बिन भगवंत न पाये, जे पावक सुर न

तू सतगुर हौ नौतन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौरी कबीर जी जब हम एको एक कर जानिया, तब लोगे काहे दुख मानिया। हम अपत्ते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई रहाओ। हम मंदे मंदे मन माही, साँझ पाथ काहू स्यो नाही। पत अप

नगन फिरत जो पाए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिये पाई, खुश रह क्यों ना परमगत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी संध्या प्राप्त।

देव कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण।

राजा रंक दो मिल रोई है, जो पैरसना राम न कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो। रहाओ जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कौ का की माया। जस जंती मह जियो समाना, मुए मरम को का कर जाना। हंसा

तट तीरथ नहीं मन पतियाए, चार अचार रहे उरझाए, पाप पुन दोए एक समान, निज कर पारस तजो गुण आन, कबीर निर्गुण नाम न रोस, इस पर चाय परच रहो एस। गौड़ी कबीर जी, जो जन परमित परमन जा

आई, लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कच तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ चंदन

अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। रहाओ जोगी जति तपि ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी, साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभु कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा, ऐसो अचरज देखो कबीर, दद के पोले बिरोले नीर। रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हाते ही गय मरे। माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चूगे नित पेड़। राम रमत मत प्रगति आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे, ज्यों जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हों तप का ही ना। अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया। बहुत वर्ष तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी। काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी। कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री रामे। गौड़ी कबीर जी चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा। इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उर्वार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेह ना हर को नाम। हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर। गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसा।

हार चुके। जम से उलट पए हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलट पए हैं मीता, साकत उलट सुजन पे चीता। अब मोहे सर्व कुशल कर मान।

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुखमन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रहो जे बहुर

आवो लोचा समसर इहो व्यवहारा तत विचार क्या और विचारा अब तेज बाय पृथ्वी आकाशा ऐसी रहत रहो हर पासा कह कबीर निरंजन त्यावो तित कर।

है मोल। अब मोहे राम अपना कर जानिया, सह सुभाए मेरा मन मानिया। रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया, राम भगत बैठे कर आया। कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज पागी। गौड़ी कबीर जी जिहे मरने सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द प्रगासिया। अब कैसे मरो मरन मन

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

कौन सो मुन जो मन मारे हैं, मन को मार कहो किस तारे रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन पगत न होई। कहो कबीर जो जाने पेओ, मन मधुसूदन त्रिभुवन देओ। गौरी कबीर जी। ओए जो दिसे अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे। कहो रे पंडित अंबर कास्यो लागा, बूजे बूजन हार सवागा रहाओ। सूरज चंद करें उजियारा, सब में पसरिया।

कहो कबीर हर चरण दिखावो, पाछे ते जम क्यों ना पठावो। गौड़ी कबीर जी आपे पावक आपे पवना, जा रहे खसम ता राखे कवना। राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहा समाए रहाओ। काको जरे काए हुए हान, नटवट खेले

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे। विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप न रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पे हो, ए मन लीन पे।

तो समरथ निज पत है दाता, कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवरना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो, हर ठग जग को

कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगोरी ठग पहचानिया। अब मोको पै राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई। रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार। चरण कमल स्यों

पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओ पत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक।

वो कोई कुशल कुशल करते जग बिन से कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आ गए जियो देही ऐसे पितर तुम्हारे।

गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया अंजन माए निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है गुरमत मनुआ अस्थिर राखो इन विद अमृत पियोई है रहाओ गुर के बाण बजर कल छेदी प्रगटिया पद परगासा सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका नेचल शिव कर बासा तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है यो जग बेद्या पाई दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे डोर रही लिवलाई उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुर्मत पागी कहो कबीर अनुपव इक देखिया राम नाम लिवलागे गौड़ी बैरागन तिप दे उल्टत पवन चक्र खट पे दे सुरत सुन अनरागी आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पई अवरे नातर था बेगाना रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर्म

जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए, कहो कबीर बल जाओ गुर अपने, सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप पुन दोए बैल बिसाहे, पवन पूजी प्रगास्यो, तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बन जा रहा रहाओ, काम क्रोध दोए पै जगाती, मन तरंग बटवा।

पंडित गुणी सूर हम दाते ए कहें बद हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने विकारा हर पद दृढ़ कर रही।

तोल न तुलिए पाचन शेर अधाई, जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई। दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कति आई।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो बिसारियो रे हीरा लाल।

उनमत मान हिरियो मन माही, गुर का शब्द न तारियो रे। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो, मदरस लैत बिकारियो रे। कर्म पाग संतन संगाने, कासट लोह उधारियो रे। तावत जोन जन्म प्रम थाके, अब दुख कर हम हारियो।

चलत रचियो जगदीश काम सुआए गज बस परे मन बौरा रे अंकस कयो शीश बिखे बाच हर रात समझ मन बौरा रे निरपय होए न हर पजे मन बौरा रे गयो न राम जहाज राव मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया।

राम नाम तन कर संचौनी सो तन कथी न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गोविंद।

मन मुकंद जिहबा नारायण परे न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अम्ब थम्ब।

रमैया गुण गाये जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए ज्यों संपै

0: गौड़ी
1: पंथ निहारे कामनी लोचन परी ने उसासा पूर्णा पीजे पग न खिसे हर दर्शन की आशा उड़ो न कागा कारे बेग मिली जय अपने राम प्यारे रहाओ कह कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण रसना राम रवि जय रागोड़ी यारवा आस पास कन तुलसी का बिरवा माज बना रस गाऊं रे ओ आकाश रूप देख मोहि।

कहां पया नर देवा तोखे, क्या जल बोरियो गया तार, जीरे जाहेगा मैं जाना, अब जत समझ आना, जत जत देखो।

तो परम प्रकट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंगते डरपे सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बहुरा अब तो जरे मन

जोन में प्रमथ नंद बहु ठाकुरे भगत हेत अवतार लियो है पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब यो नंद कहा थोरे। रहाओ संकट नहीं परे जोन नहीं आवे नाम निरंजन जा कोरे कबीर को स्वामी।

तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही, अब हम तुम एक भये हैं, एक कह देखत मन पति आही। जब बुध होती तब बल कैसा, अब

बांधी बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुलफ प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मन जागत रहो रे पाई। गाफल होए कै जन्म गवायो।

मन फूली बस अनूप न पाई, कहत कबीर नवे कर मूसे दसवें सत समाई। गौड़ी माई मोहे अवर

दिखै रोग पै बंधन पागे, मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ, दूसर मने न अनाना। चंदन बास पहे मन बासन, त्याग कट्यो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर, तास प्रभु है खाना ना। ते बड़ पाग बस्यो।

उपकार बटक बीज में रव रहो जाको तीन लोक विस्तार। अल्लह लहंता पेद छे कछ कछ पायो पेद उलट पेद मन भेदियो पायो अपंग अछेद।

लिख अर मेटे ताहे न माना, ओंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल में पावा।

टट्टा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के न जाही, देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट कट पर चो पावा। ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगिया

जोत्रे भवन तन माहे समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर ना रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन की जय तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो आवा तो अर्दे उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई निरखत निरखत जा

निवारे, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रिय ओ कंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब है मन माना।

भोग लक्ष्मी बरस्यों जो लियो लावे सोग मिटे सभी सुख पावे खखा खिरत खपत गए केते खिरत खपत।

अंग माया ब्रह्म रमे सब संग ना ओ बढ़े न कटता जाए अकुल निरंजन एक है पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे अनद मूल परम पद पावे साध संगत उपजय विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कबहो न बहो।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

मेरा कर्म कुटलता जन्म को भांति, राम गुसैया जी के जीवना मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहा, मेरी हरो विपत जन करो सुभा।

सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान। बाहर उदक पखारिय कट पीतर विविध विकार, शुद्ध कमन पर होए वो सुच कुंचर विद व्यवहार। रव परगास रजनी जथा गत जानत सब संसार, पारस मानो ताबो छोए कनक होत नहीं बार। परम परस गुर पेटी है पूरब लिखत लिलाट, उन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट। भगत जुगत मत सत करी।

गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन, लिख लिख तरम विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले, गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोणी

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे तुझ जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाई तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुर।

पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नजर करे सा सुहागण होए, आसा मैला पहला ग्रियो बन संतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज थाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन भगवान रहाओ, अधिक त्यास पेक बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ नाम।

तन मन हर पै आ गए जिंद, झूठ विकार महा दुख देहे, देख वरन दिसे सबके, जो उपजे सो आवे जाए, नानक अस्थिर नाम रजाए, आसा मेला पहला, एको सर्वर कमल अनूप, सदा विदासे परमल रूप, उजल मोती चू गए हंस, सर्व कला जगदीश।

जो हर राते थे जन परवान, तिनकी संगत परम निधान। हर बार जिन पाया तन नारी, हर स्यो राती शब्द विचारी। आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे। हमरी जात पथ सच नाओ, कर्म तर्म संयम सत भाओ।

एक तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यों जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला को किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकथ कथो गुरुमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, सात वेद सिमरत बहु भेद, अठ मज्जन हर रस रेद, गुरुमुख निर्मल मैल न लागे, नानक हृदय नाम वडे तुर पागे, आसा मेला पहला, निव निव पाए लगो गुर अपने, आत्म राम निहारे।

गुर प्रसाद रतन हर लाभे, मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ। रमनी रवे बंधन नहीं टूटे, विच हों मैं परम न जाई। सतगुर मिले ता हों मैं टूटे, ताको लेखे पाई। हर हर नाम भगत प्रे प्रीतम, सुख सागर उर्धारे। भगत वचन जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारे। मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए, मनसा मने समाए। नानक कृपा कर।

0: भूख रहे।
1: ऐसा गुरमत रमत शरीरा, हर पद मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ। अनत तरंग पगत हर रंगा, अन दिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम पगत जन रहे निरारा। पूती काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार अपरंपर हीरा, लाल रता मेरा मन धीरा। कथनी कहे कहे से मुए, सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखा माया छाया, नानक गुरमत नाम ते।

अंध जीव रख नाही तन्नी पवन न आजे चरनी चले पजूता आगे बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग पोए।

सब जप तप जिस हर हृदय अलखा व्यवहार नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आसा महला पहला पंच पदे

कोई नदर करे मेला वा होई राव सरोरड़े तन साच पछाणिया सह सुधाए अपना फिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामन कंते मन भावे कहत नानक पै पाव का करे सिदार सधी से जैर।

कै कोई जाति स्थावे बख्शे सोई गुर प्रसादी दुर्मत खोई जय देखा तह एको सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समा।

डूबिय ले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हूँ जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म तया प्रणवत नानक तिनकी।

जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिप्पी वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मैला पैला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा उपर फुरमाइश तेरी लख उठ रखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निरा फल का

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जेवसे नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमस्यो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मरिया कर एकटे एक रतीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राहो सच्चा नावन तासी है जा एनस लागे पाओ इक लोकी होर छमिछरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कभू निकूटस नाहे।

कर कर पगवे पेख पए तौ कारण साहिबा रंग रते तेरे नाम अनेका रूप अनंता कह न जाही तेरे गुण के ते रहाओ दर कर महला हस्ती कोड़े छोड़ विलायत देश गए पीर पे कांबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया खाए पए साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमड़ लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश भए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत तोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवे नानक जात कैसी आसा कर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पीतर पंच गुप्त मनवासे फिर न रहे जैसे पवे उदासे मन मेरा दयाल सेती फिर न रहे लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ फूल माला गल पहरोगी हारो मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिंगारो पंच सखी हम एक पतारो पेड़ लगी है जीड़ा चालन हारो पंच सखी मिल रुदन करे हार साहो कजूता प्रणवत नानक लेख।

खिमा सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बो गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा महला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कही है भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला खुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बौड़ हुकुम ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई। जे को दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी सतरंज बाजी पक्के नहीं कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

मां हंडावो जो किछ करे पला कर मानो सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुगे जुग जोगी परम तंत में जोगं अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस पोगं। रहाओ शिव नगरी में आसन बैसो कल्प त्यागी बादं सिंगी शब्द सदा तुम सो है एन स्पूर नादं। पक विचार ज्ञान मत डंडा वर्तमान विपूतं हर कीरत रह रास हमारी गुरुमुख पंथ अतीतं। सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। ऐसा मेला पहला गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे कर करनी कस पाई है।

रंग रच रहा एनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गया रहाओ पूरा साच प्याला सहजे तिसे पियाए जंग को नदर करे अमृत का व्यापारी हो वह क्या मद छूछे पाव करे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम हो वह मुक्त वैकुंठ करे क्या सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर पर जोगी खीवा अमृत धारे आशा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पाई कर लाने ते की दर्द न आया करता तू सगना का सोई जे थकता सकते को मारे काम रोष न होई रहा सकता सिंह मारे पै वगै खसमे

जो मन गाते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुगाए रहाओ, शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर, आखण आखे बके सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार, आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा।

पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत्सर हर जल नाया, दुर्मत महल सब दुर्त गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण बिगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, उस तक निंदा गुर समझन आई, इस जुग में लहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एकठो छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाए, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हो मैं मारे सदा उदासा, आसा मेला तीजा, लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दो संकर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे, रहाओ करणी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को थाए न पाई, करणी कीरत नाम वसाई, आपे देवे टिलना।

दोहागणी का मन देख सिंगार पुत्र कलत तन माया चितलाए चूत मोह पाखंड विकार राव सदा सुहागन जो प्रब पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अंदिन हर रावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागन साची जिस

जिहे कर्म कमाए सब दे ऊचो ऊचा होए नानक साथ समावै सोए आसा मेला तीजा भगत रता जन सहज सुभाए गुर कै पैसा चै साथ समाए बिन गुर पूरे भगत न होए मन मुख रूने अपनी पथ खोए मेरे मन हर जप सदा।

अंतर निर्मल अमृत सरण आए, सदा सूचे साथ समाए। हर प्रभ वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर। जहा जाओ तै वेखा सोए, गुर बिन दाता वरना कोए। गुर सागर पूरा पंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार। गुर प्रसादी देवन हार, नानक बख्शे बख्शन हार। आसा मैला तीजा, गुर सायर सतगुर सच सोए। पूरे पाग गुर सेवा होए, सो बुझे जिस आप बुझाए। गुर प्रसादी सेव कराए, ज्ञान रतन सब सोजी होए। गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे, अंधन जागे वेखे सच सोए। रहाओ मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर पे सोजी पाए। अंतर महल गुर शब्द पछाणे, आवन जान रहे फिर नाम समाणे। जम्मा मरना है संसार, मनमुख अचेत माया मोह गुबार। पर निंदा बहुकूर कमावे, विष्टा का कीड़ा विष्टा माय समावे। सत संगत मिल सब सोजी पाए, गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए। पौना मन्ने सदा सुख होए, नानक सच समावे सोए। आसा मैला तीजा, पंच पदे शब्द मरे तिस सदा आनंद। सतगुर पेटे गुर गोविंद, ना फिर मरे ना आवे जाए। पूरे गुरते साज समाए, जिनको नाम लिखिया तुरलेख। ते अंदिन नाम सदा त्यावे, गुर पूरे ते भगत विशेख। रहाओ जिनको हर प्रबले मिलाए, तिनकी गहन गत कहीं ना जाए। पूरे सतगुर दित्ती वड्याई, उत्तम पदवी हर नाम समाए। जो किछ करे सो आपे आप, एक कड़ी में थाप थाप। कह कह कहना आख सुनाए, जे सो काले थाए ना पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए। जहाँ शब्द वसे तहाँ दुख जाए, ज्ञान रतन साचे सहज समाए। नावे जेवड होर तर नाही कोए, जिसनो बख्शे साचा सोए। पूरे शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए। आसा मैला तीजा, नृत्य करे बहु वाजे बजाए। यो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए। अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बले न सोजी पाए। गुरमुख भगत कट चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए। रहाओ गुरमुख निरत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए। मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार। गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी पव जल तरे। गुर के वचन भगत खाए पाए, हर जीव आप वसे मन आए। हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, नेचल भगत हर स्यो चित लाए। भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए। आसा कर अठवा काफी मैला तीजा, ओंकार सतगुर प्रसाद। हर कै पाणे सतगुर मिले, सत सोजी होई। गुर प्रसादी मन वसे हर बूझे सोई। मैं सहुदाता एक है और नाही कोई। गुर कृपा से मन वसे ता सदा सुख होई। रहाओ इस जुग में निरपो हर नाम है, पाई है गुर विचार। बिन नामे जम के वस है,

जाना है सोई जन जाने हर गुण सभी आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिंदु जावर न कोए तू कर कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इको ओंकार सतगुर प्रसाद रागा साथ हर दूजा महला चौथा किस ही तरह किया मित्र सुख नाल भाई किस ही तरह किया कुरुम सके नाल जवाई किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुहाई हमारा तरह हर व्या समाई हम हर स्यो तरह किया मेरी हर केक मैं हर बिन पथ तरा और न कोई हूँ हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ जिन स्यो तड़े करे से जाहे झूठ कड़े कर पछोताहे फिर न रहे मन खोट कमाहे हम हर स्यो तरा किया जिसका कोई समर्थ न है ये सब कड़े माया मोह पसारी माया को लूजे गवारी जन्म मरे जुए बाजी हारी हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए हमरा हर तरह जिन ए तड़े सब गवाए मिथ्या दूजा पाओ तरे बह पावे पराया छिद्र अटकले अपना अंकार वधावे जैसा बीजे तैसा खावे जन नानक का हर तरा धर्म सब श्रिष्ट जिने आवे आसा मेला चौथा हृदय सुन सुन मन अमृत पाया गुरबाणी हर अलख लखाया गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना एको रवरिया कट अंतर मुख बोलो गुर अमृत बहना रहाओ मैं मन तन प्रेम महा बैराग सतगुर पुरख पाया वड़ पाग दूजे पाए पवे बिख माया पाग हीन नहीं सतगुर पाया अमृत हर रस हर आप पियाया गुर पूरे नानक हर पाया गुर पूरे नानक हर पाया आसा मेला चौथा।

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मुख कट कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, गडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रविया सब सास ग्यासा रहाओ, नाम ने सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा। पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उठापे, नानक नाम देवे हर आपे। आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस रसाई। हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमुख सालाही। मारिया काल जम कंकर पुयंगा रहाओ, हर हर गुर में पगत रखाई। गुर सुखा सिख देवे मेरे भाई, हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने। जो कुंचर नाए खाक सिर छाने, जे वड पाग होवे वड ऊचे। नानक नाम जपे सच सूचे, आसा मेला चौथा। हर हर नाम की मन भूख लगाई, नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई। नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता, नाम जपो नाम में सुख पावो।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यों मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्ते तिस आगे हम आदेश राओ। गावे राग पात बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जोवे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चर।

जोगी जंगम श्रेष्ठ सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लागो मनुआ पेल। ऐसा मैला चौथा कब को पहले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बने आई हों हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। कब तो मेले पंच सत गायन कब को राग तुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे कब लग मेरा मन राम समारे। कब को लोगन को पति आवे लोक पति ने ना पत होए जन नानक हर हृदय सद त्यागो ता जय जय करे सब कोए। आसा मैला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे पाई हम जन के तो मैं पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे अन दिन हर लिवलाए जो इच्छो सोई फल पाओ फिर भूख न लागे आए। आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत पले तुद पावे जिनकी पत पावे खाए। नानक आख ना राजे हर गुण जो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हर अपने गुण गाहक वनज ले जाए। एक ओंकार।

जीवन मरण सुख होए जिना गुरु पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। आसा मैला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुरु प्रसादी बुझ सच।

हर गुण गाइए, अंतर वक्त अनेक मनमुख नहीं पाइए, हम गर्भ गर्भ आप खुआइए, नानक आपे आप खुआइए, गुरमत मन पर गास सच्चा पाइए।

बताया हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहाओ हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन हम हर दिन रह न सको हम एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह न सके तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन किन्हू प्रीत लाई दूजा पाओ रिज पार किन्हू प्रीत लाई मोह अपमान हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत।

बिरकत कहो हर दर्शन मीत कहताएं। जैसे अल कमला बिन रह न सके तैसे मोए हर दिन रह न जाए। राज करण जगदीश सुर प्यारे मोए सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक कै मन अंध होत है हर दर्शन निमक दे।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पर दोष दिखाया, पाई मीत कुटुंब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख विमोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा।

जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरुमुख नेड़ ना आवा। आसा मैला पंजवा, ससु ते फिर की नीवाक, देर जिठानी मोई दुख संताप।

मैं प्रीत दुखिया त्यागी लोगारीत त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधया ज्योत स्वरूप अनाद वाजया महा आनंद गुर शब्द विचार त्रै सो राति तन सुहागन।

आचार जित गृह वसै सो गृह सो बावंता गुरमुख पाई किन विरलै जनता सो करणी कामन गुरमिल हम पाई जज काज परथाए सुहाई रहाओ जिचर वसी पिता के साथ टिचर कंत बहु फिरे उदास कर सेवा सतपुरुष मनाया गुर आनी कर मैं तौ सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सत संतत पूत आज्ञाकारी सुगर स्वरूप इस पूरे मन कंत स्वामी सगल संतोखी देर जेठानी सब परवार माए श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृह जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख विहाए।

तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, पढ़ थाके सिमरत वेद व्यास। जै बैसो तै नाले बैसे, सगल कौन में सबल प्रवेश है। होची शरण पया रह न पाई, कौमी ताहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर पे आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वस्या गुण गाए अनंता, प्रब मिलियो नानक कहे अचिंता। पर मेरा ए नायक हमारी, ए आमर हम गुर किए दरबारी।

नानक दास तेरी शरण आई, प्रभ राखी पैज वजी वधाई। आसा महला पंजवा। परदेश चार सौदे को आया, वक्त अनूप सुनी लभाया, गुण रास बन कल्याणी, देख रतन यो मन लपटानी। सादा पारी द्वारे आए, वखर काडो सौदा कराए रहाओ, साहे पठाया साहे पास, अमोल रतन अमोला रास, विष्ट सुभाई पाया मीत, सौदा मिलिया ने चल चीत। पौ नहीं तस्कर पौ न पानी, सहज विहाजी सहज ले जानी, हट के खटे दुख नहीं पाया, सही सलामत कर ले आया। मिलिया लाहा पै आनंद, तन सहा पूरे बख्शिंद, ये सौदा गुरमुख की।

आसा मेला पंजवा दुख रोग पय गत संते मन निर्मल हर हर गुण गाए।

तावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अघाए, जन्म दोख परे मेरे पाछे, अब पकरे ने चल साधु पाए, शायद तुन गावे मंगल मनुआ, अब तांतो फुनकाल न खाए, करण कारण समर्थ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय, नाम तेरा जप जीवे नानक, पोत पोत मेरे संग सहाय, आशा मैला पंजवा अरड़ावे बिललावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ, जे कोई उसका संगी होवे, नाले ले सिदावे, अनहोंदा अजगर पार उठाए, निंदक अग्नि माए जलावे, परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते, सो नानक आप सुनावे, भगत जना को सदा आनंद है, हर कीर्तन गाए बिकसावे, आसा मेला पंजवा, जो मैं कियो सगल सिगारा, तो भी मेरा मगना पतियारा,

बस्तर विकोख में सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितना लेख है, पट शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु का वासा सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक अर बहुत फुरमाइश, मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिलबे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मुस्तक पाग तिन सब गुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभु मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

बिस्ता अस्त रख परे थे चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वक्त बूझे ता हो वह पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिससे पाई है हर पुरुष जान। आखा महला पंजवा, एक तुके चौपदे।

खुद जन बकरा मोको कहाँ डवाई रहाओ हर मेरी ओट में हर का तान हर मेरा सखा मन माहे दीवान हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो गुरमुख तन छट्टी हर मेरा सा हो गुर कृपा से ए मत आवे जन नानक हर कै अंक समावे आसा मैला पंजवा प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई सतगुर सेव सब फल पाई मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा मनसा का दाता सब सुख निधान है अमृत सर सब ही पर पूरा रहाओ चरण कमल रिद अंतर धारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे पंच सखी मिल मंगल गाया अरहद बाणी नाद बजाया गुरु नानक चुट्ठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सह सुवाए आसा मेला पंजवा कर कृपा हर प्रगति आया मिल सतगुर तन पूरा पाया ऐसा हर तन संचिय भाई कहे न जाने जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कत हो न जा रहा कोट न आवे निकुट न जाए खाए खर्च मन रहा अगाए सो सत्सा हो जिस पर हर तन संचाना इस तन से सब जग वरसाना तिन हर तन पाया जिस खूब लिखे का लेना जन नानक अंतवार नाम गहना आसा मेला पंजवा जैसे किसान बोवे किसानी काची पाकी बाढ़ परानी जो जन में सो जानो मुआ गोविंद भगत अस्थिर है।

घर में वक्त बाहर उठ जाता, सुनी न जाई सच उमड़ता था, वार करते चूठी लग जाता रहा, वजो साहिब का सेब बिरानी, कैसे गुने अच्छा दियो प्राणी, तिस्यो लूक जो सद ही संगी, काम न आवे सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभु दीन दयाला, ज्यो पावे त्यों कर कृतपाला, आसा मेला पंजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहा उहा उन संकाम, बिन हर नाम अवर सब छोरा, तृप्त अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ, पगत पंडार

निर्बुद विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पन्यवा बुद्ध प्रगास कई मत पूरी तमते बिनसी दुर्मत दूरी ऐसी दुर्मत पाई ने बूढ़त कोर

गुरु पूरे प्रगट मार्ग दिखाया, जात पात कछ उक्त न मोरी, गुरु नानक शरणागत तोरी, आसा मेला पंजवा तिप दे दूजा, हर रस पीवत सद ही राता, आन रसा खिन में लह जाता, हर रस के माते मन सदा आनंद।

जाए, हर साधु हर समाए, लाख करोरी मिले न के, जिसे प्राप्त तिस ही दे, नानक चाक पहे विस्माद, नानक गुरते आया साद, ईत ऊत कस छोड न जाए, नानक गीदा हर रस माहे, आसा मेला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटके दुर्मत अपने

आज्ञा मान प्रगट हुए तुम्हारी, जो इव मंत्र कमावे नानक सो पौजल पारे उतारी। आसा मेला पंजवा दुख दे पई पराप तुम मान खुदे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अगर काज तेरे किते न काम, मिल सौर संगत पद केवल नाम, संग जाम लाग पव जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तक संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जाने हर राया, कहू नानक हम नीच कर्मा शरण करे।

उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगन सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छुड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मानिया पाप मुआ बिक खाए प्रभाओ पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप सहाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा महला पंजवा।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुर लेखिन में तारे राव सबकी रेन होए रह मनुआ सगले दिशे मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम त्याए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पारावारे तुमरी कृपा ते गुरु गावे नानक त्याए त्याए प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पंजवा तू बेअंत अविगत अगोचर एह सब तेरा आकार क्या हम जंत करें चतुराई जहाँ सब किछ तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार।

राम आधार अर्ध करे सास सास समारे ना पोहे अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी रिद अंतर।

राज मिलक जो बन गृह शोभा रूपवंत जो आनी बहुत दर्द हस्ती अर कोड़े लाल लाख बयानी आगे दर्घ है कामना आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाये उठत बैठत सोवत जागत।

एक दिहाड़े कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने उपदेश करे आप ना कमावे सत शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवं पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुरमिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद प्रम में सोई सगल जगत कंद अंध को जागे हर जन महामोहनी मगन प्रिय प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सुख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा अवर नहीं रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानक जन की जो तू करे करावे रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निदान हर गाया जा को टेक तुम्हारी स्वामी का को नाही चिंता जा को दया तुम्हारी हुई से सहा पले भगवंता कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया वर्तन नाम ना।

को किस पे करे पुकारा। निंदक की दत कत हूँ नाही खसमे एवे पाना, जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुखमाना। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा मैला पंजवा बार तोए अंतर मन मैला, दोए ठौर अपने कोए इहां काम क्रोध मोह व्याप्या, आगे मुसमुस रोए गोविंद भजन की मत है होरा। गर्मी मारी साथ न मरी नाम ना सुने डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ दवाई भक्ति सार न जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा।

छुपाया, कूड़ कपट वंश निमुनिया दाला, बिरस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले आसा मैला पंजवा। उदम करत हो गए मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वसगत राख है मन में एकंकारे, तेरा जन नृत्य करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल कुंगुरु अनहद शब्द बजावे, रहाओ प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर रिझावे, राम नाम जप हृदय जापे मुक्ति सगल सुनावे, कर संग साधु चरण पखारे संत पूर तन लावे, मन तन अर्थ करे गुर आगे सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पे खेलाए सरदा ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी नृत नरक निवारे नानक गुरमुख जागे आसा मैला पंजवा। अदम चंडाली।

आई रे आज के बस गुरकीनो के हर कुकर तिने लगाई रे राव बाज थूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चुपी निर्नो पाया रे माल दुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया।

कहो नानक गुर अम्यो पियाया रसक रसक बिगसाना रे। आसा मेला पंजवा बंधन काट बिसारे औगन अपना बिरध समारिया होए कृपाल मात कितने आई बारक ज्यो प्रतपारिया गुर सिख राखे गुर गोपाल काड लिए माँ पौजल ते अपनी नदर निहाल रहाओ जा कै सिमरन जमते छुटिए हलत पलत सुख पाइए सास गिरास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाइए भगत प्रेम परम पद पाया साध संग दुख नाठे छिजे न जाए किछ पौ न व्यापे हर तन निर्मल गाठे अंत काल प्रभ पै सहाय इत उतराखन हारे।

मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो राव तुमरी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे सहजे बिखिया पई कियो सुख निधान नाम प्रभ तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझे सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सुमानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सुकल जुग साध संकीर्तन गाये।

सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया, काटिया रोग मां सुख पाया, हर अमृत मुख नाम दिया।

नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ न जाने मेरा पासा मेला पंजवा। कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म न आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरोरे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ताके संग तरोरे। राव महा उद्यान पावक सागर भय, हरख सोग में बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना। तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पे जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राखनहार है, जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब कुमरा दाते, नानक सद कुर्बाने। आसा मेला पंजवा, मुह मलन नींद के छुटकी।

त्योरी सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुट्योरी दावा अग्न बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहोरी ऐसो समरथ वरण न साको ताकि उपमा जात न कहोरी काजर कोट में पई न कारी निर्मल बरन बन्योरी महामंत्र गुर हृदय बस्यो अचरज नाम सुन्योरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा।

प्रभ आप सिंगार सवारन हार रहाओ दूजा आसा मेला पन्नवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मुझे मिली हदूर चुकाने हो रा सकी सहेरी परम गया गुर फिर संग मेरी रहाओ निकट कौन प्रे सेज तरी कौन कदम ते छूट परी मंदर मेरे शब्द उजारा अनज बिनोदी खत्म हमारा मस्तक भाग में फिर कर आया फिर सोहाग नानक जन पाया आसा मेला पंजवा साच नाम मेरा मन लागा लोगन से मेरा ठाठा बागा।

बहुत सिहाला सगल चरण की इहु मन राला नानक जन गुरु पूरा पाया अंतर बार एक दिखाया। आशा मेला पंजवा पावत रलिया जो बन बलिया नाम बिना माटी संग रलिया कान कुंडलिया बस्तर ओढ़लिया सेज सुख लिया मन गर्बलिया रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक्षतरिया हर पगत बिना ले तरन गडलिया रूप सुंदरिया अनिक स्त्रिया हर

बिन सब स्वार्थ क्रिया माया चलिया विकार बिखलिया शरण नानक प्रभु पुरुष दयनिया आसा मेला पंजवा एक बगीचा पेड़ कन करिया अमृत नाम तहा मैं फलिया ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाये पद निर्वाणी आस पास बिखुआ के कुंता बीच अमृत है पाई रे रहाओ सिंचन हारे एक है माली खबर करत है पात पत डाली सगल बनस्पत आन जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास तरी।

रता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, परत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अंकार, कर्म कर्त जी को जंजार, प्रभ कृपा से मनवस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन गाय, यो स्थान गुरु ते पाय, राव दूजा आसा मेला पन्नवा। कर में सुख बार फुल सूखा, हर सिमरत सगल बिना से दुखा, सगल सुख जा तू चित आवे।

तह दुख डेरा हुकम बूझै सोई परवान साथ सब जाता निशान गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया पंत नानक मेरे मन सुख पाया आसा मैला पंजवा जहाँ पठावो तह तह जाए जो तुम देहो सोई सुख पाए सदा चेरे गोविंद गोसाई तुमरी कृपा ते तृप्त अगा।

कहो नानक नित इवै त्याई गत होवे संतै लग पाई। आसा मैला पंजवा उठत बैठत सोवत त्याये मार्ग चलत हरे हर गाये। श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा दुख रोग सगले मन लखा राव। कारज काम बाट काट जपी जय गुर प्रसाद हर अमृत पी जय। दिन सरैन हर कीर्तन गाये सो जन जन की वाट न पाये। आठ पैर जिस विसरे नाही गत होवे नानक तिस लग पाए।

सत शब्द कमाओ फिर कर बैठे प्रभ अपना पावो, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत, हर हर तंत मंत गुर दीना, इन सुख नानक अंदिन चीना, आसा महला तन्यवा। जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत ओह चौकुंत माने, दर्शन मांगो दे प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे, राव जाके निकट न आवे कोई, सगल सृष्ट हुआ के चरण मल धोई, जो प्राणी काहु न आवत काम, संत प्रसाद का को जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, अब प्रभु नानक नीचे लागे, आसा मेला पन्यवा। एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम समारो।

सगल समग्री जाके सूत परोई, कट कट अंतर रहया सोई, ओ पट पर लो खिन में करता, आप अलेपा निर्गुण रहता, कर्ण करावन अंतर जामी।

किलबिक बिनासे दुख दर्द दूर पै पुनीत संतन की तूर रहा प्रभ के संत उदाहरण जोग इस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुर दिया कृष्ण बुझी मन ने चलतिया नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरते पाए।

आते पय मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ बिन सो मन का मूर्ख टीठा प्रभ का पावना लागा मीठा गुर पूरे के चरण गए कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म इन सफल भया कहू नानक प्रभ करी मया।

सत्संग चारे जागरे मन जागन हारे बिन हर अवर नाव सुकामा झूठा मोह मिथ्या पसारे राव गुर की बाणी से रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही थाओ गुर दाता गुर देवे नाओ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा मेला संजमा आपे पेड़ विस्थारी साख अपनी खेती आपे राख जत कत पे कुए कै ओही कट कट अंतर आपे सोई राव आपे सूर किरण विस्थार सोई गुप्त सोई आकार सर गुण निर्गुण था पैनाओ दो मिल एक कै कीनो ठाओ कहो नानक गुरु परम को खोया अनुज रूप सब नैन अलोया आसा मेला पंजवा उकत स्यान किछु न जाना।

रहाओ। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संजम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभु तोरी। आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुरु मंता, सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ परोए, कहो नानक कहो।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परम बहु जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण से आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा।

कहो नानक जो प्रभु शरण आए इहा सुख आगे गत पाए। आसा मेला पंजवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे।

तू मेरी गत पथ तू परवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अन दिन जपो नाम गुण खास, नानक की प्रभु पै अरदास, आसा मैला तन्यवा। रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्त संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म।

खा रहे हो, खिसर गयो फूम पर डारे हो, साग मोहला दी अंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे, नानक मेली सृजन हारे, आशा मेला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे, उचित आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को, पहुँच न साके जन तेरे को, दर्स तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जाए, केवल नाम हृदय में दी जाए, आशा मेला पंजवा, मन तृप्ता नो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद पली बनी, जाके गृह सब किछ है, पूरन सो पेटिया निरपै तनी रहाओ, नाम दृढ़ाया साध कृपाल, मिट गई भूख महा विकराल, ठाकुर अपने कीनी दात, जलन बुझी मन होई सात, मिट गई पाल मन सहज समाना।

को जन पूरन रहे अधाई, कछु न कोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को। रहाओ जाका तरी अगम गुसा।

जा को दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही तिन कामी। आशा मैला पंजवा, जो मैं अपना सतगुर त्याया, तब मेरे मन महा सुख पाया। मिट गई गणत बिना सो संसार, नाम रते जन पे भगवंता रहाओ। जो मैं अपना साहिब चीत, पौ पौ मिट्यो मेरे मीत। जो मैं ओट गई प्रभु तेरी, पा पूरन होई मनसा मेरी। देख चलत मन पे दिलासा, नानक दास तेरा परवासा। आसा महला पंजवा, अन दिन मूसा लाज पुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई। सोचत साचत रैन बिहानी, अनक रंग माया के चितवत। कबू न सिमरे सारंग पानी रहाओ। द्रुम की छाया नहीं चल ग्रह बांधिया, काल के फांस सकत सर सांधिया। बालू किनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड नहीं चल कर पाया। साध संग जप्यो हर राए, नानक जीवे हर गुण गाए। आसा मेला पंजवा, दो पुके नावा। उनके संग तू करती केल, उनके संग हम तुम संग मेल। उनके संग तुम सब को लोरे।

जाहर उनके संग तू रखी पलोल ओस बिना तू छुटकी रोल उनके संग तेरा मान महत उनके संग तुम साख जगत उनके संग तेरी सब विद थाटी ओस बिना तू हुई है माटी ओ बैरागी मरे न जाए हुक्मे बादाकार कमाए जोड़ बिछोड़े नानक थाप अपनी कुदरत जाने आप।

को तृष्णा जाओ निर्मल ता हम जचना हम किच नाही एक ओही आगे पाछे को सोई नानक गुरु खोए परम पंगा हम ओए मिल होए इकरंगा आसा महला पंजवा अनेक पांच कर सेवा करिए जियो प्राण तन आगे तरिए पानी पखा करो तज अभिमान अनेक बार जाइए कुर्बान सरई सुहागण जो प्रभु पाई।

उपत होए के राज कमाया, कर कर अनर्थ विहाजी माया। संचत संचत फैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर को दीनी, काच दगरिया अंब मजरिया।

पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट।

अब मोर मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आखा मेला पंजवा, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने, एक नाम संकन आधार।

प्रत पाले प्रभ आप कट कट सारी है। जिस मन उठा आप किस ना विसारी है। जो किस करे सो आप आपन पाणिया। भगता का सहाय जुग जुग जानिया। जप जप हर का नाम कदे ना चूरी है। नानक दर्श

पुत्र कलत्र गृह सगल सामग्री सब मिथ्या असनाहा। रे मन क्या करें है हा, दृष्ट देख जैसे हर चंद्र।

पुरख बिराते हैं, बहुर बहुर जन्मा दे जो पयो कृपाल, दीन दुख पंजन तो गुर मिल सब सुख लादे, कहो नानक।

जन्म मरण दुख लाथे, रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, कई मोत रंग माने फिर बोर बोर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सोदन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो आ।

देखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभु रंग। मन में राम नामा जात कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रत्येकन का चाओ। दया करो किर्म अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहे। ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग। आप कृपाल कृपा प्रभ तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल जुग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता सब मेरे आसमाए। परम राजा विस्माद हुआ सब पई पैरी आए। सत युग त्रेता द्वापर कणी है कल युग उत्तमो जुगा माहे। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए कोई न पकड़िए किसे खाए। हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे एहो तेरा बिरद। कर जोड़ नानक दान मांगे अपने संतां दे हर दर्श।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे।

मोकुटंब बिखे रस्मा से मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन।

चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही, नानक तप्त हरि मिले प्रेम प्री आशा मैला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ, ईते ऊते कट कट कट कट, तू ही मोहिना, कारण करना कारण करना, एक है सोहिना, संतन परसन बलिहारी दर्शन, नानक सुख सुख सोएना, आशा मैला पंजवा। हर हर नाम अमोला, ओ सहज सुहेला, रहाओ संग सहाई छोड़ न जाए, ओ अगे अतोला, प्रीतम पाई बाप मोरो माई, भगतन का ओला, अलख लखाया गुरते पाया, नानक एहो हर का चोला, आशा मैला पंजवा। अपनी भगत निवाहे, ठाकुर आयो आहे, रहाओ नाम पदार्थ।

कमाया गुण रस रस गावे एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आशा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम ते आवो हृदय बसावो तिस बिन को नाही प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये सगले दुख जाही जीवन को दाता पुरख विधाता नानक कट कट आही आशा महला पंजवा हर बिसरत सो

प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संजम कर थाके, नानक साध शरण प्रभ संग वसै, आशा मैला पंजवा कर पंजवा।

जावे, पकर केस जम उठारियो तद ही कर जावे, लोग बिखिया बिखे लागे हिरवित चित दुखाही, खिन पंगुना के मान माते असुर जाने नाही रहाओ। वेद शास्त्र जन पुकारे सुने नाही डोरा, निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा, दान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परया, जे कारज रहे ओला सोए कामना करया, ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीरत गाया, मान तान तज

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभु गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन भाग आसा मैला पंजवा हर्ष शोक बैराग आनंदी खेल री दिखायो रहाओ। खिनहु पै निरपै खिनहु खिनहु उठ धायो खिनहु रस भोगन खिनहु खिनहु तज जायो खिनहु जोग ताप बहु पूजा खिनहु करमायो खिनहु कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो।

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहया सो चित धर हां, अनस्यों तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ।

मना रहाओ। टूटे अन परानहा रवयो सर्व थानहा लहो जम पयानहा पायो पेड़ थानहा तो चूकी सगल कान

प्रीत करहा बिनस न जाए मरहा गुर ते जान्या हां नानक मन मान्या मेरे मना आसावरी महला पंजवा एका ओट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आज्ञा सत सहो हां मन है निधान लहो हां।

तिस निकट ना कदे दुख हा, जो हर हर जस सुने हा, सब को तिस मने हा, सफल सो आया हा, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला तन्यवा। मिल हर जस गाये हा, परम पद पाये हा, उआ रस जो विदे हा, ताको सगल सिदे हा, अन दिन जागया हा, नानक बड़ पा।

उत्तर अवघट सरवर नावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल सुनतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच

सुरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारसारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, पार कमाई खसम रजाए, अवगत नाथ न लख्या जाए, जल में उपजे जल से दूर, जल में ज्योत रहा करपूर, किस नेड़े किस आखा दूर।

सोच तानी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मोह बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पे उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहया जाई, अकथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे।

जमण मरणा हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवर न पाल हालत पलत निभी तुद नाल शब्द मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप तू पुरुषागर मान कहीर तू निर्मल सच गुणी गहीर।

जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जग उपजे बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। मह गो मोल पार अपार, अटल अछल।

जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना पारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरणा गुर बोहित शब्द पै सरना निरपौ आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रो।

जन्म मुए बिन भगत सरोत, मुए को सच रोवे मीत, त्रै गुण रोवे नीता नीत, दुख सुख पर हर सहज सुचीत, तन मन सोपो कृष्ण प्रीत, पीतर एक अनेक असंख, कर्म कर्म बहु संख असंख, बिन पै भगती जन्म विरंथ, हर गुण गावे मिल परमारंथ, आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप, श्रेष्ठ उपाय ज्योति तू जात, शब्द विचार मिलन नहीं प्रात, सूतक अगन पखे जग खाए, सूतक जल थल सभी थाए, नानक सूतक जल

सात अकूट पंच तीन नव चार समावे, तरण गगन कल तार रहावे, बाहर जातो उल्ट करावे, मूर्ख हुए ना आखी सूजे, जेवा रस नहीं कहया बूजे, बिखका माता जग सो लूजे, उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को पावे अवगण तोवे।

न पावे बालक बिरद न सुरत प्राण पर जो बन बूढ़े अभिमान बिन नावे क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज न जाना परम फुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर पागे सतगुरु राखे से बढ़ पागे।

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खोजत पावो सहज हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाणे अंतर की गत गुरुमुख जाने।

कह जाऊं। गुर प्रसादी कर्म कमाओ, न मेरा ताहर गुण गाओ, गुर सेवा से आप पछाता अमृत नाम।

नानक हर जन के दासन दासा। आसा मैला पहला तन बिन से तन का को कही है, बिन गुरु राम नाम कत नहीं है। राम नाम तन संग सिखाई, एनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा, सुख दुख सम कर नाम न छोड़ो। आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ, कनक कामनी हेत गवारा। दुबदा लागे नाम विसारा, जिसको बख्शे नाम जपाए, दूत ना लाग सके।

अवरना औषध तंत्र न मंता, हर हर सिमरन किल विखानता, तू आप फुलावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा धार। रोग परम पेद मन दूजा, गुर बिन परम जपे जप दूजा, अमृत पुरख गुर दर्शना देखे, विन गुर शब्दे जन्म के लेखे, देख अचरज रहे विस्माद, कट कट सुर नर सह समाद, पर पुर पार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही, जाके भगत हेत मुख नाम, संत भगत की संगत राम, बंधन तोरे सहज ध्यान, छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग।

राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुरु शेर देखो प्रभ नैनी राव, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म धर्म हो किया, बंधन पुत कल

संचय तन जाए, बिन हर भगत न कभी थाए। बंधन वेद बाद अंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंद ना पाए।

जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवे तूर, महला अंदर होंदियां हुण बहन ना मिलन हदूर।

तीन गल सिलका पाया टुटन मोक्षरिया तन जोबन दोई वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पट गवाए जे तिस पावे।

एक कड़ी में थाप उठापे जरवंड देवे पाई राव कांसु करदर मंडक महला कांसु बंक सराई कांसु सेज सुखाली कामण जिस वेत नींद ना पाई कांसु पान संगोली हरमा।

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई तंदा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो।

अंतर पंडित पौंदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जाननी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करें।

बिन गुरु शब्द ना छूट ही प्रम आवे जावे। एक गिर ही सेवक साध का गुरमति लागे। नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सो जागे। गुर ते दर कर जानिए।

जय गुरमुख नाम पियाए मन मंदिर पी जय रहा कूड़ा लालच छोड़िए तो साच पछाणे गुर के शब्द समाये परमार्थ जाने यो मन राजा लोभिया लुग तो लोभाई गुरमुख लोभ निवारिये हर्षो बने आई कल्लर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पी जई कूड़ कूड़ गडावे लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसे हो मैं बिखमारी दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई मन मुख पत्थर से

उसमें ही सिर मार बंदर वाणी है, लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है, आसा मेला पहला, क्या जंगल टूंडी जाए मैं कर बन हरियावला, सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानिए, गुर की कार कमाए महल पछाणिए, रहाओ आप मिलावे सच तामन पावई।

सिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मन मुख जे समझाए पी उजड़ जाए बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए जन्म मरे परमाई।

साहिब सो मन मानिया दे साच आधार एन इस नाम संतोखिया सेवा सच्चाई ताको बिघन न ला गई चाले हुक्म रजाई।

पाई है, खोटे नजर न आवनी ले अगन जलाई है। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फल अमृत होई। अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई, तिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुकम संजोगी आया चल सदा रजाई, औगुण आरे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मेला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया, लोकां दा क्या जाए जा कुद पाणिया। जो लग जियो प्राण सच दियाई है, लाहा हर गुण गाए मिले सुख।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दर गए नाम हदूर गुरमुख जान सी, वेला सच परवान।

कांडिया नानक नजर करे हो मिले सच वांडिया आसा मेला पहला आवन जाना क्यों रहे क्यों मेला होई जन्म मरण का दुख घनो नित सहसा दोई बिन नामे क्या जीवना फिट त्रिग चतुराई सतगुर साध न सेविया हर भगत न

अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सासत वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साक्षात तीन मूल मत।

ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे। तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने। कर्म होवे ता परम पद पाई है कथे अकथे।

गुर सेवा के सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवड पागी जे गुर सेवा लाए, अंगिन पगत सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए।

सोई। सतगुरु नाम बुझाया बिन नावे भुख न जाई। नामे तृष्णा अग्न बुझे है।

कर कृपा नाम मनवसाए, एहो सिर दीजे आप दवाए, हुक्मे बूझे सदा सुख पाए, आप करे तै आप कराए, आपे गुरुमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चे शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरुमुख जुग जुग आख वखाणी, मन मुख मोहे परम पुलाणी, बिन नावे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पढ़ पढ़ दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख सवाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अंदिन पोगे हूं मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जब पढ़िए हूं मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरु।

गुर ते कर दर पाया भगती परे पंडारा, गुरमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरमुख परख सलाह है अंतर शब्द अपारा, गुरमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरमुख हो मैं मारिए मन निर्मल होई, सत गुर मिले आप गया त्रिभुवन सोजी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मिलाई, पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई, पूरा सतगुर ता मिले जान नजर करे, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होई, अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए, आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई, अंदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई, हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, विन सतगुर पाई न जाए, पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए, आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाई, आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे सबना का सोई, मंदा किसनो आखी है जे दूजा होई, इको हुक्म वर्तदा एका सिरकारा, आप वाली दितियन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूझन विचारा, भगत भी ओ नानो बख्शियन अंतर।

आनंद सोई कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वस ना आवनी नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा करे अंदर सब वस है बाहर किछ नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक होवे सो ले पाए रतन विचारा अंदर खोले दिव दिस देखे मुक्त पंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए ना फेरा।

नानक नाम से आए तू दर सच्चे तोबा पाई। आसा महला तीजा आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई हर रस चाखे मुक्त भये जिना साचो भाई हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा गुरमती साला ये बिखिया माए उदासा रहा बिन शब्द आप न जा पई सब अंधी भाई गुरमती कट चानना नाम अंत सिखाई नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई जिसनो देवे तिस मिले गुरुमती नाम बुझाई नानक सब किछ नाम है।

बोले नानिवे दूजा पाव सुहाओ क्यों मनुआ क्यों कर वसावे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागनी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने चल दिया नामे सह सिंगार सदा रामे फिर अपना सच्ची सेज सुवाए फिर कह प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार सासब राई सुंदरी फिर कहे प्यार सोहागनी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सोहागनी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना अंत

कर दी सब फिरे, बिन शब्द हो न जाए, नानक नाम रते तिन हो मैं गई, सच्चे रहे समाए। आसा मैला तीजा, सच्चे रते से निर्मले सदा सच्ची सोए, ऐथे कर कर जाप दे आ गए जुग जुग प्रगट होए। ए मन रूड़े रंगुले तू

अपार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार बिन गुर कोई ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कह पै पाए जो रते सिफती सत समाओ पै बिन लाग ना लग गई ना मन निर्मल होए।

सच सुवाए, बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस्तोर, जिनकी ते तिसे ना जाननी, बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे।

जाए। एक कुचल कुचील विखली पते नामो आपवाए, ना ओन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी, फिर उतवताए नदर करे जिस अपनी किसनो पामनी लाए, सत संतोख ए संजमी मन निर्मल सब सुनाए। लेखा पढ़ना पहुँची है कथ कहने अंत न पाए, गुरते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए, यू मन दे।

मेल लह एक दरगह मार कडे कूड़ियार एक तुर पवित पावन है तुझ नामे लाए गुर सेवा ते सुख उपजै सच्चै शब्द।

सच निर्मल मन वसाए, सुहागनी सदा फिर पाया हों मैं आप दुआए, फिर सेती अम दिन गह रही सच्ची सेज सुख पाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ न पाए, मैल नाही दुहागनी अंत गई पछताए, सो फिर मेरा एक है एक क्यों लिवलाए, नानक जे सुख लोड़े।

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए राव मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिना पिर का स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरुमुख बीजे सच जम्मे सत नाम व पार जो इतला है लायन पगती।

सफल जन्म हमारा, नाम नवैनित पाया परे अकुट पंडारा, आवे इस राशि के वापारिये जिना नाम प्यारा, गुरमुख हो वै सो तन पाए तिना अंतर शब्द विचारा, भक्ति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आखो आयन जुए बाजी हारी, बिन प्यारे भगत ना हो वही ना सुख वे शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है

अन रस में पोलाया बिन ना में दुख पाए, सतगुरु पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इस जुग में गुरमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार, बिन नावे सुख न पाये ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अन दिन सदा जल्दी।

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है दाता आपे सच्चा सोई एना अखरा में जो गुरमुख बूझे तिस सिर लेख न होई उड़े उपमाता की जय जाका अंत न

हारो अपना पाज पड़ो तुम हर सरना, ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी, जिनका चित लागा सही जन निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो किछ हो आसो सब चलना, तिसे सिरेवो ता सुख पावो, सर्व निरंतर रव रहा।

गुरुमुख आखे गुरुमुख बूझे गुरुमुख एको जाने रारे रव रहा सब अंतर जेते किए जनता जंत उपाय।

वेखे चाखे सब किछ जाने, अंतर बाहर रव रहा, राड़े राड़ करे क्या प्राणी, तिसे त्यावो जे अमर होआ, तिसे त्यावो सच समावो, उस विटों कुर्बान किया, हा है होर ना कोई दा

स्वामी आप प्रभ कृपा करे सेजा सुहावी संग पिरके सात सर अमृत भरे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो मुंद सहज सलो नड़िए एक प्रेम विनंती राम मैं मन तन हर भावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर विनंती नाम हर कै सुख वसै।

जब तप कर कर संयम था कि हठ निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए। गुर सागरो रत्नागर तित रत्न कणे रे राम, कर मज्जनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम। निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए, पंच मिले विचारे, काम क्रोध कपट बिख्या।

सच साहिबो आद पुरख अपरंपरो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरमुख शब्द पछाने एन इस नाम ते आये मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हो मैं ममता माया संग न जाई राम माता पित पाई पुत चतुराई

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम अवगुण मेट चले।

गुरमुख तत् विचारो साजन मीत सो जान सखा तू सच मिले वड्याई नानक नाम रतन प्रगासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन रव रहा जग

हर दरगह मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे ओह नव निध पावे, गुरमत हर त्यावे नित हर गुण आख वखाणे, एनस नाम तिसे का लीजे हर उत्तम पुरख प्रदान जियो।

कहो नानक गुर शब्द सवारी, सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामण परम पुली, हर वर न पाए राम। कामण गुण नाही, बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी, अवगुणवंती चूरे। अपना सतगुरु सेव सदा सुख पाया, ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी, सच्चे शब्द सुभाए। नानक बिन नावे कामण परम फुलाणी, मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामण जानिया, गुर मेल मिलाई राम। अंतर शब्द मिली सहजे, तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांति आई, सहजे हर रस चाखिया। मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने, सच्चे शब्द सुवाखिया। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई। नानक बिन भगती जग बौराना, सच्चे शब्द मिलाई। सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम। सा तन हर कै

भगत पाव एहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहेला तिन सद सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पखंड सो सो सब किछ जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुकम पछाने। जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी आम दिन हर लिवलावे। जय जय मन तू तावदा तह तह हर तेरे नाले। मन स्याणप छोड़िए गुर का शब्द समाले। साथ तेरे सो सो सदा है इक थिन हर नाम समाले। जन्म जन्म के तेरे पाप कटे।

सतगुरु मिले दसवां द्वार पाया, तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे, जित शब्द जगत थम रहाया। तह अनेक वाजे सदा आनंद है, सच्चे रहा समाए, त्यों कहे नानक सतगुरु मिले तावत थमया निज कर वस्याए। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंगमान, मूल पछाणे ता सो जाने मरण जीवन की सो।

क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गारब अटिया गारब लद्या जाए माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाए गारब लागा जाए मुगद मन।

सब संसार दुख गवाया, अदिष्ट अगोचर गुरु वचन त्याया, पवित्र परम पद पाया। अनहद तुन वाजे नित वाजे, गाई सतगुरु बाणी, नानक दात करी प्रभ दाते, ज्योति ज्योत समाणी। मन

नानक मन तन अर्प गुर आगे जिस प्राप्त सो पाए। रत्ना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडा।

रोम रोम रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र हुए आए तिस रूप न रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाई, मन तन शीतल सिगार सब होआ गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम विसारिया से मन मुख मूर अपागी राम, तिन अंतरे मोह व्यापे खिन खिन माया लागी राम, माया मल लागी मूर पै अपागी जिन राम नाम नह पाया, अनेक कर्म करें अभिमानी हर रामो नाम चुराया, माँ बिखम जम पंख दुहेला कालू खत मोह अंधियारा, नानक गुरुमुख।

राम मन इकत कर आने सब गत नित जाने हर रामो नाम रसाए जन की पैज रखे राम नामा प्रहलाद उधार।

जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब कर्म मिले मन चिंदिया को फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम पर गासे।

हर कर्ता दुख विनाशन पतित पावन हर नाम जियो। हर सेवा पाई परम गत पाई हर उत्तम हर हर काम जियो। हर उत्तम काम जपिए हर नाम हर जप

हर जपिए आत्म राम जियो, हर हर करता दुख विनाशन, पतित पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुरु पाए जियो, गुरुमुख हर पढ़िए गुरुमुख हर सुनिए, हर जपते सुनते दुख जाए जियो, हर हर नाम जपिए।

किन हित दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर से आया सुर पाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर सब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग वड पागी हर रस पाया, से तन वड्डे सत पुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगे।

आसरे में खिन खिन पग तोवे जिन हर मीठ लगान जियो हर मीठा लाया परम सुख पाया मुख पागा रती चारे गुरमत हर गाया हर हार उर पाया हर नामा कंठ तारे सब एक दृष्ट समत कर देखे सब आत्म राम पहचान जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रधान जियो सत संगत मन भाई हर रस निरसाई विच संगत हर रस होए जियो हर हर आराध्या गुर शब्द विगासिया बीजा अवर न कोई जियो अवर न कोई।

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, सद लेवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो। जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ।

मन नाम जपाना हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जग मरण ना पाया, निक आप लुकाया, मत जम पकड़े।

सारे नमस्कार कर लगे सेवा आपे जांजी आपे मांजी आप स्वामी आप देवा अपना कार्य आप सवारे आपे तारन तारे कहो नानक सौ कर में बैठा सोहे बंक द्वारे नग्न दे नौन दे मेरे कर में आई राम सब किच मैं सब किच पाया नाम से आई राम नाम से आई सदा सखाई सह सुभाई गोविंदा गर्त मिटाई चूकी ताई कदे न व्याप है मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अतरज शोभ बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नवनिद पाई सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखारा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम गड़ा पाया खजाना बहुत निदाना सांत मेरी आप खड़ा सोई सो ज्ञाना सो प्रदाना जो प्रभ अपना कीता कहो नानक जा वल स्वामी ता सर से पाई मीता आता महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम सुर नर मुन जन सहज वखानी राम सहजे वखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया तज मान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड पागी सत्संगत पाई राम वड पागी पाए नाम ते आए लाथे दुख संतापे गुर चरणी लागे परम पौ पागे आप मिटाया पे कर कृपा में ले प्रभ अपने बिछड़ कते न जाई बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरणाई हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जामा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन पेटत प्रभ जाता कट कट रग रहा सब थाई पूरन पुरख विदाता गुरपूरा पाया नाम ते आया जुए जन्म नहारे बिनवंत नानक शरण तेरी रात कृपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरणा तेरे चरण तूड़ वड पागी पावा राम हर तूड़ी नाई है मैल गवाई है जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभु साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुरु शरण करिए अपने प्रभु भावा आसा संत महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद हर चरण कमल मन बेदिया किछ आमना मीठा राम राजे मिल संत संगत आरा दिया हर कट कटे डीठा राम राजे हर कट कटे डीठा अमृतो उठा जन्म मरण दुख नाथे गुण निध गाया सब दुख मिटाया हों मैं बिनसी गाथे प्रियो सह सुबाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किछ आन न मीठा ज्यों राती जल माछली त्यों राम रस माते राम।

आप लिए लड़ लाए, हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ना कथो जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकी मिटे न दाते, जल संग्राती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे, माल खजीना सुत प्रात मीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकी गत नहीं जानी है, हर सास गिरास न बिसरे कबहू गुर शब्दी रंगमानी है। प्रभु पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा, चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा। मिले नारायण अपने मन और थो पूरा राम राजे, ताथी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे। पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला, आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला।

सत पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मनोरथो पूरा आशा महला पंजवा संत कर सेवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक जाको पै कृपाल प्रभु हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह पेटक साथ संगात संत जल दुध में आई रीत अब दुध आत नहीं मन ऐसी प्रीत हरे अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन एक खिन भी नाहे तरे खिन नाहे तरिये प्रीत हरिये सिगार हगरस अर्पिये जह दुख सुनिये जम पंथ पणिये तह साध संग ना डरपिये कर कीरत गोविंद गुणिये सगल प्राचत दुख हरे कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर एक खिन भी ना जीरे मन ऐसा निहो करे हो जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय एहो मन दी जय अपलाय चित मुरारी मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी गुरु सो प्रसन्न मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो चकवी सूसने हो चितवे आसपनी कर दिनियर देखिए कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशि के हम पाहुनिया अब क्या रंग लायो मोर चायो नांगे आवन जावनिया फिर साधु सरनी पड़ी है चरणी अब टूटस मोह जो किती है कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय जैसी तरण पतार उर्जी तेह सिवे यो मन लाल दी जय मन लाल दी जय कोप करी जय हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने गुरथी आसाखी तां जिठम आखी फिर जेहा आवर न दिसे कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय आशा महला पंजवा श्लोक बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन वसुधा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते कोट विषम अवतार शंकर जटाकार चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व से आवे जप किन्नर गुणपनी कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार कोट देवी जा को सेवे लक्ष्मी अनेक पाक गुपत प्रगट जाको अराधे पौन पानी दिन सुरात नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बकद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतुर्वेद खट शास्त्र जाको जपात पतित पावन भगत वचल नानक मिलिये संग साथ जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवे तेती न जाए गनी अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी त्यो दान मान नानक पाए शीश साधे तर चरनी आसा महला पंजवा श्लोक
उद्दम करो वड पागियो, सिमरो हर हर राए, नानक जिस सिमरत सब सुख होवे, दुख दर्द परम जाए। संत नाम जपत गोविंद नह अलसाइए, पेट साधु संग जमपुर नह जाइए, दुख दर्द न कहो व्यापे, नाम सिमरत सब सुखी, साथ साथ आराध हर हर त्याए, सो प्रभु मनमुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध, कर दया सेवा लाइए, नानक प्रेम पै चरण जमपे, नाम जपत गोविंद ने अलसाइए। पावन पतित पुनीत नाम निरंजना, परम अंधेर बिना

सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नानक पयम पै चरण जम पै पावन पथित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोय आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उद्रम हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुत हरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उद्रम संत संग विदे नानक पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत अराधे तय तय प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुबाये पवित कार्य सारिया आनंद हर जस मा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगास देह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जम पै पवित वचल हर बिद आप बनाया आशा मैला पन्नवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जहाँ कह गए हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर देह दिस पूर्ण सत सदा प्राण पत गत मत जाके प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जाको राम पतार का कह अनुद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निध तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का अनद घना आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप त्यागी है तज आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन ला गया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर हर नाम जपंतिया कछ न कहे जम काल नानक मन तन सुखी हुए अंते मिले गोपाल छंत मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम देहो हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया कतहु न तावो शरण पावो करुणा में प्रभ करमया समरथ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच सठ कठोर कुलहीन व्यापक मोह कीच मल परम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता विनोद आनंद माया अज्ञान तालप तावे खिसे जोबन बले जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहो ते संग मीठे पोग सोन प्रमत पार अगमत आयो बहु परदेश पायो अब ओट तारी प्रम मुरारी सर्व सुख हर नायो राखन हारे प्रप प्यारे मुझते कछु न हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तय कौन नाम तारी उधारे पगते संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण सुन श्रवण बानी पुरुष ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ विधाते राम के गुण गावे वसुध कागद बन राज कलमा लिखन को जे होए पावन बेअंत अंत न जाए पाया वही नानक चरण शरण आशा महला पंजवा
पुरख पते भगवान ताकी शरण गही, नेको पै प्राण चिंता सगल लही, मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंदक जानिया, गय कंठ लाया गुर मिलाया जस विमल संत वखाणिया, बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत पछू न जाए कही, प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही, अमृत बन संसार सहाय आप भय, राम नाम उरहार बिख के दिवस गए, गत परम मोह विकार बिन से जोन आमन सब रहे, अगन सागर तय शीतल साध अंचल गह रहे, गोविंद गोपाल दयाल समरथ बोल साधु हर जय जय, नानक नाम त्याय पूरन साध संग पाई परम गते, जय देखो तय संग एको रव रया, पट पट वासी आप विरले किने लया, जल कल मैयल पूरे पूरन कीट हस्त समानया, आद अंते मद सोई गुर प्रसादी जानया, ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निर्जन कहा, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नाम कराव रया, दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत कलमल पापरे, दुख पूख दरिद्र नाथे प्रगत मग दिखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया, हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संगुआ सब तरे, दिन श्रेण आनंद अंदिन सिमरंत नानक हर हरे, आसा मेला पंजवा छंत कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक, शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत छंत, पिन्नी रैनड़ी है चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे, राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अंजनो, चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ सरना ही किनो, तब मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे, बिन हंस नाम सदा जागे हर दास संत प्यारे, मेरी सेजड़ी है अडंबर बनिया मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया, प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चाव मंगल रस भरे, अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे, मन इच्छ पाई प्रभ त्याई संजोग सा शुभ गणिया, बिन हंत नानक मिले श्री पर सगल आनंद रस बनिया, मिल सकी आप पूछे कहो कंत निशानी, रस प्रेम परी कछ बोल न जाने, गुण गुड़ गुपत अपार करते निगम अंत न पावे, भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावे, सगल गुण सो ज्ञान पूरन आपने प्रभ पाने, बिन हंस नानक रंग राती प्रेम सहज समाने, सुख सोए लड़े हर गावन लागे साजन सर से अड़े दुख दुश्मन पागे, सुख सहज सर से हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा कारिया, हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया, शुभ दिन से आए सहज पाए सगल निद प्रभ पागे, बिन हंस नानक शरण स्वामी सदा हर जन पागे, आशा मेला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया तैं क्या चिर लाया, मोलत कुंडिया कित कूड़ लुभाया, कूड़े लुभाया तो माया करे पाप अमित्या, तन पसम तेरी जमे हेरी काल बपड़े जितया,

की साथ है संग देखे करणहारा काए पाप कमाई है सुकृत की जय नाम ली जय नरक मूल न जाइए आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है पद साध संगत सदा नानक मिटे दो कमाते वल वंश कर उधर परे मूर्ख गावारा सब किस दे रहा हर देवन हारा दातार सदा दयाल स्वामी काय मनो विसारी है मिल साध संगे पद्म संगे कुल समूह तारी है शिव साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा बिनवंत नान सदा तजी है प्रभ एक करने हारा खोट न की चई प्रभ परखन हारा पूर कपट कमाऊ गड़े जन्मे संसारा संसार सागर किन्नी तरिया जिन्नी एक से आया तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ सरनाई आया जल फल मैयल रविया स्वामी पूछ अगम अकारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा पेट हर चंदौरड़ी अब फिर किस नाही माया रंग जेते से संग न जाही हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए हर एक बिन कछ अवर नाही पाव दुतिया जालिए मीत जोबन माल सर्वस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक वद पाग पाई है सुख सहज समाही आशा मेला पंजवा शंख पर अठवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद कमला परम पीत कमला परम पीत हे तीक्षण मद विपरीत हे अवध अकाल जात गैबर बन कोर हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो

then kafe. Din saap jaat bihaat sab bin milo prab karana pate. Janm maran anek bite. Pre sang bin kach nah gate. Kul roop toop gyan hini. Kuj bina mohe kaun maat. Par jod nanak saran ayo. Pre naath nar har karo gaat. मीना जलहीन मीना जलहीन हे ओह बिचरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रिय बिन होत सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओह बेदियो सहज स्रोत प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तंग तिस बिना पलका ना लागे प्रिय प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंदावत आप चात्रिक चित प्यास हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अल्पीवत बिन सतताप ताता दिनासन दुख नासन मिल प्रेम मन सन अतकना सुंदर चतुर सुजान स्वामी पवन रसना गुणपना गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतित पावन हर दर्श ते सुत नह सन।

सुंदरतम ध्यान सुंदरतम ध्यान। हे मन लुबिद गोपाल ज्ञान, हे जाचक जन राशतमान। प्रभ मान पूरन दुख विदीरन, सगल इच पूजंतिया। हर कंठ लागे दिन सुबागे, मिल नहा शेष सुअंतिया। प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी, सगल कलमल पहान। बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

सूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आशा महला पहला वासलोकानाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यश राजा की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये कर्तना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूर्य चढ़े हजार इते चानन हुंदिया गुरबिन को रंदार महला पहला नाम गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलगु आर ज्यो सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिये फुलिये बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए करे आसन जिठो चाहो दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब सह दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खन सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझ आखे लख करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नाम सत्य आन सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सतने आओ वड्डी वड्याई जाने चल साओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कार न कथनी जाए कीता करना सर्व जाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए लए इकना हुक्मे करे विनाश इकना थाने कड लए इकना माया विच निवास ए पे आख न जा पई जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए जा को आखरे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वे तरम बहा लिया ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कडे जिजमा लिया थाओ ना पायन कूड़ यार मौका ले दो जुक चा लिया तेरे नाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना में कर्म बालिया श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड है विडानी विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद पुख विस्माद तोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख है हाजरा हजूर वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे पाग महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत

तेज उत्पुजा खानी सेत जहां सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत उपाय कै समाले सबना जिन करते करना किया चिंता वे करनी ता सो करता चिंता करे जिनु पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस दीवान अपग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या पग महला पहला लख ने किया चंगियाईया लख सुना प्रवान लख तप पर तीसा सहज योग बेबान लख सूरतन संग्राम रंग में छुटे प्राण लख सुरती लग ज्ञान ज्ञान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया मन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सच्चो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया।

पड़ पड़ गड्डी लगी है, पड़ पड़ परी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खात, परी है जेते बरस बरस, परी है जेते मास, परी है जेती आर जा, परी है जेते सास। नानक लेख है एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला, लिख लिख पड़े आते ता पड़िया, बहु तीर्थ पवे आते तो लव्या, बहु पेक किया देही दुख दिया, सोवे जी आपना किया, अन्न न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया, बस पर न पहरे एन इस पहरे, मोन विगूता।

सब जग चलनहार, पूर मिठा पूर माथो पूर डोबे पूर, नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ो पूर महला पहला। सत्ता पर जानिए जार दैस चाहोए, कूर की मल उतरे तन करे हच्छा धोए। सत्ता पर जानिए जा पग करे प्यार, नाव सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार। सत्ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो, तर्क काया साज कै विच दे करता बियो। सत्ता पर जानिए जा सिख सकी ले, गया जाने जी की किछ पुन दान करे।

पाप कड्या कोए, नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्लै होए पौड़ी। दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है, पूरा लाल छड़ी है होए इक मन अलग से आई है। फल ते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है, जे हो वे

तोए, नानक पाहे बारा कोरे रंग न सोए, पैर खुम चढ़ाई है शर्म पावता होए, नानक पगती जेर पै कूड़े सोए न कोई मेला पहला। लब पाप दो राजा मेहता कूर हो आशिकदार, काम लेव सब पूछिए बह बह करे विचार, अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दार।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार करमी तर्म करें गावावे मंगे मोख द्वार जटी सदावे जुगत न जाने छड़ में कर बार सबको पूरा आपे हो कट ना कोई आखे पग परवाना पिछे पाये ता नानक तोलिया जापे महला पहला गदी सवज्जग नाम का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अग्गे जाप मजोर है अग्गे जियो नवे जिनकी लेखे पपवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन ते आया ए ना जनता के वश किछ नाही तुद वेखी जगत उपाया इकना नो तू मेल ले इका को तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया।

कुदरतवस्या तीरांत न जाई लखिया रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सवालियो जिनकी तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है। खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है। सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने भयो। नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा।

नानक कूड़ रहा भरपूर मथे टिक्का पेड़ पोती कखाई हाथ छुरी जगत कसाई।

कार ऊपर आल बैठे कूड़ियार मत बिटे वे मत बिटे यो अनासादा फिटे तंग फिटे फेर करेन मन झूठे चुली भरेन कहो नानक सत्य आई है सुच होवे ता सच पाई है पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंगा आपे देवड़े आईया आपे ही कर्म कराएंगा वडो वडा वड मेदनी सिरे सुर तंगे लाएंगा नगर पट्टी जे करे सुल्ताना का उतर आएगा दर मंगन पिख ना पाएगा। श्लोक महला पहला जे मुहा का घर मुहे कर मुहे पितरी दे अग्गे वस्ते।

पहला मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना परक्रिया परतन रूप कन्नी सूतक कन पै लाल तवारी खाए नानक सा आदमी बदे जम पुर जाए मैला पहला सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म।

के पाए फिका मूर्ख आखिए पाना लह सजाए महला पहला अंदरों झूठे तेज बार दुनिया अंदर फैल अखर तीरथ जे नाम है उतरे ना ही मैल जिन पर अंदर बाहर गुदर के पले संसार तिन ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह नाही किसे केरी बात सच्चे ना दरवाज ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल दर ले लेखा पीर छुटे नान का जो तेल पौड़ी आपते ही करना कियो कल आपते ही सहतारी है देखे की ता अपना तर्क पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब

पौड़ी जिथे वे सुख पाईए सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाईए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंदा मूल न कीचे दे लम्मी नदर निहालिए जो साहिब नाल न हारिए।

परमा साहेब तुखे जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित को खसम न जाए, नानक सेवक काड़िए जैसे ती खसम समाय पौड़ी, नानक अंत न जापनी हर का के पारा बार, आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चले बिशियार, आप कराए करे आप हर कैसे करी पुकार, नानक

पै हो क्यों कर जाए। सतगुरु मिले ता मार्ग दिखाया, जगत पिता मेरे मन पाया। हो पूत तेरा तू बाप मेरा, एक है ठाहर दुहा बसेरा। कहो कबीर जन एको बुझिया, गुर प्रसाद में सब कुछ सूझिया। आशा इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी। आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठंगन बाबा दू, किने विवेकी काटी तू। राव सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी। सगलिया की हो बहन पान जी, जिने बरी तिस्केरी। हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे। ओ हमारे माथे कायम, और हमरे निकट ना आवे। नाको काटी कानो काटी काट।

आई, दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाई, काजी तय कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, तिन्हों खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी। आशा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई, रे बौरे तुह करी न राखे कोई, तू राम नाम जब सोई रहा, काकी मात पिता थो काको, कवन पुरख की जोई, कट कूटे को बात न पूछे, काडो काडो होई, ब्योहरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई, लख छुटकाए त्रिया रोवे, हंसी के ला जाए, कह कबीर सुनो रे संतो, पैसा गर कह पाई, इस बंदे से जुल्म हो।

एक तो के संत सुन अंग अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पर ब्रह्म ने जन्म गवाया। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तक न जाए रहाओ। तन कर मटकी मन माए बिलोई, इस मटकी में सबक सिंजोई। हर का बिलोवना मन का

नारद सारद करें खवासी, पास बैठी बीबी कवला दासी, कंठे माला जेवा राम, सांस नाम ले ले करो सलाम, कैत कबीर राम गुन गावो, हिंदू तुर्क

हार होगनहारे पो गया इस मूरत के मुखचार। मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते 20 वर्ष तक तपना कियो, 30 वर्ष तक देव ना पूजा फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो शायर शोक पुजंग बलयो, रहाओ सूखे सरवर पाल बंधावे लूने खेत हथवार करे। आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण शीश पर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे। जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे तब रे कर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे। लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर कन पायो, अंते चलदिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो अन तन कछुए।

आन करारा पहर खवाद न की जय रे मन सुकृत कर कर ली जय रे मन रहाओ कुम्हारे एक जो माटी गूंदी बहु विद्वानी लाई काहू में मोती मुक्ताहल काहू ब्याज लगाई तू मैं तन राशन को दिया मुग्ध कहे तन मेरा जम कर दंड मूंड में लागे खिन में करे निवेरा हर जन उत्तम पग सदावे आज्ञा मन सुख पाई ज्योतिष पावे।

चिरगट फाच तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ, रोजा तरे निवाज गुजारे। कलमा पिस्त न होई सत्तर का बाकत ही पीतर, जेकर जाने कोई निवाज सोई जो न्याओ विचारे। कलमा अकल है जाने पाचो मुस मुसल्ला बिछावे।

की आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्तरी की माटी एक पेक तर नाना तामे ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना आशा गगन नगर।

ना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिकल पे संग तेरे इंद्री का बल खाता चरण रहे कर तर्क परे है मुखो न निक्षय बाता था के पंच दूत सब तस्कर आप अपने प्रमते खाका मन कुंचर उर खाका तेज सूत तर रमते मृतक पाए दस बंद छूटे मित्र पाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावे जीवत बंधन तोरे आशा इक तुके चौथा सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया मार मार सर्पनी

जिन साज पछाणिया तिन सरपनी काई, सरपनी ते आन छूच नहीं अवरा, सरपनी जीती कहां करे जमरा। ए सरपनी ताकी कीती होई, बल अबल क्या इस्ते होई, ए बस्ती का बस्त शरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा। आशा कहां स्वाम को सिमरत सुनाए, कहां साकत कहे हर गुण गाए, राम राम राम रमे रम रही है, साकत स्यों पूल नहीं कही है रहाओ। कौआ कहां कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए, सत्संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका सा को

कपरे तोई गुरमत राम में नाम बसाई अस्थिर रह न कटू जाई कह कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त न होई आशा पहला पूत

रहाया। दस मास माता उधर राखिया बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया, पूरव जन्म कर्म भूम बीज नाही बोया। रहाओ बारिश ते बिरध पया होना सो होया, जहाँ जम आए चोट पकड़े तब है काहे रोया। जीवने की आस कर है जम निहार है सासा, बाजी गरी संसार कबीरा चेत टाल पासा। आसा तन रैनी मन पुनरप कर हाँ, पांचों तत बराती राम राय स्यो पावर ले हो, आत्म के रंग राती गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा, मेरे गृह आए राजा राम पुकारा। रहाओ नाभि कमल में बेदी रचने ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पाया असबद पाव हमारा। सुर नर मुन जन कौतक आए कोट तेतीस उजाना, कह कबीर मोहि ब्याह चले हैं पुरख एक भगवाना। आशा सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरोरे, सखी सहेली ननद गहेली देवर के बिरह जरोरे। मेरी मत गौरी मैं राम बिसारे हो, किन विद रहन रहो रे। से जय रमत नैन नहीं पेखो यो दुख कासो कहो रे। रहाओ बाप साव का करे लड़ाई माया सद मतवारी, बड़े भाई कह जब संग होती तब हो ना प्यारी। कह कबीर पंच को चगरा चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया मैं राम रमत सुख पाया। आशा हम कर सूत तने नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे तुम तो वेद पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे। मेरी जय बा विष्णु नयन नारायण हृदय बसे गोविंदा, जम द्वार जब पूछस बवरे तब क्या कहस मुकंदा। रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे, कब हूँ न पार उतार चरायो कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं काशीक जुल्हा बुझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे कूपत राजे हर सौ मोर त्याना। आशा जब जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान, साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधान। बाबा

कोई आशा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब पुन रूप न होई ताजा तन साज सब थाता राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदिर।

गया परम सब छूटे। सर्व पूत ए तय कर जानिया चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया पै राम प्रसादा। आशा रोजा करे मना।

में तेरा सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बौरे, ताते जन्म अलेख है रहाओ। साच कतेब बखाने अल्हो, नार पुरख नहीं कोई, पदे गुने ना ही कछ बौरे, जो दिल में खबर न होई।

ते पैदा एक तुका कियो सिंगार मिलन के ताई हर ना मिले जग जीवन गुसाई हर मेरो फिर हम हर की बहुरिया राम बड़े मैं।

ले राखियो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा कर कुंदरावा बिटवे राम रमौआ लावा रहाओ। कह कबीर सुनो मेरी माई इन मुंडियन मेरी जात गवाए आसा रहो रहो री बहुरिया कुंगत जिन काडे अंक की बार लहेगी ना आडे रहाओ। कुंगत काड गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगत कादे की एह बढ़ाई दिन दस पांच बहु पले आई। कुंगत तेरो तो पर साचे हर गुन गाए कूद है अर नाचे।

जैसे मेंढक तैसे ओई नर, फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस, नरक में बांचिया जाई। हर का संत मरे हारंबे, ता सगली सेंतराई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कह कबीर नरक से त्यावो, बावरिया संसारा। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कहत कबीर नरक।

जीवो भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम के आवो। सोईने की सुई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा।

जब ते सुद नाही मन अपना रहाओ। सिंगच भोजने जो नर जाने ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामी के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे दगरा खासा। पार ब्रह्म जे तीन सी आशा ते ना भाव से, रामा भगत।

प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जान है ताकी के तक आस। मादो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ।

काल सास अबद लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुर ज्ञान भगत जन तय हरन परमानंद करो निदान। आशा संत तुझी तन संगत प्राण सत गुर ज्ञान जाने संत देवा देव। संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माँ जय दी जय देवा देव रहाओ। संत आचरण संत चो मार्ग संत चो ओलग ओलगनी और इक मांगो भगत चिंता मन जनी लखावो असंत पापी सन। रविदास पने जो जाने सो जान संत अनंत अंतर नाही। आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे संग तुम्हारे बासा नीच रूख ते ऊंच पए हैं गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत शरण तुम्हारी हम अवगण तुम उपकारी रहाओ। तुम मक्तूल सुपेत सपैयल हम बपरे जस कीरा सत्संगत मिल रही है मादो जैसे मधु मखीरा। जाती ओछा पाती ओछा ओछा।

भोजन तुझे चरण अरविंद पान मन पान कर पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपते पटल माया धन। पान है मगन होत

जन रविदास राम रंग राता, क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है राव। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

लालच बिख काम लुगद राता मन बिसरे प्रभीरे रहाओ। बिख फल मीठ लगे मन बौरे चार विचार न जानिया गुंते प्रीत बदी अनपांती जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे दिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया ज्ञान मान मन एक मये प्रेम तगत मानी सुख जानिया तृप्त अगाने मुकुट भये। ज्योत समाए समानी जाके अचली प्रभ पहचानिया तन्ने तन पाया करनी तर मिल जन संत सम।

त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वस्या पार ब्रह्म पगता में गनिया।

शांति आई है, बिन नावे पूज न होए रहाओ। बाहर देव पखाली है, जे मन तो वह कोई, झूठ लह जियो मांझी है, मोख पयाना होए। पशु मिले चंगे आईया।

कार रहाओ। राव सस दीपक जाके त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरुमुख हुए सो एनस निर्मल मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करें नित चगरा दो लोचन क्या हेर, अंतर ज्योत शब्द तुन जागे सतगुरु चगर निवेर, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी सच महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा।

जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुरु सेविए मना जित सेविए, गोविंद प्रीत उपजे अवर विसर सब जाए। हर से की चित दहर है, जरा का पौ न हो वही जीवन पदवी पाए। रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी आप से ती आप खाया। कामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समय, दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाये। जे लोचे सब कोय, कूड़े की पाल विच्चो निकले कां सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे। सतगुर का पाना चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला की जा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाये, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, यहाँ सेव बनी जियो राव। हर मेरा सुमृत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है। हर मेरा साथ अंत होए सखाई, हर दिन होर रास पूरी है, चल दिया नाल न जाई। हर मेरा तन मेरे साथ चाले, जहाँ हो जाऊं तह जाई। सो टूठा जो टूठे लागे, सूठे कर्म कमाई।

जाओ सतगुरु मिले हर मन वसै सहजी रहे समाए रहाओ जा पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए बैराग ते हर पाए हर सुन रहे समाए शिव मुक्त जे मन जिने फिर तात न लागे आए दसवें द्वार रहत करे त्रिभुवन सो जी पाए नानक गुर ते गुर होया वेखो तिस की रजाए।

अंत गए पछताए। अनेक तीरक जे जतन करे ता अंतर की हो मैं कदे न जाए। जिस नर की दुबदा न जाए कर्म राय किस देश जाए। कर्म हो वै सोई जन पाए गुरमुख बूझे कोई। नानक विचों हो मैं मारे ता हर पेत सोई गुजरी मैला की जा। किस जन सांस सदा मत न चल जिसका अभिमान गवाए। सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे हर चरणी चितलाए। हर चेत अचेत मना जो इच्छा सो फल होई। गुर प्रसादी हर रस पावे पीवत रहे सदा सुख होई। रहाओ सतगुरु पेते ता पारस होवे पारस होए ता पूज कराए। जो उस पूजे

सो मूर्ख जो आप ना पछाने सच ना करे प्यार, सच्चे जगत डहकाया कहना कछु न जाए, नानक जो किस

गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर कीरत हमरी रह रास राव। हर जन केवड़ पाग वडेरे, जिन हर हर सरदार प्यास, हर हर

संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते पागहीन जम पास, जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए तिग जीवे तिग जीवास, जिन हर जन सतगुरु संगत पाए तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम प्रगास, गुजरी महला चौथा, गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सतसंगत शब्द मन मोह, जप गोविंद गोविंद त्याये सबको दान दे प्रभ ओ है, मेरे भाई जना मोह को गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है, गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है, रहाओ सुख सागर हर पगत है गुरमुख कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है, जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है, दुर्मत पागहीन मत फीके नाम सुनत आवे मन रो है, कौआ काग कौ अमृत रस पाई है तृप्त विस्ता खाए मुख गो है, अमृत सारे सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है, नानक तन तन वड्डे वड पागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है, गुजरी महला चौथा, हर जन उत्तम उत्तम बाणी मुख बोले पर उपकारे, जो जन सुने सरदा

गुरमुख वड़ पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे गुरमुख भगत पंडारे जिन दर्शन सतगुरु सतपुरुष ना

नानक जन हर की शरणाई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी महला चौथा। ओ दयाल मेरा मन लावो, हूँ अंगन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपे दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत देली दर्ज है ले छाई रहा। तू आपे दाता प्रभ अंतर जानी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दरगे हर हर देव दिहाई, तन तन सबास।

जीवाया हम हो गए लाले गोले गुरसिखा के जिना अंग दिन हर प्रभ पुरख ते आया मेरे मन तन बिनो गुरसिख पग लाया मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई मोको करो उपदेश हर मिले मिलाया रहा जहाँ हर प्रभ पावे ता गुरमुख मेले जिन वचन गुरु सतगुरु मन पाया वड पागी गुर के सिख प्यारे हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया सब संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुरु संगत संग न पाया से पागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभु तारे हर आपके गुरमुख मिले मिलाया जन नानक बोले गुरबाणी गुरबाणी हर नाम समाया गुजरी महला चौथा जिन सतगुरु पुरखे जिन हर प्रभु पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड पागी हर नाम ते आवे पाई रे मोको कोई आय मिले हर नाम दृढ़ आवे मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा मेरे हर प्रभु की हर कथा सुनावे रहाओ नीरज तरम गुरमत हर पाया नित हर नामे हर सो चित लावे अमृत

जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल न लागे, गुरमत नाम जपे लिव लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, से पागहीन मोए मर जावे। अनद मूल जग जीवन दाता, सब जन को अनद करो हर त्यावे। तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मिलावे। ओंकार सतगुरु प्रसाद गुजरी मेला चौथा कर कीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना को संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहो मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस है शरीर। रहाओ भगत जना को सरदा आप हर लाई, विच्चे दुरुस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर्षियों बन आई, तब जो किस करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाए, सो हम करें जो

संतु पाए ता कारज आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया गुरु प्रसाद परम पद पाया सूखे काश सहरिया रहा जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करिया उदय

संसारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी। रहा शास्त्र वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्त न को पावे, मन वेखो कर बिचारी। अस सच मज्जन कर स्नाना, ब्रह्म आए थर सारी। अनक सोच करें दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग आयो, अब आए हर द्वारी। दुर्मत मेष बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमख न बिसरो मन।

रहा हर तन स्नान हर तन ज्ञान हर संग लाए त्याना हर तन तुल्हा हर तन देड़ी हर हर तार पराना।

नवनिध पाई आश्चर्यो हर सोकार आवो खर्चो तोट न आवे हलत पलत कह संगे लाज खजाना गुरु नानक को दिया यो मन हर रंग रंगे। निमख ना बिसरो तुम को हर हर सदा पंजो जगदीश रहाओ सतगुर तुम को होए दयाला संत संग तेरी प्रीत कापड़ पथ परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभे न व्यापे चिंता पावर तुम्हारा यो मन हो वो हर चरणा हो कौला नानक दास उन

सहाओ। देश कमावन तंजोरन की मनसा भी चैनिक से सास, लश्कर नेब खवास सब त्यागे जमपुर ऊठ सिदास।

तिन पौ सागर तरिया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे, प्रभ तज अवर सेवक जे होई है, तित मान महत जस काटे। रहाओ माया के संबंध सेन साथ, तित ही कामना आया। हर का दास नीच कुल ऊंचा, किस संग मन बांचत फल पाया। लाख कोट बिखिया के बिंजन, तामे तृष्ण ना बूझी। सुमरत नाम कोट उजियारा, बस अगोचर सूजी। फिरत फिरत तुम रे द्वार आया,

राम निधान सतगुरु दृढ़ आया, दिलस ना आवे जाई, हर जप माया बंधन टूटे, अरे कृपाल दयाल प्रभ मेरे, साध संगत मिल छूटे रहाओ। आठ

सगल करत नमस्कारो, वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो, ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुध पाई, हर कीर्तन आधारो, नाम देव त्रिलोचन।

सुई ब्रंच अर सगल मोन जन जह न सकाए गता। प्राप्ति अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझिए बकन कथ रहता रहाओ। आपे पगता आप स्वामी आपन संग रता नानक को प्रभ पूर रहो है एको जतर कथा। गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु न आयो जह जह अवसर आए बनियो है तहां तहां हर के आयो। प्रभ को भगत वचल बिरदायो करे प्रतपाल बारक की न्याय जन को लाड लडायो रहाओ। जप तप संयम करम तरम हर कीर्तन जन गायो सन परयो नानक ठाकुर की अभय दान सुख पायो। गुजरी महला पंजवा दिन राती आरा दो प्यारो निमख ना की जय टीला संत सेवा कर पावनी लाये त्याग मान हठीला मोहन प्राण मान रंगीला बासरे।

पई कल्याण आनंद रूप हुई है, उबरे बाल गोपाल रहाओ, मिल वर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिन सबका किया उधार, गुजरी मैला पंजवा, मात पिता पाई सुख बंद।

आहे न मोरा मोह अनाथ निर्गुण गुण नाही मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे इहा उहा तुम्हारा जोरा साध संग नानक दर्श पायो बिनसो सगल निहोरा। गुजरी मैला पन्नवा आल जाल प्रम मोहत जावे प्रभ सेती रंग लाए मन को इह उपद

मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रत पालक प्रभु को सदा सलाही रहाओ। सांस सांस तेरा नाम समारो तुम ही कहो प्रभु आही नानक टेक पई करते की और आस बिदानी लाही।

ओर चुत चुत वो हर रसन अरादो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर दिनों करो कर जोर नाम जपे नानक दा।

0: चरण कमल संगराच सगल जीव जाको आराधे ताहू को तू चाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रभ प्राण आधार होए सहाय जिस तू राखे तिस कहा करे संसार। गुजरी महला पन्नवा
1: जल की तेज सवारी आप
0: हर हर नाम दियो गुर अवखद उतर गयो सब ताप राव हर गोविंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा सार।

व्यर्थ कब तुम अनित जुगत कर आयो, विसरत प्रभ के ते दुख गनिय महामोनी खायो। करो अनुग्रह स्वामी मेरे, गनो न मोहे कमायो, गोविंद दयाल कृपा।

रखिया पज सदा भगवंत रहाओ। नाम एक आधार भगता एक आगे तेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समरथ श्री कर शरण ताकी गही मुक्त जुगत रवाल।

सर्व रमया सोए, कोट जतन उपाव मिथ्या, कछ न आवे काम। शरण साधु निर्मला गत होए, प्रभु के नाम अगम।

सांस सांस आराध हर हर लह जाए मन की चिंग। मेरे मन जाप प्रभु का नाम सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल पाओ राव। साध संग उधार इहु मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिन सह मिटे सगल उपाद।

रोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करण कारण जोग मन तन बांसी है जन तूर कोट जन्म के लह पातित गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते मद आशा कुकरी विकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काती है जमजाल काम क्रोध लोभ मोह मूठे सदा आवागमन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन मिटत जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हर जन संत सर्व विद प्रमते पुकारे कतहु नाहीं छोट हर चरण शरण अपार प्रभ।

तू समरत शरण को दाता दुख पंजन सुख राय, जाए कलेश मिटे तय परमा निर्मल गुण प्रभु गाए। गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वड्डे पाग लिव लागी, कवल प्रगास पय साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी। आठ पह

सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे। पार जात कर आंगन मेरे पोप पत्र पट डाला, सर्व जोत निरंजन शंभू छोड़ो बोत जंजाला। सुन सुखवंते ना

जोगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस्माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात कछियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तास्र साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बिताज अमृत पियाया गुजरी मेला पहला कवन कवन जाचे प्रभ दाते ताके अंत न परे सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरथ सच देवनहार ऐ जी जब तप संयम सच आधार हर हर नाम।

जल थल तरण जगन तह नाही आप आप किया करतार। ना पद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना जोत अपार सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार। पवन पानी अगन तिनकिया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रभदाता दात करे अपने विचार। कोट के तिस जाचे प्रभ नायक देंदे तोट नाही पंडार ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार। सिद्ध समाधि अंतर जाचे रिद्ध सिद्ध जाच

ताको काल नाही जम जो है बूझे अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर पै नाम निरंजन दीजे प्यार नानक चात्रिक।

चुप लाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाके ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को के ते उधर परन कहताएं बिन हर

सोग बिजोग विसर्जत रोग। पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की, सतगुर वाक हृदय हर निर्मले, ना जम कान ना जम की बाकी रहा, हर गुण रसन रवे प्रभ संगे, ज्योतिष पावे।

निंदक नर काले मुख निंदा जिन गुर की दात न पाए। ऐ जी शरण परे प्रभु बख्श मिलावे बिलम न अदुआर आई। अनदे मूले नाथ सिर नाथा सतगुर मेल मिलाई। ऐ जी सदा दयाल दया कर रव्या गुरमते प्रमन चुकाई। पारस पेट कंचन तात होई सत संगत की वड़ियाई। हर जल निर्मल मन स्नानी मज्जन सतगुरु पाई पुनरप जन्म।

पज शरण सतगुर उबरे हर नाम रिद रमन गुरमत निर्चल मन मन मनंग सहज विचारंग सो मन निर्मल जित साच अंतर जान रतन सारंग तै पाए भगत तर पर जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तौ सरणी लब लोभ।

वा भगत न होई, जीवत मरे ता शब्द विचार है ता सच पावे कोई। माया के अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत विचारी, गुर प्रसादी सो

हर दिन जियरा रह न सके जो बालक खीर अधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहा सनक सनंदन नारद मुन सेवे अन दिन जपत रहे।

दाता मांगे हाथ पसारी, भगत जना की उत्तम वाणी गावे, अकथ कथा नित न्यारी, सफल जन्म पया तिन केरा, आप तरे कुलतारी, मन मुख दुबदा दुर्मत व्यापे, जिन अंतर मोह गुबारी, संत जना की कथा ना पावे, ओय डूबे सन परवारी, निंदक निंदा कर मल तोवे, ओ मल पख माया तारी, संत जना की निंदा व्यापे, ना उर्वार न पारी, यो परपंच खेल किया सब करते, हर करते सब कल तारी, हर एक को सूत वरते जुग अंतर, सूत खिंचे एकंकारी, रसन रसन रस गावे हर गुण, रसना हर रस तारी, नानक हर बिन

अब आ गया हुक्मन सिर हुक्मा, ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। गुजरी मैला पंजवा कर चौथा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। नाथ नर हर दीन बंदव पतित पावन देव, पै त्रास नास कृपाल गुण निध सफल स्वामी सेव।

हरण मदमोह दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार तरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिदमंत छेद अहं बुद्ध करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूरन जाचिय रजसाद मोह मिथन दुरंत आसा बासना बिकार रख धर्म परम बिदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड पंडार हर निद होत जिनाना चीर खल मुगद मूड कटाक्ष श्री तर पय गुण मत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमणं परम हंस रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नान।

एहो जगत ममता मुआ जीवन की विद नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाय। महला तीजा, अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कभे न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर ना कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। जो तिस पावे तिवें करे तिस बिन

ना जाए। सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए, अवर न दूजा क्यों सेवी है जब मैं ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने अपना, अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा, सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच, नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई, अंधा कच निकच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर सब सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायुन दुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा, सो जप सो तप जे सतगुर पावे, सतगुर

आप वड्याई देवे पौड़ी, माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों करिए तारी, अन दिन पगती रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी, हर हर नाम त्याय है।

नानक मुक्त द्वारा अतनी का नाना होए सो जाए। हौ मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुर मिले हौ मैं गई जोत रही सब आए। इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाई दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सब दे हों मैं खोई हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विगसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुरु स्यो चित न लायो नाम नव स्यो मन आए। त्रिग इवे आ जीविया क्या जुग मैं पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन सुख वसया मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यों हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुर सो तन सौंपया।

आई जल मोई कंत न लायो पाओ, नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता, उपाय किते न पाये हर कर्म विदाता। गुर शब्दी हर मन वसे हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता।

केसनो कूड बोल के खवा लिए, जे चल दिया नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, हों ता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके ना, ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जीए से

जिना नाम तन खटियाए पौड़ी। मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा, सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाईए नेचल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसे पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिग तिना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुखों में पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊदा कौल है ना तिस भगत ना नाओ, शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई मुख फीका लाओ। ओए तरम रलाए ना रलन ओना अंदर कूड़ सुहाओ। नानक करते बनत बनाई मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे, गुरमुख तरे जप हर नाओ पौड़ी।

विचों उतरे सुख वसे मन आई, सदा सदा सालाई है हृदय लिवलाई। श्लोक महला तीजा, जे सतगुरु सेवे आपना तिसनो पूजे सब कोए, सबना उपावा सिर उपाओ है हर नाम प्राप्त होए, अंतर शीतल सांत वसे जप

हर सुखदाता मन वसै। हों मैं जाए गुमान नानक नदरी पाई है, ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता। तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता। सबना दाता एक है इको हर मिता, श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है, जे अंदिन हर लिवलाए।

समाए। नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई, जे अन दिन हर नाम ते आए महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी, रसना झूठ बुलाए। कपट कीते हर पुरख न पीजे, नित वेखे सुने सुवाए। दूजे पाए जाए जग प्रबोधे, बिख माया मोह सुवाए। इत कमाणे सदा दुख पावे, जम्मे मरे फिर आवे जाए। सहसा मूल न चुकई, विच विष्टा पचे पचाए। जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी।

तिस गुर की सिख सुनाए, हर नाम ते आवे हर नामो गावे, हर नामो अंत छड़ाए पौड़ी। जिन्ना हुकुम मनायोन ते पूरे संसार, साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार, हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार, हर का महल तिन्नी पाया जिन्हो मैं विचो मार, नानक गुरमुख मिल रहे जप हर नामा उरधार। श्लोक महला तीजा, गुरमुख त्यान सहज तुन उपजय सच नाम चित लाया, गुरमुख अनदिन रहे रंग राता हर का नाम मन पाया, गुरमुख हर वेखे गुरमुख हर बोले गुरमुख हर सहज रंग लाया, नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया, जिसनो कर्म होवे तुर पूरा तिन गुरमुख हर नाम ते आया। महला तीजा, सत गुर जिना

नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया करम प्राप्त होए मैला तीजा। वाह वाह करती रसना सबद सुहाई पूरे सबद प्रभ मिल्याई वडभागिया वाहो वाहो मोह कढाई वाह वाह करें सही जन सोने तिनको प्रजा पूजने आई। वाह वाह करम प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी। वज्र कपाट काया गढ़ पीतर कूड़ कुसत अभिमानी परम पूले नदर नामनी मनमुख अंध अज्ञानी उपाय किते न लबनी कर पेख थके पेखवानी गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह करत्या रहन सुख विहाए वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए वाह वाह करत्या हर्ष्यो लिवलाए वाह वाह कर्मी बोले बोलाए वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह।

जात ना जाए सी मनमुख दुख खाता रसना हर रस ना चखियो फीका बोलाता जिना गुरमुख अमृत चाखिया से जन तृप्ताता। श्लोक महला तीजा। वाह वाह तिसनो आखिए जे सच्चा गहर गंभीर वाह वाह तिसनो आखिए जे गुणदाता मत तीर

जे सतगुरु दिया दिखाए महला तीजा, वाह वाह गुरुमुख सदा करें, मनमुख मरे बिख खाए, ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए, गुरुमुख अमृत पीवण।

सेवा भगत बनी जाए, हर कै पाणे हर मन वसे, सहजे रस पी जाए, हर कै पाणे सुख पाई, हर लाहा नित ली जाए, हर कै तख्त बहालिए।

जाए, वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे, हों मैं विच्चों जाए, वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए, वाह वाह करें से जन सोहने हर तिनके संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहारे जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणी है सच है समाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमत्ती हर

जय पाए खुआए जमण मरण न चुकई हो मैं विच दुख पाए। जिना सतगुर से चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना हो वही ना ओए दुख सहाए। नानक गुरमुख उबरे सच्चे सबल समाए।

तार टाडी दर कर पाए सी सच रखे उतार टाडी का महल अगला हर कहना है प्यार टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार श्लोक महला तीजा गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना जिस सतगुरु मिले तिस तौ पवे सा कुलवंती नार सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा की करतार ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार पै पै मल कटिए निर्मल हो वै शरीर अंतर प्रगास मत उत्तम हो वै हर जप गुणी गहीर पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार कैथे सुख वडियाईया दरगे।

ईश्वर ब्रह्मा सेव दे अंत तिनी ना लिया, निर्भो निरंकार अलख है गुरुमुख प्रगटैया, तिथे सोग विजोग ना व्यापे अस्थिर जगतिया। श्लोक महला तीजा, एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार, जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आपरवान, नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा, मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा, जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बहरा, फिर उजड़ पाए पौड़ी तिस आगे अरदास जिन उपाया, सतगुर अपना सेव सब फल पाया, अमृत हर का नाव सदा त्याया, संत जना के संग दुख मिटाया, नानक पय अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा, खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय, महल पगती कर सरे सज्जन पाहुण्यो, बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे, नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा, मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास, नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास। पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास, तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याए, जी जंत सब तेरिया तू रहा समाए, जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाए, चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा, आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए, नानक आशा पूरिया सच्चे स्यो चित लाए, महला तीजा आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए, नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहनाए। पौड़ी आपे जग तो पायन कर पूरा थाट, आपे साओ आपे वनजारा आपे ही हर हाट, आपे सागर आप

गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुमना गुर नाओ सतगुर से तीरतया दरगे पाये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वस दे जग में उत्तम काडिये विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन साथ जना कै संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माए बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है सच्चो सच्चा सच सच निहारी है कूड़ न जापे किछ तेरी तारी है सबसे दे दातार जेत उपारी है इक्कत सूत परोए जोत संजारी है हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है तेरी गत मित लकी न जाए हों तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा। जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर्म है पाहे जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा। किती बहन बहने मुच बजाएन वज नानक सच्चे नाम बिन किसे ना रहिया लज। पौड़ी। तुद त्याएन बेद कते बां सन खड़े गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े ब्रह्मे तुद त्याएन इंद्र इंद्रासना शंकर विष्ण अवतार हर जस मुखपणा पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए ओत पोत निरंकार कट कट मौलिए।

पंजवां चंगियाई आलक करे बुरियाई होए सेर नानक अजकल आवसी गाफल फाही पेर महला पंजवां कितिया कुटंग गुज्जा थी ऐ नाहित नानक तै सह टकिया मन में सच्चा मित पौड़ी हौ मांगो तुझे दयाल कर दासा गोलिया नौनिद पाई राज जीवा बोलिया अमृत नाम निधान दासा करकना तिन कै संग निहाल श्रवणी जस सुना कमावा तिन की कार शरीर पवित होए पखा पानी पीस भिक्षा पैर तोए आपको कछु न होए प्रभ नदर निहालिय मोहि निर्गुण चै थाऊ संत धर्म सालिय श्लोक महला पंजवां।

पन्नवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर चोट से आनप सगल मन तन अरप तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगे न मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याये सदा हर सो लगा सतगुर सेव जा को कर्म तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख से आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लै हिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई संत प्यारे नानक पूरन कामा। पौड़ी पायन सब निधान तेरे रंग रत्या ना होवी पछोताओ तुदनो जपत्या पहुंच ना सके कोई तेरी टेक जन गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन गुर पै सिफ्त पंडार कर्मी पाये सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना पाये रखे आप दयाल कर दासा अपने हर हर हर।

तेंदे सिमरन हब किछ लदम बिखमना डिठम कोई जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट न सके कोई पौड़ी होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए अंदर वरते ठांड प्रभ चित आए पूरन होवे आस नाए मन बसाए कोई न लगे बिघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुर ते पाए तिन पाए सभ्य थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैडा खोज न खुंबे मंज मुहब्बत तेरी कौ सह चरणी मैडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुरमत बंजे मित्र असाडड़े से हौ टूडे दी जग सब आया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगता डिठिया मन की कटिये मैल सात संग उठिया जन्म मरण पौ कटिये जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस्यो लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपते होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग ना की चई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी सावेला परवान जिस सतगुर पेटिया हुआ साधु संग फिर दूख ना तेटिया पाया नेचर थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखों बोले टिया हुक्मे बुझ निहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुर न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछोहे जंबूर खवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मिलन नानक सुख संभू सच। महला पंजवा। जिमी वसंदी पानी है ईदन रखे पाए नानक सो सो आहे जाके आडल हब को। पौड़ी तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे बिस्म पे बिस्माद देख कुदरत तेरिया शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया तेरे हाथ निधान पावे तिस दे जिसनो होए दयाल हर नाम से ले अगम अगोचर बेअंत अंत न पाई है जिसनो हो है कृपाल सो नाम ते आई है। श्लोक महला पंजवा। कड़छिया फिरन सुआव ना जान सुनिया से मुख दिसन नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़ तैसे दिती वाड़ नानक खेत न छिजई। पौड़ी आरा दियो सच्चा सोए सब किछ जिस पास दोहा सिरिया खसम आप खिन में करे रास त्यागो सगल उपाव तिसकी ओट गहो पौ सरनाई पज सुखी हो सुख लहो कर्म कर्म तत ज्ञान संता संग होए जपिए अमृत नाम बिघन न लगे कोए जिसनो आप दयाल तिस मन उठिया पायन सब निधान साहिब तुठिया। श्लोक महला पंजवा। लदम लबन हार कर्म करन दो मापिरी इको सिरजन हार नानक बिया ना पसी है। महला पंजवा। पापड़िया पछाड़ बाण सचावा सन कै गुर मंत्रड़ा चितार नानक दुख न थी वही। पौड़ी वाह वाह सिरजन हार पायन ठाड आप जी जंत मेहरवान तिसनो सदा जाप दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियन अपनी रख गरीब निवाज थाप
आपे लयन छाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख त्राप वड्डी हूं वड्डा अपार खसम जिस लेप न पुन पाप। श्लोक महला पंजवा। जाको पै कृपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह तेटत साध संगात। महला पंजवा। राम रमो बड़ पागियो जल सल मही अल सोए नानक नाम अराध्य बिघन न लागे कोए पौड़ी। पगता का बोलिया परवान है दरगे पवे थाए पगता तेरी टेक रते सच नाए जिसनो होए कृपाल तिसका दुख जाए। पगत तेरे दयाल ओ ना मेहर पाए दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए। पगता एहो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको इक त्याए पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अगाए। श्लोक महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अन दिन बिलपते ज्यों सुन्ये कर काओ। महला पंजवा। प्री मिलावा जाथी है साई सुहावी रुत कड़ी मोहत ने विसरे नानक रविये नित पौड़ी। सूर वीर वरी आम किने न होड़ी है फौज स्थानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी औ दूत देन चमोड़ी है जिन जिन लैन रलाए एहो ए ना लोड़ी है त्रै गुण इन कै वस किने न मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपुरा आराद बिखम दल फोड़ी है हौ तिस अगे दिन रात रहा कर जोड़ी है। श्लोक महला पंजवा। किल विख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजे नानक बिसरे नाओ। महला पंजवा। नानक सतगुर पेटे पूरी होवे जुगत हसंदिया खेलंदिया पैनंदिया खावंदिया विचे होवे मुक्त पौड़ी। सो सतगुर तन तन जिन परम गर तोड़िया सो सतगुर वाह वाह जिन हरस्यो जोड़िया नाम निधान अखुट गुर दे दारुओ महारोग विकराल तिने बिदारुओ पाया नाम निधान बहुत खजानिया जिता जन्म अपार आप पछानिया महिमा कही न जाए गुर समरथ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव। श्लोक महला पंजवा। उद्दम करेंदिया जियो तू कमाउंदिया सुख पुंच त्याइंदिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो इक कड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डरपिए जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए आये चित निहाल साहिब बेसुमार तिसनो पोहे कवन जिस वाल निरंकार सब किछ तिस कै वस ना कोई बारा सो पगता मन बुठा सच समाहरा तेरे दास ते आयन तुद तू रख।

चार पाव दो सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुस्थई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसर्यो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहन बेही है। कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा मुस मुस रोवे कबीर की माई ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर हर का नाम लिख लियो शरीर। रहाओ जब लग तागा बाहो बेई तब लग बिसरे राम स्नेही।

सतगुरु प्रसाद। जो राज दे ता कमन बढ़ाई, जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान, बौर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई।

मले ना लाछे पार मलो परमलियो बैठो री आई आवत किने ना पेख्यो कवने जाने री बाई कौन कहे किन बूजिए रमैया आकुल री बाई रहाओ ज्यो आकाशे पंखियलो खोज निरख्यो ना जाई ज्यो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई ज्यो आकाशे कड़ुअलो मृग तृष्णा परया नामे चे स्वामी बीठलो जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे करती जा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। दूध त बचरे थनो बिटारियो फूल पवर जल मीन बिगारियो माई गोविंद पूजा कहा ले चरावो और ना फूल अनूप ना पावो रहाओ मैलागर बेरे है पयंगा बिख अमृत बसे इक संगा तूप दीप नई बेदे बासा कैसे पूज करें तेरी दासा तन मन अर्पो

त्रिलोचन जियो के पदे कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। अंतर मल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी, हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी। परमे पूली रे जय चंदा, नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ। कर कर खाया पिंड बंडाया, चिंता मुंडा माया। ओम मसान की पसम लगाई, गुर बिन तप्त न पाया। काय जपोरे काय तपोरे, काय बिलो वो पानी। लख चौरासी जिन उपाय, सो सिमरो निर्वाणी। काय कमंडल कापड़िया रे, अड़सठ काय फिराही। बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी, कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। सर्प जोन वल वल अवतरे, अरि बाई गोविंद नाम मत बिसरे रहाओ। अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। बेसवा जोन वल वल अवतरे, अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। सूकर जोन वल वल अवतरे, अंत काल जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। प्रेत जोन वल वल

सतगुरु प्रसाद। परमाद पुरख मनोपिमं सत आद पावरतं परमद्भुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं नादनोत जस स्मरणेन जन्म जराद मरण पयं रहाओ इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्त सुकृत कीर्तं पाव पूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्मिदं लोबाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर पगत निज ने केवला हृद कर्मणा बच

हम विषम कई मुख लागे। सगली रैन सोई अंधियारी, गुर किंचित कृपा जागे। जन नानक के प्रभु सुंदर स्वामी, मोय तुम सर अवर न लागे। देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, हर के संत बतावो।

लतरी मदरी ठाकुर पाई ओ सुंदर हर कुल मिली। एको प्रियो सखियां सब तरह की जो पावे पुरसा बली। नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे कितरा है चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है। गुरमुख रंग चलू ले राती हर प्रेम पीनी चोली है। रहाओ हो फिरो दीवानी आवल बावल किस कारण हर टोली है। कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा हम किसकी गुलगोली है। सतगुरु पुरख मनावो अपना हर अमृत की चोली है। गुरु प्रसाद।

बुरा कहो हम तन दियो है तार। जो आओ शरण ठाकुर प्रभ तुमरी किस राखो कृपा थार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हो किस बलिहारी। देख देख जीवा साध गुर दर्शन जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ। तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी हम क्यों कर मिले जुठारी। हमरे जिए होर मुख होर हो तो है हम कर्म ही कूड़ियारी। हमरी मुदर नाम हर स्वामी रुद अंतर दुष्ट दुष्टारी। जो पावे क्यों राखो स्वामी जन नाम शरण तुम्हारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नट्टी। जो बेसुआ के कर पूत जमत है किस नाम परयो है प्रकटी रहाओ। जिनका हृदय नाहे हर स्वामी ते बिगड़ रूप बेरक्ती। जो निगुरा बहु बाता जाने ओह हर दरगह है प्रस्ती। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिना साध जना पग चकती। नानक पतित पवित्र मिल संगत गुर सतगुर पाछे छुपती। छक्का पहला देव गंधारी महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुर चरणी चित लाइए प्रभ होए कृपाल कमल प्रगासे। सदा सदा हर त्याय रहाओ अंतर एको बार एको सब में एक समाये। काट अब झट गविया सब खाई हर पूरन ब्रह्म दिखाई है। पुस्तक करे सेवक मुन के तेरा अंत ना कतहु पाइये। सुख दाते दुख पंजन स्वामी जन नाम सद बल जाइए। देव गंधारी माई होन हार सो होई है रात रहो रचना प्रभ अपनी। कहां लाभ कहां खोई है रहो। कह फूले आनंद बिखे सोग कब हसनो कब रोई है। कब मुँह मैल परे अभिमानी कब साधु संग तोई है। कोई न मेटे प्रभ का किया दूसर नानी अलोई है। कहो नानक किस गुर बलिहारी जिन पर साग सुख सोई है। देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत। मेर तेर तजो अभिमाना शरण स्वामी की परत रहाओ। जो जो कहे सोई पल मानो नाहे ना का बोल करत। निमख न बिसरो किए मोरे ते बिसरत जाई हों मरत। सुखदाई पूरन प्रभ करता।

मन हर कीरत कर सदहू, दावत सुनत जपत उधारे, वर्ण अवर्णा सबहू रहाओ, जैसे उपजियो तही समायो, ए विद जानी कभू, जहाँ जहाँ ए देही तारी, रह न पायो कभू। सुख आयो कै परम विनाशी, कृपाल हुए प्रभ जभू, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, साध संग तद लभू। देव गंधारी मन जो अपने प्रभ पावो, नीचो नीच नीच अपनाना, होए गरीब बुलावो रहाओ। अंत अडंबर माया के बिरते, तासो प्रीत कटावो, जो अपनो स्वामी सुख माने, तामे शोभा पावो। दासन दास रे दासन की, जन की टहल कमावो, सर्व सुख बढ़ियाई नानक, जीवो मुखो बुलावो। देव गंधारी प्रभ जी तो प्रसाद प्रम डार्यो, तुमरी कृपा ते सबको अपना, मन में यह विचार्यो रहाओ, कोट पराध मिटे तेरी सेवा, दर्शन दुख उतार्यो, नाम जपत महासुख पायो, चिंता

देव जुलारी मन सगल स्यानक रही कर्म कराम हार स्वामी नान कोट गही रहाओ आप नेक पय शरणाई इन मत साधु कही प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा नहीं जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे शरण कुमारी अही खिन मैं खाप थापन हारे कुदरत की मना पही देव नारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते गुरु प्रसाद पाहु जाते रहाओ संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल न खाते रंग तुम्हारे लाल पे है राम नाम रसमाते महाकिल्बित कोट दोत रोगा प्रभु दिष्ट तुम्हारी हाते सोत जाग हर हर हर गाया नानक गुरु चरण पराते देव गंगारी पंजवा सो प्रभु जत पत पेखो नैनी सुखदाई जीवन को दाता अमृत जाकी बैनी रहाओ अज्ञान अंधेरा संति काटिया जीव दान गुर देनी कर कृपा कर लीनो अपना जलते शीतल होनी करम तरम किस

निर्मल करनी छाड़ श्याम तु संजम नानक लागो गुर की चरणी देव गुंडारी महला पंजवा हर राम नाम जप लहा गत पावे सुख सहज आनंदा काटे जम के पाहा रहा खोजत खोजत खोज बिचारे हर संत जना पह आहा तिना प्राप्त एव निधाना जिनके कर्म लिखा से बड़ पागी से पतवंते से ही पूरे साहा सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक जिन हर हर नाम निसाहा देव नारी महला पंजवा मन के अंकार अपारा दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर जो दिशा सोचारा रहा।

अंग गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राखो राखन हारा तरण करावन हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी महला पंजा। सो प्रभ नेरे हूते नेरे सिमरत आए गाय गुण गोविंद दिन रैन सांस सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपेरे तरी न मोहत न चसा विलंब हो काल नित हेरे अंग बिला।

महला पंजवा तेरा जन राम रसायण माता प्रेम रसा निज जाको उपजी छोड़ न कतहू जाता रहो बैठ तो हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अब सब तीरथ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजिया जिनकीनो सौत विदाता सगल समूह ले उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता देव गदारी महला पंजवा माई गुरु बिन ज्ञान न पाई है अनेक प्रकार फिरत बिल्लाते मिलत नहीं गोसाई रहा मोह रोग सोग तन बांधे बहु जोनी परमाई है टिकन न पावे बिन सत्संगत किस आगे जाए रुआई है करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप हुई है उबरे बाल गोपाल रहाओ दो कर जोर करी बेनंती पार ब्रह्म मन से आया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उधार इको अंकार सतगुरु प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुरु पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख पंजन मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सया कर मस्तक तार साध निवाजे मोहे दुष्ट जो खया परोपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर धरया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखन हारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंति वारे जब चितवो तब सुहा

लारी महला पंजवा दर्शन नाम को मन आछे प्रम आयो है सगल खान रे आहे परयो संत पाछे रहाओ किस मुसे भी किस आराधी जो दिसते सो गाचे साज संगत की सरनी परिय चरण रेन मन बाछे जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्तर माया आचे आयो पयो नानक गुरचरनी

कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल विसारे। देव नदारी महला पंजवा। हर जप सेवक पार उतारे हो दीन दयाल पे प्रभ अपने।

लाग है टूट रहे हम ऊंचा रहा बहु व्यंत अत बड़ो बारो हा नहीं अगहूचा तोल न तुलिये मोल न मुलिये कत पाइये मन रूचा खोज असंख्या अनेक पंखा बिन गुर नहीं पहुँचा कहो नानक कृपा करे ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव गंधारी महला पंजवा।

अगम अगम्मा कवन महिमा मन जीवे सुन सो। चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे सेव को। गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो। कहो नानक पव सागर तरिया हर मृद पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक कह रे हर एक कह जान एक कह रे गुरुमुख जान रहाओ। काहे परमत हों तुम प्रमो ना पाई रविया रे रविया सर्वथान। ज्यों बैसंतर

मात पिता पाई सुत बंदक अर्पुन गृह की नार रहो तन से प्राण होत जब न्यारे तेरक प्रेत पुकार आज घरी को नहरा करते देख निकार मृग कृष्णा जो

देवगंधारी महिला नावा। जब तुम्हें चूठी देखी प्रीत अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या नीत रहा, मेरो मेरो समय कैक है, हिस्सो बांधो चीत, अंतकार संगी नह को ए अचरज है रीत। मन मूरख अजहू ने संगत सिख दे हारो नीत, नानक पौजल पार परे जो गावे प्रभ के गीत। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल अमृत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद राग विहागड़ा चौक दे महला पन।

निरंजन जी सब जग परमायो सगल कर्म कर नानक प्राणी चरण काहीं चितलायो राग बिहागड़ा संत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर हर नाम से आई है मेरी जिंदगी गुरुमुख नाम अमोले राम हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम से को

मन सिंधियाला फल पाया हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत उठवा मेरी जिंदड़ी मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ी मन सुनिए हर लिव लाए राम। चिरी विचुना हर प्रभ पाया गल मिलिया सहज।

कोई हर सब आन मिलावे राम। हो मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी, हर सब की हर कथा सुनावे राम। गुरुमुख सदा आराध हर मेरी जिंदगी, मन चिंदेरा फल पावे राम। नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी, वड पागी नाम ते आवे राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी, गुरमत नाम प्रगासे राम। हो हर बाज उगिया मेरी जिंदगी, जो जल बिन कम

दिखले जाए राम मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़ी हर हर नाम ते आए राम हर पाग वडे लिख पाया मेरी जिंदड़ी जन नानक नाम समाए राम हर चेती मन भेदया मेरी जिंदड़ी जो बालक लग दुखी रे राम हर दिन शांत ना

जन नाम घर में लाया मेरी जिंदड़ी है, कर वाजे शब्द कनेरे राम। मन हो मैं विचड़े मेरी जिंदड़ी है, बिख बांधे हो मैं जाले राम। जो पंखी कप

ये गुर सतगुरु वीर लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागड़ा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी जप हर हर नाम उधारे राम सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़ी मल गुरुमुख नाम उतारे राम वड पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूरख मुगत निस्तारे राम जो हर नाम से आए दे मेरी जिंदड़ी तिना पंचे वसगत आए राम अंतर नव निज नाम है मेरी जिंदड़ी गुर सतगुर अलख लखाए राम गुर आशा मनसा पूरी आ मेरी जिंदड़ी हर मिलिया सुख सब जाए राम तुरमस्तक हर प्रभ लिखिया मेरी जिंदड़ी जन नानक हर गुण गाए राम हम पापी बलवंचिया मेरी जिंदड़ी पर द्रोही ठग माया राम वड पागी गुर पाया मेरी जिंदड़ी गुर पूरे गत लित पाया राम गुर अमृत हर मुख

अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए जित जपिया पाप गवाते राम। अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए जित जपिया पाप गवाते राम। पतित पवित्र गुर हर किए मेरी जिंदड़िए चहु कुंडी चहु जुग जाते राम। हौ मैं मैल सब उतरी मेरी जिंदड़िए हर अमृत हर शरणाते राम।

जिन हर हर नाम आधारो राम, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदगी ए, बिख औजल तारन हारो राम, जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदगी ए, तिन संत जना जयकारो राम। नानक

तर्क पाताल आकाश है मेरी जिंदगी, सब हर हर नाम से आवे राम। पौन पानी दे संतरो मेरी जिंदगी, नित हर हर हर जस गावे राम। वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदगी, मुख हर हर नाम

जो मनमुख पाप लुभाने राम जन नानक गुरु मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम दृढ़ावे राम हर जप दिया।

कर से वो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो जनता मार्ग सा दे राम मार्ग बिखरा साज गुरमुख हर दरगे शोभा।

ए मन तन सब अरके हा राम, मन तन तन सब प्रभु के राम। क्या को पूज चढ़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी, सो प्रभ अंक समावे पाग मस्तक होए जिसके, तिस गुर नाल सुनेहा जन कह नानक मिल साद संगत, हर हर नाम पूजे हा। देह जिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम। हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर तिस में रहा समाए राम। सर्वे समाना आप स्वामी गुरुमुख प्रगट होया।

कवन रसना गुण पना प्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सकी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया बिहागड़ा महला पंजवा कल कृपा।

कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नहीं तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरख मुग्ध अनाथ चंचल बलहीन नीच अजाना।

हर की भगत मंगे, हर भगत पाए प्रभु ते आए, जाए मिलिए हर जाना, मान मोह विकार तजिए, अरत तन तन इहो मना, बब पुरख पूरन गुण संपूरन, प्रम तीत हर

हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम, हर नाम जपत सो हंस प्राणी ताकी महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना, शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊंच अगम अपार, बिनवंत नानक सफल।

अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने। कर अनुग्रह पतित पावने बहु जोन प्रम से हारी बिन वंश नान।

सबदे साध न पायो मन हथ क्या गुण गाए। नानक आया सो परवान है जो गुरमुख सच

सतगुर कह तै पन ना करो रह अंक समाए। अन दिन सहसा कदे न चूके बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सबला।

आए पिसावे, आप पकावे, आप पांडे दे परोसे, आपे ही बैठावे, आपे जल

बंधन तोड़े सचमत है, अज्ञान अंधेरा जाए, सब किस देखे किसे का, जिनकी आतन साज, नानक शरण करतार की, करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे साथ किया, जदों आपे साथ किया बह करते, तदों कुछ ना सेवक दिया, तदों क्या को लेवे क्या को देवे, जा अवर ना दूजा किया, फिर आपे जगत उपाया करते, दान सबना को दिया, आपे सेव बनायन गुरमुख आपे।

कथिय ना पाइए अंगिन रहे सदा गुण गाए जिन कर में किन ना पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन तुझे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करीजे आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कथिजे आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्तीजे आपे सुख दुख दिले करता आपे बख्श करीजे आपे सुख दुख देवे करता आपे बख्श करी जाए श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड तू पौ कर चल गवाए गुर के पै के ते निस्तरे तैर च निरपौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए खाए नानक काम क्रोध किने न पायो पुछो ज्ञानी जाए महला तीजा मन मुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार कूर कमावे कूर संग्रह कूर करे आहार दिख माया तन संच मरे अंते हुए सब छार।

को पार पवे जिना अंदर सच्चा सोए नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए पौड़ी आपे पारस आप ताप है आप की कौन कंचन आपे ठाकुर सेवक आपे आपे ही पाप खंडन आपे सब कट भोग है स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब देता आपे गुरुमुख पंजन जन नानक सालाहे नारज तुद करके तू हर सुख दाता।

संध्या परवान है, जित हर प्रभ मेरा चित आवे, हर्षो प्रीत उपजे माया मोह जलावे, गुर प्रसादी दुबदा मरे, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार, नानक संध्या करे।

सो सब कुछ पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साओ सच्चा बनजारा जिन वत्तर लदिया हर नाम तन तेरी सब किसे नो सालायो संतो जिन

0: पौड़ी
1: जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे है आपे सतगुरु मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे अपनिया सेवका की आप पैज रखे अपनिया भगता की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यार

अंध कमाए नानक ऐसे कमावे सो मिले अग्गे पाए जाए महला तीजा तुर खसने का हुक्म पाया विन सतगुर चेतिया न जाए सतगुर मिले अंतर रव रहा सदा रहा लिव लाए दम दम सदा संभालदा दम न बिरखा जाए जन्म मरण का पौ गया जीवन पदवी पाए नानक एहो मर्तबा किसनो दे जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी आपे दाना बीनिया आपे प्रधाना आपे रूप दिखालदा आपे लाए सियाना आपे मोनी वर्तदा आपे कथे ज्ञाना कौड़ा किसे ना लग गई सबना ही पाना पुस्तक बरन।

बस सब कुछ तेरे बस है, तू सच्चा चाहो भगत रते रंग एक कह पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर रज रज जन खाहो, सब पदार्थ

सतगुरु मोको हर दिया, सतगुरु मोको हर दिया बुझाए रहाओ, दुहागनी खरिया बिल्ला दिया, सिना मैल न पाए, दूजे पाए करूपी दुख पावे आगे जाए, गुणवंती नित गुण।

गुरुमुख जात पत फट सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वडाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच करने

ए मन नाम निदान तू पाए, अपने गुर की मन ले रजाए। रहाओ गुर के शब्द विच्चों मैल गवाए, निर्मल नाम वसे मन आए। कर में पूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुआर। नानक सेवड पागी, जिन हर नाम

का मन बिरखा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मन्ने ता हर मिले ता विच्चों हो मैं जाए रहा, हो मैं सब शरीर है, हो मैं ओपत होए, हो मैं वड़ा गुबार है, हो मैं विच बुझ ना सके कोए, हो मैं विच पगत ना हो वही, हुक्म ना बुझ आ जाए, हो मैं विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हो मैं गई, ता सच वसया मन आए, सच कमावे।

मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाओ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया थे मैं गुण नाही हाओ क्यों मिला मेरी माया हाओ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हाओ हर प्रभ छोड़।

ते मैं गुण नाही हौ क्या करी दुहागण, नित सुहागण सदा तिर रावे, मैं कर्महीन तब ही गल लावे, तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा, मैं निर्गुण

मैं मन वड्डी आसरे क्यों कर हर दर्शन पावा हों जाए पुछा अपने सतगुरे गुर पुछ मन मुग्ध समझावा पूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा ते आए नानक जिस नजर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी सितलाए हों सब वेश करी तिर कारण जे हर प्रभ साचे भावा तो फिर प्यारा मैं नजर ना देखे हों क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हों सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागन जिन फिर रावे अड़ा सच सवरा हों जाए पुछा सुहाग सुहागन तुसी क्यों कर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नजर करी फिर साचे मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का इस मार्ग पैने मिली है आपनड़ा प्रभ नजर कर देखे नानक जोत ज्योति रली है जो हर प्रभ का मैं देश नेहा तिस मन तन अपना देवा नित पक्का फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी तोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा सुनाए तन तन गुरु गुर सतगुरु पूरा नानक मन आस पुजाए गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम से आवा गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी तित वेले मर जाए जियो मेरा हर वेखन को सब कोई लोचे सो वेखे जित आप विखाले जिसनो नजर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा समाले सो हर हर नाम सदा सदा समाले जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलिया नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर ते

रहाओ लाख भगत जाको आराधे लाख कपि सर कपि साधे लाख जोगी सर करते जोगा लाख पोगी सर पोगे पोगा कट कट वक्ते जाने तोरा है कोई साजन पर्दा तोरा करो जतन जे होए मेहरवाना करो जतन जे होए मेहरवाना ताको दे जियो कुर्बाना फिरत फिरत संतन पे आया दुख परम हमारा सगल मिटाया महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा वडहंस महला पंजवा तन सोवेला जित दर्शन करना हौं बलिहारी सतगुर चरणा जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब पर पुर लीना वडहंस महला पंजवा तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद को शब्द पठाने सेवक की अरदास प्यारे।

जल सल मैयल रहा पर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परयो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वडदाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम।

नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वढांस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु ते आये रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभ कहे निहाला जत कत पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी ऊठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वढांस महला पंजवा विसर नाही प्रभ दीन दयाला तेरी शरण पूरन कृपाला रहाओ जय चित आवे सो थान सुहावा जित वेला वितरे

मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे हो क्यों पाई गुरपुरे ये तो खेल खिलाए बालक रह ना सके बिन खीरे मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे तो भोजन मैं नीरे मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता हों एक दिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिल लाता हों क्या गुण तेरे सार समाली मैं निर्गुण को रख लेता हों पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा एहो कापड़ तन ना सुखावई कर ना सको हूं वेता जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा तिन आगे हम आदेशा मैं सब सिगार बनाया अमाली बिन फिर काम ना आए जहां सह बात ना पुछिया अमाली ता बेसा जोबन सब जाए तन तन ते सुहागणी अमाली जिन सो रहा समाए हों वारिया तिन सुहागणी अमाली तिनके तोवा सद पाए जिचर दूजा

सच तुन सच शब्द विचारा अंदिन सच सलावाना तन तन वड भाग हमारा मन मेरे साचे नाम विटों बल जाओ दासन दासा हुए।

अधिकाई काम क्रोध नित संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस युग में दुर्लभ है गुरुमत हर रस की जय रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरुमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काढ लिया साची वड्याई दिख से अमृत भये गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पये अंतर वासना समाई मानस जन्म दुलंब है जग में खटियाए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिनके हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया।

नाता सो प्रमाण सच कमाइए, जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाइए। लिखे बाजों सुरत नाही बोल बोल गवाइए, जिथे जाए बइए भला कहिए सुरत शब्द लिखाइए, काया कूड़ बिगाड़ काहे नाइए, ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया, अमृत हर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया, सुख मन मैं आए वस्या जाम तै फुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया, वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे नाख झगड़ा पावना, न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना, जिस नाल संगत कर सरी की जाए क्या रुआवना, जो दे सेना मने कहना आख नाही बावना, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, सब उपायन आप आपे नजर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम पावे सो करे, किछ पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समतरे, नानका जिन नाम मिलिया कर्म होआ तुरक दे, सब उपायन आप आपे नदर करे। वडांस महला पहला, करो दया तेरा नाम वखाना, सब उपाय आप आपे सर्व समाना, सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाया, एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवाया, लोभ मोह तुझ किया मीठा एक परम फुलाना, सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना, नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना, दुख गया सुख आए समाना, गावन सुरनर सुगड़ सुजाना, सुरनर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे, माया मोहे चेते नाही एला जन्म गवावे, एक मूड मुगद ना चेते मूले जो आया तिस जाना, नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना, तेरा वक्त

जुगें जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करो बेनती हों आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

आप वाणी सिच मन की पूरी सारंग ज्यों पग तरे ठिम ठिम आप संदूरे श्री रंग राती फिरे माती उदक गंगा वाणी बिनवंत नानक दास हर का तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी वाणी। वडहंस महला तीजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अपने पिर के रंग रती मोये सोभावंती नारे सच्चे शब्द मिल रही मोये पिर रावे पाए प्यारे सच्चे पाए प्यारी कंक सवारी हर हर स्यों निहो रचाया आप गवाया ता पिर पाया गुर के शब्द समाया सा तन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा तन मेल लई फिर आपे साचे सहे सवारी। निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम गुरुमुख जिन्नी रावया मोये फिर रव रहा पर पूरे राम फिर रव रहा पर पूरे वे खजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली कोली फिर सहज रावे मिलिया कर्म विदाता जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर पावे शब्दे रह हदूरे। सोहागनी जाए पूछो मुइये जिनी विच्चों आप गवाया फिर का हुक्म ना पायो मुइये जिनी विच्चों आप ना गवाया जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया रंग स्यों रलिया माने सदा रंग राती सहजे माती अंदिन नाम वखाने कामन वड़ पागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती जिन सच सिगार बनाया। हों मैं मार मुये तू चल गुर के पाए हर वर रावे सदा मुये निज कर वासा पाए निज कर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोगन बाला अंदिन कंक सवारी हर वार सुहागो मस्तक पागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हर रंग राती जा चले सतगुरु पाए। वडहंस महला तीजा गुरुमुख सब वापार पला जे सहजे की जय राम अंदिन नाम वखाणी है लाहा हर रस पी जय राम लाहा हर रस लीजे हर रावी जय अंदिन नाम वखाणे गुण संग्रह अवगुण विकणे आपे आप पछाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे शब्द रस पीजे नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस कुंज तू लाहा ले परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम से आए मन वसाए बूजे गुर विचारा मन मुख खेती वणज कर थाके कृष्णा पुख न जाए नानक नाम बीज मन अंदर सच्चे शब्द सुहाए। हर वापार से जन लागे जिना मस्तक मणि वड पागो राम गुरमति मन निज कर वस्या सच्चे शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साज रते विचारी नाम बिना सब जग बोराना शब्दे हो मैं मारी साचे शब्द लाग मत उपजे गुरुमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पौ पंजन हर रावे मस्तक पागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारन हारा। पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई। वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो
अपने घर तू सुख वसै कोहे ना सके जम काल जियो काल जाल जम जोहे न साके साचे शब्द लिव लाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए।

लाहा लाभ हर भगत है, गुण में गुणी समाई राम। गुण में गुणी समाए जिस आग बुझाए, लाहा भगत से सारे, बिन भगती सुख ना होई, दूजे पत खोई।

माया मोह सब दुख है, खोटा एहो वापारा राम। कूर बोल बिख खावणी, बहु वधै विकारा राम। बहु वधै विकारा सहसा एहो संसारा, बिन नावै पत कोई। पढ़ पढ़ पंडित वाद बखाने, बिन बूझे सुख ना होई। आवन जाना कदे ना चुके, माया मोह प्यारा। माया मोह सब दुख है, खोटा एहो वापारा। खोटे खरे सब परखियन, तित सच्चे कै दरबारा राम। खोटे दरगे सुतियन, उबे करन पुकारा राम। उबे करन पुकारा मुग्ध गवारा, मनमुख जन्म गवाया। विख्या माया जिन जगत पुलाया, साचा नाम न पाया। मनमुख संता नाल वैर कर, दुख खटे संसारा। खोटे खरे परखियन, तित सच्चे दरबारा राम। आप तरे किस आखिए, होर करना किछु न जाई राम। जित खा दे तित लाए सी, ज्यो तिस दी वड्याई राम। ज्यो तिस दी वड्याई आप कराई, वरी आम ना फुसी कोई। जग जीवन दाता कर्म विदाता, आपे बख्शे सोई। गुर प्रसादी आप गवाई है, नानक नाम पत पाई। आप करे किस आखी है, होर करना किछू न जाए। वडंस महला तीजा, सच्चा सौदा हर नाम है, सच्चा वापारा राम। गुरमति हर नाम वणजी है, अतमोल अफारा राम। अतमोल अफारा सच वापारा, सच वापार लगे वडपागी। अंतर बाहर पगती राते, सच नाम लिव लागी। नदर करे सोई सच पाए, गुर के शब्द विचारा। नानक नाम रते तिन्ही सुख पाया, सच है केवा पारा। हौ मैं माया मैल है, माया मैल परी जय राम। गुरुमति मन निर्मला, रसना हर रस पी जय राम। रसना हर रस पी जय, अंतर पी जय सात शब्द विचारी। अंतर खूटा अमृत परिया, शब्दे काड पिए पनिहारी। जिस नदर करे सोई सच लागे।

पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पे करें पुकारा राम। माया मोह अंतर मल लागे, माया के वा पारा राम। माया के वा पारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाए। बिख का कीड़ा बिख्यो लागा, बिष्टा माए समाए। जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोई न मेटन हारा। नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, होर मूरख कूक मुए गावारा। माया मोह मन रंगिया, मोहे सुध न काई राम। गुरमुख ए मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम। दूजा रंग जाई साच समाई, सच परे पंडारा। गुरमुख होवे सोई बूजे, सच सवारण हारा। आपे मेले सो हर मिले, होर

फिर होए ना फेरा राम, फिर होए ना फेरा अंत सच नवेड़ा। गुरमुख मिले वड्याई साचे रंग राते, सहजे माते सहजे रहे समाई। सच्चा मन पाया सच।

मेरा सतगुरु पूरा राम हो मन तन देवा किस काट शरीरा राम हो मन तन काट काट किस दे जो सतगुरु वचन सुनाए मेरे मन बैराग पया बैरागी मिल गुरु दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो।

गुरजेवड़ दाता मैं अवर न कोई, वडहंस महला चौथा। हौ गुरबिन खरी निवाणी राम, जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम समाणी, जप हर हर नाम से आया, जिस कारण हो तू सुनेंदी सो सज्जन हर कर पाया। एक दृश्य हर एक को जाता, हर आत्म राम पछाणी। हौ गुरबिन खरी निवाणी, जिन सतगुर पाया, तिन हर प्रभु मेल मिला।

हर हर नाम मेरा प्राण सखाए, किस दिन करी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे। हों वारी गुरसिख नी प्यारे। हर आपे पुरुख निरंजन सोई राम। हर आपे मूले करे सोई राम। जो हर प्रभावे सोई होवे, अवर न करना जाए। बहुत

नया न जाई कर था के सब चतराई गुरु प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर दिन अवर न कोई हर आपे पुरख निरंजन सोई वडहंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम सिमर अज्ञान गवाया गुरु ज्ञान अंजन गुरु पाया राम गुरु ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। वधंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल सुखदाता।

हर हर नाम हर राता, हर कृपा कर, गुर सतगुर मेल सुखदाता। सुन गुरमुख नाम, सब दिन से हो मैं पापा राम।

मार बिदारे हर प्रभ कृपा तारी सुख दाते दुख लाखे पाप सुन पापा सुन गुरमुख नाम सब दिन से हो मैं पापा जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोग तय शरीरा अनदिन सहज समाध हर लागी हर गतिया गहर गंभीरा जात अजात नाम जिन पाया तिन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरे मन पाया हर तारो हर तारो।

विखंपयंगा अनतरंगा गुरुमुख पार लंघाए हर गोहित चढ़वट पागी लंगे गुर सेवट शब्द कराए हम दिन हर रंग हर

तन प्रेम हर हर लाए चावक मन जिने गुरमुख जीतिया अकरो करावे शब्द पावे अपियो हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुरु वखाणी हर रंगी तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी तेजन दे राम पाया राम जित हर प्रभ जापे सा तन तन तुखाया राम जित हर प्रभ जापे सा तन सवासे तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी दिखम लगाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाए।

हर नाम गत मित जानिया, सब जन्म सफलो किया करते हर राम नाम वखानिया। हर राम नाम सलाए हर प्रभु हर भगत।

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाए पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन चाया, जन नानक।

ठाकुर माने से प्रधाने हर से रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कै सत कुरबाने श्लोक।

सास अगाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तू था अमयोग उठा सुख करे दुख नाश परम विनाश संते जग जगदीश ईश्वर जय जय मोह रहत विकार था के पंच ते संग टूटा कहो नानक तिन कन्ये वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडया नानक जाने सत संग।

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख ले हो दीन दयाला। मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर जन्म न मरता। दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छा फल पाये। राम मन इच पाये प्रभु आये मिटे जम के त्रासा। गोविंद गाया।

राम काट काट हर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा विराजे अगम अगोचर ऊंचा गुण के अंत किस कह न जाए कोई न सके पहुंचा आप उपाय आप

नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाए गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाए बिन गुर हर

हर नाम हम श्रेवे हैं, हर नाम हम पूजे हैं, हर नाम में ही मन राता, हर नाम में जेवड़ कोई अवर न सूजे, हर नामो अंत सदाता, हर नाम दिया।

सतगुरु मिले उल्टी भई भाई, जीवत मरे तो बूझ पाए, सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए, मंगे हर हर सेती लिवलाए, मन हर जप मीठा लागे पाई।

आज न आया, संध्या तर्पण करें गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुरु सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मिलाए, हर रस पी जन सदा तृप्ता से विचों आप गवाए। यह जग अंधा सब अंग कमावे, बिन गुर मग न पाए, नानक सत

हर का नाम सच्चा मन वसिया, नामे नाम समाए बिन सतगुरु सब जग बोराना, मन मुख अंधा शब्द ना जाने, झूठे परम तुला ना रहाओ, त्रै गुण माया परम तुलाया, हौ मैं बंधन कमाए, जमन मरण सिर ऊपर उभो, गर्भ जोन दुख पाए, त्रै गुण वरते सगल संसारा, हौ मैं विच पत खोई, गुरमुख होवे चौथा पद चीने, राम नाम सुख होई।

रहाओ आपे जल फल सगत है प्यारा प्रभ आपे करे सो होए सबना रिजक समांदा प्यारा दूजा अवर न कोई आपे खेल खिलाएंदा प्यारा आपे करे सो होए आपे ही आप निर्मला प्यारा आपे निर्मल सोए आपे कीमत पाएंदा प्यारा आपे करे सो होए आपे अलख न लखिया प्यारा आप लखावे सोए आपे गहर गंभीर है प्यारा तिस जेवड अवर न कोए सब कट आपे भोग वै प्यारा विच नारी पुरुष सब सोए नानक गुप्त वर्त दा प्यारा गुरमुख प्रगट होए सूरत मैला चौथा आपे ही सब आप है प्यारा आपे था पुथापे आपे वेख विकसदा प्यारा कर चोज वेख है प्रभ आपे आपे वंचन सबत है प्यारा आपे गुरमुख जापे जप मन हर हर नाम रस त्रापे अमृत नाम महारस मीठा गुर शब्दी चख जापे रहाओ आपे तीरथ तुलहरा प्यारा आप करे प्रभ आपे आपे जाल बतायदा प्यारा सब जग मछली हर आपे आप अपुल ना पुलई प्यारा अवर न दूजा जापे आपे सिंगी नाद है प्यारा तुन आप बजाए आपे आपे जोगी पुरुष है प्यारा आपे ही सब तापे आपे सदगुरु आप है चेला उपदेश करे प्रभ आपे आपे नाम जपाएंदा प्यारा आपे ही जप जापे आपे अमृत आप है प्यारा आपे ही रस आपे आपे आप सलाहदा प्यारा जन नानक हर रस त्रापे सूरत महला चौथा आपे कंडा आप तराजी प्रभ आपे तोल तुलाया आपे साहु आपे वणजारा आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर प्याय सुख पाया हर हर नाम निधान है प्यारा गुर पूरे मीठा लाया रहाओ आपे धरती आप जल प्यारा आपे करे कराया आपे हुक्म वर्तदा प्यारा जल माटी बंद रखाया आपे ही पौ पाएंदा प्यारा बन बकरी सिर हडाया आपे काष्ट आप हर प्यारा विच काष्ट अग्न रखाया आपे ही आप वर्तदा प्यारा पै अग्न ना सके जलाया आपे मार जीवाएंदा प्यारा सह लेंदे सब लवाया आपे तान दीवान है प्यारा आपे कारे लाया जो आप चलाए क्यों चली है प्यारे जो हर प्रभ मेरे पाया आपे जंती जंत है प्यारा जन नानक वजह बजाया सूरठ महला चौथा आपे सृष्ट उपायदा प्यारा कर सूरज चंद चनान आप निताणिया तान है प्यारा आप निमाणिया मान आप दया कर रखदा प्यारा आपे सुगड़ सुजान मेरे मन जप राम नाम निशान सत्संगत मिल त्याए तू हर हर बहुर न आवन जान रहाओ आपे ही गुण वर्तदा प्यारा आपे ही परवान आपे बच कराएंदा प्यारा आपे सच निशान आपे हुक्म वर्तदा प्यारा आपे ही फुरमान आपे भगत भंडार है प्यारा आपे देवे दान आपे सेव कराएंदा प्यारा आप दिवावे

ठाप आई दुर्मत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुखाया सब संगत पुरुष तुम्हारी पुरुष है पुरुष मिलिया गुरु पाया जिनको कृपा कही तुम्हारी नानक अतुल सहज सुख पाया अनदिन जागत रह बनवारी सोरठ महला चौथा हर सो प्रीत अंतर मन बेदया हर दिन रह न जाई जो मछली बिन नीर बिन सह क्यों नामे बिन मर जाई मेरे प्रभु कृपा जल देवो हर नाई हौ अंतर नाम मंग

गुरमुख जल पावे सुख सहजे हरिया पाए सुभाई। मन मुख पूखे देह जिस डोले बिन नावे दुख पाई। जन्म मरे फिर जूनी आवे दरगे मिले सजाई। कृपा करें तम हर गुण गावे हर रस अंतर पाई। नानक दीन दयाल पए है कृष्णा शब्द बुझाई। सूरठ महला चौथा पंच पदा अचर चरे ता सिद्ध होई सिद्धि ते बुद्ध पाई। प्रेम के सर लागे तम पीतर ता श्रम काटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वडियाई। गुरमत राम नाम पर गासो सदा रहूं शरणा।

नाही क्या तिस्ता मोहताजा रहाओ जिन हर त्याया सब किस तिस्ता तिसकी पूछ गवाई ऐसा तन दिया सुख दाते निखुट न कभी जाए।

सूत के पाला। सोरठ महला पंजवा कर पहला चौथ पे। गुरु गोविंद सलाहिए पाई मन तन हृदय पार। साचा साहिब मन वसै पाई एहा करनी सार। जित तन नाम न उपजै पाई से तन होए छार। साध संगत को वारिया भाई जिन एक अंकार आधार। सोई सत आराधना पाई जिसते सब किछ होए। गुरपुरे जान आया पाई तिस बिन अवर न कोए रहाओ। नाम विहुने पच मोए भाई गणत न जाए गणी। विन सच सोच न पाई है भाई साचा अगम धनी। आवन जान न चुकई भाई झूठी दुनी मणी। गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामे एक कणी। सिमरत शास्त्र सो दिया भाई विन सतगुर परम न जाए। अमित कर्म कर था क्या भाई फिर बंधन पाए। चारे कुंडा सो दिया भाई

हाथ खड़ा है निर्मला भाई, निर्मल साते सोए, नजर करे अपनी पाई तिस प्राप्त होए। कोट मदे जन पाए भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा दो तुके, जो लो पाओ अभाव इह माने, तो लो मिलन बुराई, आन अपना कर्त बिचारा, तो लो बीच बिखाई, माधवे ऐसी दिहो बुझाई, सेवो साध गहो ओट करना, ने बिचरे मोत चसाई, रहाओ, रे मन मुग्द अचेत चंचल, चित तुम ऐसी हृदय न आई, प्राण पत त्याग आन तू रचिया, उर्जो संग बैराई, सोग न व्यापे, आप न थापे, साध संगत बुध पाए, साकत का बतना यूं जानो, जैसे पान चुराई, कोट पराद अच्छा दियो ए मन, कहना कछु न जाई, जन नानक दीन शरण आयो प्रभु, सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा, पुत्र कलत्र लोक गृहवंता, माया संबंधे ही, अंत की बार को खरा न होसी, सब मिथ्या अपने ही, रे नर काहे पपोरो देही, उड़ जाए गो

जन नानक प्रभ कृपा पारी, मैं सतगुरु ओट गए सोरठ महला पंजवा। गुरपुरा पे प्यो वड पागी, मने पया तरगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा। अपने सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाछे सुख सह।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है बिहोन हारा, कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज शोभा कारज आया राखे, नानक तो गुरु पूरा पेटे हो सगले दुख बिना से, सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेखे सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी, करण करावन हार स्वामी आपन हाथ संजोगी, मन मेरे जिन अपना कर्म गवाता तिसके पाने कोई न फूला, जिन सगलो ब्रह्म पछाता।

सेवा। खोजत खोजत खोज बिचारियो राम नाम सत सारा, किलबिख काटे निमख अरादया गुरमुख पार उतारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा कृपत मन पावे, साधु अमृत बानी रहाओ मुक्त पुगत जुगत सच पाये। सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे, पूरन पुरख विधाता। श्रवणी सुनिए रसना गाये हृदय त्याये सोई, करण कारण

साध संग नानक गुण गावे सिमरै सदा गोपाला सोरठ महला पंजवा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाखे प्रभ सरणा प्रगटे पले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुवाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुर पूरे तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई भगत वत्सल दयाला संता की पैज रखबा आया आग बिरद प्रतिपाला। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो सर्व वेला मुख पावो जरा मरा पाप सब नाठा गुण गोविंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा कर दूजा चौपदे।

ए मन तै को देखा सुनमीता हूँ तेरी शरणाई आया प्रभु मिलो देव उपदेशा मान न की जय शरण परी जय करे सुफला मनाये सुनमीता जियो पिंड सब तन अर्पी जय क्यों दर्शन हर जियो पाई है कयो अनुग्रहो प्रसाद संतन के हर नामा है मीठा जन नानक को गुर कृपा तारी सब अकुल निरंजन डीठा सोरठ महला।

राजा न होए कैसोरे, करो बेनती सतगुर अपने, मैं मूर्ख देओ उपदेशोरे। मैं मूर्ख की के तक बात है, कोट परादी तरियारे, गुरु नानक।

ऊद कमल दिखाया, देखो अचरज भया, जे ठाकुर को सुनत अगाध बोध, सो हृदय गुरु दया रहाओ। जो दूत मोहे बहुत संतावत, ते भयानक भया, करे बेनती राख ठाकुर ते, हम तेरी शरणया। जह पंडार गोविंद का खुलिया, जे प्राप्त ते लया, एक रतन मोको गुरु दीना, मेरा मन तन शीतल थया। एक बूंद गुर अमृत दीनो, ता अटल अमर न हुआ, भगत पंडार गुरु नानक को सौंपे, फिर लेखा मूल न लया। सोरठ महला पंजवा, चरण कमल स्यो जा का मन लीना, सेजन कृत अभाई, गुण अमोल जिस हृदय न वस्या, ते नर कृष्ण त्रिपाई। हर आराधे अरोग अनबाई, जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही, तिस लाख बेदन जन आई रहाओ। जे जन ओट गई प्रभ तेरी, से सुखिए प्रभ सरने, जे नर बिसरिया पुरख विधाता, ते दुखिया मैं गणने। जे गुरमान प्रभु लिवलाए, ते महा आनंद रस करया, जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए, ते नरक कोर में परया। जितको लाया तित ही लागा, तैसो ही वरतारा, नानक से पकरी संतन की।

अभिमानी लोभन में लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को यही सुहावे देख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप पावे रहाओ अमलम स्यों अमली लग पायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रखना साग लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की।

हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

तुम दान देहो मेहरवाना, तुम करो कला हम पलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बिधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाते, कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन के पाछे, सोरठ महला पंजवा कर दूजा, माप गर्भ में आपन सिमरन दे, कह तुम राखन हारे, पाव के सागर अप

जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे तब पाने किन में अवर किने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे साज संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही।

आप पुरुष निर्वाणी सोरठ महला पंजवा। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट सपाणी, संत हमारा गहना। हम संतन से बन आई, पूरब लिखिया पाई, ए मन तेरा भाई रहाओ। संतन से मेरी लेवा देवी, संतन से व्योहारा, संतन से हम लाहा खाटिया, हर भगत परे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का तोखा, कर्म राय अब कहाँ करेगो, जो फाटियो सगलो लेखा। मां आनंद पाए सुख पाया, संतन के प्रसादे, कहो नानक हर्षो मन मानिया, रंग रते विस्मा दे। सोरठ महला पंजवा, जेती समगरी देखो रे नर, तेती ही छड़ जानी, राम नाम संग कर व्योहारा, पावे पर निर्वाणी।

ने गुणगावत आराध नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन पैस सवारी गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नान प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरत महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग राता रहाओ सतगुर नाम निधान दृढ़ाया चिंता सगल विनाशी कर कृपा अपनो कर लीना मन वस्या अविनाशी ताको विघ्न ना को लागे जो सतगुरु अपने राखे चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस्ता के कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दास ताके बलिहारे जिन पूरन पैज रखाई सोरठ महला पंजवा माया मोह मगन अंधियार है देवन हार न जाने जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो परमाने मन मूड़े देख रहे हो प्रभ स्वामी जो किच करे सोई सोई जाने रहे न कछु छानी रहाओ जेवा स्वाद लोग मद मातो उपजे अनक दिकारा बहुत जोन परमत दुख पाया हूँ मैं बंधन के पारा देखिवाड़ अनक पर्दे में परदारा संग थाके चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ठाके दीन दयाल पूरन दुख पंजन तुम बिन ओट न पाई काड ले हो संसार सागर में नानक प्रभु शरणाई सूरठ महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सहाय कथा कीर्तन सुखदाई गुरपुरे की बाणी जप अंग करो नित पाणी हर आचा सिमरो भाई साध संग सदा सुख पाये हर विसर न कभू जाई रहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरे सो जीवे जिसनो कर्म परापत होवे सो जन निर्मल थीवे विघ्न विनाशन सब दुख मासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से ही फल पाए हर की कथा सुहेली आद अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन से मोह मेरा और तेरा बिन से अपनी सारी संतो यहाँ बताओ कारी जित हो मैं गर्भ निवारी रहाओ सर्व पूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी

पाये गुरु दुआरी, कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी। पोरठ महला पंजवा हर दूजा दो पदे इको ओंकार। सतगुर प्रसाद सगल वनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में किया ऊंच नीच में जोत समानी, कट कट माधो जिया संतो कट कट रहा समान।

स्वर्ग निवासी सदा अलेपा सब में रहा समायो सोरठ महला सन्यवा जा के सिमरन हुए अनंदा बिन से जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर ना कृष्णा।

जगत जीवन कैसे पावे। सूरठ महला पंजवा, अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई, गुण निदान भगतन को बर्तन।

कीमत कहन न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभ पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे,

सतगुरे अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया। मेरा गुरपूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो, गुरु नानक भय दयाला, जय जयकार पै जग पीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ मैला पंजवा, हमरी गणत ना गणिया काई, अपना

ਨਾਨਕ ਸਦਗੁਰਬਾਣ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ।

राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गावो, मन तन देह सुखाली रहाओ। सचित उदाहरण सतगुरु मेरा, मोह तिसका परवासा, बख्श ले सब सच्चे साहिब, सुन नानक की अरदासा। सोरठ महला पंजवा, बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर, सगले रोग बिदारे, गुरपूरे की सरणी उबरे, कारज सगल सवारे। हर जन सिमरिया नाम आधार, पाप उतारिया सतगुर पूरे, अपनी कृपा धार रहाओ। सदा आनंद करे मेरे प्यारे, हर गोविंद गुर राखिया, वड्डी वड्याई नानक करते की, साच सबद सत पाखिया। सोरठ महला पंजवा, तय कृपाल स्वामी मेरे, तिथा तय दरबार, सतगुर ताप गवाया।

हर के चरण हृदय उर्धार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई, दुख किलबिक काटन हार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो पाई,

हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ पए दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुर रखवाला होआ पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ साप दया प्रभ आप मिटाया जन की इलाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाए हलत पलत प्रभ दोवें सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सोरठ महला पंजवा जी जंत्र सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेवक की आपे राखे पूरन पई बढ़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुर पूरे पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ अंदिन नानक नाम ध्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ

अब टूडन कतो न जाई, गोविंद फेटे गुरु गोसाई रहाओ। आया प्रभ दरबारा ता सगली मिटी पुकारा, लबद अपनी पाई ता कत आवे कत जाई। कह साच न्याय निबेरा, ऊहा सम ठाकुर समचेरा, अंतर जामी जाने बिन बोलत आप पछाने, सर्व स्थान को राजा ते अनहद शब्द अगाजा।

सुख कल्याण मंगल च्यों कर आए कर स्नाना रहाओ। साची गुर वड्याई ताकी कीमत कहन ना जाई, सिर साहा पात साहा गुर पेटत मन ओ माहा। सगल पराशत लाथे मिल साध संगत कैसा थे, गुण निधान हर नामा जप पूरन होए कामा। गुर कीनो मुकुट द्वारा।

कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर त्याय अंदिन सुकृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए कोट जन्म के किल विखनासे हर चरणी सितलाए उस्तत करो सदा प्रभ अपने जिन पूरी कल राखी जी जंत सब पय पवित्रा सतगुर की सत्साखी विघन विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया होए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी भय दयाला जब अनद रहो गुर चरणा पौ कतह नहीं प्रभ शरणा रहाओ तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अविचल नीव उसारी बल तन तकिया तेरा तू पारो ठाकुर मेरा जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु आप तराया कर कृपा नाम रह।

सास सास प्रब त्याये, हर मंगल नानक गाइए। सोरठ महला पंजवा, सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा। पूरे गुर कृपा तारी, तागत पई हमारी। हर की प्रेम

दास का सदा रखवाला पर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रहाओ वड पागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जप जीवे से वड पागा हर अमृत बाणी गावे सादा की दूरी नावे अपना नाम।

पूरी प्रभ रव रहा पर पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म विटो कुर्बाना गुर के चरण कवल रिद तारे विघ्न ना लागे तिल का कोई कार्य सगल सवारे रहाओ मिर साधु दुर्मत खोए पतत पुनीत सब हुए रामदास सरोवर नाते सब लाते पाप कमाते गुण गोविंद नित गाय साध संग मिल त्याय मन बाचत फल पाए गुर पूरा हृदय ते आए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक ना

सिद्ध करत लाल तब चतुर पात रो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर चर कै पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हों हों पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो कृप

सर्व गुना निध गायो, सर्व गुना निध रायो, रहाओ दूजा। सोरठ महला पंजवा

पाए सवाई लख अपराध कमावे कर उपदेश छिड़के बहु पांती बहुड़ पिता दल लावे पिछले अवगण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब विद जाने ता किसते आख सुनाये कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैज रखाये अवर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाये होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने विनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सूरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पय आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले सांठे जग जीवन नाम तुम

आपे दाता आपे भुगता, क्या इन जंत विचारा, क्या गुण तेरे आख वखाने, कीमत कह न जाई, पेख पेख जीवे प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी, सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, पूनी बात न काई, रहाओ करते पुरख

सहज सुभाए मिले गोपाला, नानक साच पति ने सोरठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे।

सवारी मन सिंधिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया। संतो इस दिन अवर न कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ प्रभ अपने वर्गी ने सगल जी वक्ति ने जन नानक नाम।

जो शुद्ध भावे मोहे सियाणप कछु ना आवे। हम बारिक तौ शरणाई प्रभु आपे तेज रखाई। मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रति।

आज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संग हर ध्याया आठ पहर आराध्यो हर हर मन किंदिया।

मन तन हर दर्श समावे, नानक दास सच्चे गुण गावे। सोरठ महला पंजवा, गुर मिल प्रभु चितारिया, कार्य सब सवारे।

सदा हर जाते, प्रभु बालक राखे आते, शीतला छाप रहाई, बिघन गए हर नाई। मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला, हर बात सुनी पग

हर आराध सबो किच पाये, कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी,

दुख रोग का डेरा बनना, परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी,

रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला कैथे ओथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप राखे कट कट शब्द सो पाके।

हाओ आप सहाय होआ सच्चे दा सच्चा टोआ आप सहाय होआ सच्चे दा सच्चा डोआ तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ सरनाई सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा ता जप

हमारी प्रभु राखी तेज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छे सोई।

कृपा करे जिस प्राण पथ दाता सोई संत गुण गावे प्रेम पदत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ कहर हर का जस रवना बिखे खगौरी लाती संग मिलाए ली।

खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे को न टिके विकारी, गुर पूरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उदरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म।

नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूरब लिखिया पाया, सूरत महला पंजवां।

को राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया। रहाओ गुरपुरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास वखाणी, निर्मल अखत कहानी। सोरठ महला पंजवा, ऊखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे। ऊखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों अलकाइए, जित सिमरन दर गए मुख उजल, सदा सदा सुख पाइए। रहाओ जो कामी काम लुभावे, क्यों हर दास हर जस भावे।

सोरठ मैला पंजवा सुख सांद कर आया निंदक के मुख छाया पूरे गुर पहराया दिन से दुख सवाया संतो साचे की वड्याई जिन अचरज सोग बनाई रहाओ। बोले साहिब कै भाण बोले साहिब कै भाण दास बाणी ब्रह्म वखाण।

हर नाम हृदय उधारे, तिन सबदे थोक सवारे, गुर पूरे तुस दिया, फिर नानक दुख न सिया। हर नाम हृदय उधारे, तिन सबदे थोक सवारे, गुर

जिसनों बख्श लें मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा, नानक प्रभ शरणाई, मुख निंदक कै छाई। सोरठ महला पंजवा, आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कथु नाही। साचे साहिब सिओ मन मानिया, हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करें प्रतपाला, अचरज तेरी वड्याई, नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवा, नाल नारायण मेरे, जमदूत ना आवे नेरे, कंठ लाए प्रभ राखे, सतगुर की सच साख है, गुरपूरे पूरी कीती, दुश्मन मार विडारे सगले, दास को सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए, सुख सांद फिर आए, नानक प्रभ शरणाए, जिन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा, सर्व सुखा का दाता, सतगुरता की सरणी पाई है, दर्शन पेटत होत आनंद।

शरण आई रहाओ तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन भाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राखे जय जयकार होत जग पीतर सबद गुरु रस चाखे। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए सो

पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत नह की नी रहाओ। मुकत पंथ जान्यो तैनाहिन तन जोरन को धाया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंदाया। ना हर पज्यो ना गुरजन सेव्यो नै उपजो कछ ज्ञाना कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना। बहुत जन्म परमत तै हार्यो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर पज नानक बात बताई। सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण विचारो जेह सिमरत गनकासी उदरी ताको जस उधारो रहाओ। अटल भयो त्रू जाके सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए विद को स्वामी तै काहे बिसराया। जब ही शरण गई कृपा निद गज ग्रहते छूटा महमा नाम कहां लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जाने।

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कहु कैसी, धर्म कौन फुन करी। कौन नाम गुरजा कै सिमरे, पाव सागर को तरी। कल मैं एक नाम कृपा निध, जाहि जपे गत पावे। और धर्म ताके सम नाहिन, एह विद वेद बतावे। सुख दुख रहत सदा निर्लेपी, जा को कहत गुसाई। सो तुम ही मह बसे निरंतर, नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नामा, माई मैं केविद लखों गुसाई। महा मोह अज्ञान तिमर मोह, मन रहो उरझाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो, नह अस्थिर मत पाई। बिख्या सकत रहो निस्बासर, नह छूटी अदमाई। साध संग कब हो नहीं कीना, नह कीरत प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुन, राख ले हो सरनाई। सोरठ महला नामा, माई मन मेरो बस नाहे। निस्बासर बिखियन को तावत, के विद्रोह को ताहे रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सुन।

मरम न जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल विनाशी, तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जम की फांसी। सोरठ मेला नावा रे नार ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रजपच, रहत नहीं दिन चार, तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कछ बिगड़ियो नाहिन, पाजले नाम मुरार। कहो नानक निज मत साधन को, पाक्यो तोहे पुकार। सोरठ मैला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई, सगल जगत अपने सुख लागियो,

ओ संग छाड़ सब पागे। कहो कहा जिया मन बौरे को इनस्यो निहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन जस ता को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यो पयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो। नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश कहां पयो जो मूड मुडायो। पगवो कीनो पेश रहाओ साथ छोड़ के चूठे लागयो। जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखे।

वतन बिसराना। रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी, कहो नानक हर बिरद पछानो पूले सदा प्राणी। सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने रहाओ, नह निंदिया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर शोभ ते रह न्यारो, नाहे मान अपमान।

दाता गुर कृपा जे नरको कीनी ते एह जुगत पछानी नानक लीन पयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। सोरठ महला नावा प्रीतम जान ले हो मन माही अपने सुख से ही जग पांदे हो को काहू को ना ही रहो सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहु जिसके रह विपत परी सब ही संग छाड़त को ना आवत ने रह कार की नार बहुत हित जांस्यो सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर पागी ए बिद को व्योहार बन्यो है जांस्यो न्यो लगायो अंत बार नानक बिन हर जी को कामना आयो। सोरठ महला पहला कर पहला अष्टपदियां चौतुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुबदा ना पड़ो हर बिन होर ना पूजो मरह मसान ना जाई तृष्णा रात ना पर कर जावा।

एको चेतै मनुआ ना डोलै, पावत वर्ज रहावै। सहजे माता सदा रंग राता, साचे के गुण गावै। मनुआ पौन बिंद सुखवासी, नाम वसै सुख पाई। जेबा नेत्र सोत्र सचराते, जल बूझी तुझे बुझाई। आस निरास रह बैरागी, निज कर तारी ला।

वाणी गुर के शब्द पछाता अचिंत काम करें प्रभु तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वस्या सब काज सवारण हारा ओना की रीस करे सो विगुचे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुरु

प्रम्पो हो वै नाथ, मिल संत सवा मन मांझी है पाई, हर के नाम निवास। मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई, कमल हो वै प्रगास। गुरु बचनी सुख उपजै पाई, सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िए पाई, होइए सब की तूर। कट कट ब्रह्म पसारिया पाई, पेखे सुने हजूर। जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिए चूर। करण करावन समर्थो पाई, सर्व कला भरपूर। प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश। तिस पावे ता मेल ले पाई, हृदय नाम निवास। गुरुमुख कमल प्रगासी है पाई, हृदय होए प्रगास। प्रगट पया प्रताप प्रभ पाई, मौलिया तरत आकाश। गुरपूरे संतोखिया पाई, एनस लागा पाओ। रसना राम रवे सदा पाई, साचा साध सुआओ। करनी सुन सुन जीविया पाई, नेचल पाया थाओ। जिस प्रतीत ना आवई पाई, सो जीड़ा जल जाओ। बहुगुण मेरे साहिब है पाई, हों तिसके बल जाओ। ओ निर्गुणिया रे पालदा पाई, देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास पाई, गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा पेटी है पाई, पूरा तिस करमाओ। तिस बिन कड़ी ना जीवी है पाई, सर्व कला भरपूर। सास गिरास ना विसरै पाई, पेखो सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई, सर्व रहा भरपूर। जिना प्रीत न लगिया पाई, से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया पाई, पौजल दुख संसार। कर कृपा नदर निहालिया पाई, की तोन अंग अपार। मन तन शीतल होया पाई, पोजन नाम आधार। नानक तिस शरणागति पाई, जे किल बिख काटनहार। सोरठ महला पंजवा। मात गर्भ दुख सागरो प्यारे, तैं अपना नाम जपाया। बाहर काढ़ बिख पसरिया प्यारे, माया मोह वधाया। जिसनों की तो

तुद बिन अवर ना करन हार प्यारे अंतर जामी एक रहाओ। कोट जन्म प्रम आया प्यारे अनक जोन दुख पाए साचा साए विसरिया प्यारे बहुती मिले सजाए। जिन पेटे पूरा सतगुरु प्यारे से लागे साचे नाए तिना पिछे छुटिया प्यारे जो साची शरण आए।

ज्ञान तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले।

पै वसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा सिगारी नाओ मन कदे न मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावे नानका कर्म मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावणी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावे अपना गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रती हर रंग चोले हर जैसा पुरख न लब्बई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल बोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया दाता करता आप पोगन हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया श्लोक महला तीजा हौ मैं जलते जल मोए प्रम आए दूजै भाए पूरे

सफलियो सतगुर सेविया तन जन्म प्रवान जिना सतगुर जीवंदिया मोया ना विसरै सेई पुरख सुजान कुल उधारे आपना सो जन होवै प्रवान गुरमुख मोए जीवंदे प्रवान है मन मुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाए पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम त्याई है सत संगत साधु लग हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूरख लाई है हौ लाला गोला तुद मैं हुक्म फरमाई है हौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है श्लोक महला तीजा पूरब लिखिया कमावना जे करते आप लिखियास मोठ गौली पायन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मोयास जिन्नी गुरमुख नाम न चेत्यो से बहन न मिलनी पास दुख लागा बहु अतकणा पुत कलत ना सास कोई जास लोकां विच मुह काला होआ अंदर उबे सास मन मुखानो को ना विसही चुक गया वे सास नानक गुरमुखानो सुख अगला जिना अंतर नाम निवास महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए सतगुर का पाना अन दिन करे से सच रहे समाए दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे वेकार मन मुख आप स्वार्थी कारज ना सकें सवार नानक पूरब लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुल आपे जगत उपाय कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हो मैं लेखा मंगी है फिर आवे जाया जिना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा कुमाया श्लोक महला तीजा माया ममता मोहनी जिन विन दंता जग खाया मन मुखा दे गुरमुख उबरे जिनी सच नाम चित लाया बिन नावे जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया तंदा करतिया नेफल जन्म गवाया सुखदाता मन ना वसाया नानक नाम तिना को मिलिया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा कर ही मैं अमृत भरपूर है मन मुखा साध न पाया ज्यो कस्तूरी मिर्ग ना जाने परम दा परम पुलाया अमृत ताज बिख संग्रह है करते आप खुआया गुरमुख विरले सो जी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन शीतल होया रसना हर साध आया सबदे ही नाउ उपजे सबदे मेल मिलाया बिन सबदे सब जग बोराना बिरथा जन्म गवाया अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पौड़ी सो हर पुरख अगम है कहो कित विद पाई है तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो जन क्यों त्याई है निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाई है जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाई है।

फिर मिलन ना पाए नहीं जब मैं ते मर जाए। सहसा रोग ना छोड़ई दुख ही मैं दुख पाहे। नानक नदरी बख्श ले सब दे मेल मिलाए मैला तीजा। जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ। ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ। नानक गुरुमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी। जो से मैं सत मुरार से पवजल तर गया। जो बोले हर हर नाओ तिन जम छट गया। से दरगे पैंदे जाहे जिना हर जप लया। हर सेवे से ही पुरख जिना हर

नानक नाम रत्या बल जाऊं पौड़ी। सिर हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर जपिया। श्लोक महला तीजा। अंतर ज्ञान ना आयो जित कुछ सोजी पाए, विम गिठा क्या साला ही है अंधा अंध कमाए। नानक शब्द पछाणिए, नाम वसै मनिया।

तीजा हर गुण तोट ना आवई कीमत कहन न जाए नानक गुरमुख हर गुण रवे गुण में रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी कड पैंदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकाई बहु बहु विध पांत कर कोई बूझे बूझन हारा अंतर विवेक कर सो बूझे एहो विवेक जिस बुझाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर।

गुरुमुख चित न लायो अंत दुख पहुताए, अंदरों बारों अंधिया सुध ना काई पाए। पंडित तिन की बरकती सब जगत खाए, जो रखते हर नाए। जिन गुर के शब्द सलाहया हर स्यो रहे समाए, पंडित दूजे पाए बरकत ना हो वही, ना कन पल्ले पाए। पर थके संतोख ना आयो अम दिन जलत विहाए, कूक पुकार ना चुकई ना संसार विचों जाए। नानक नाम विहोणिया मोकाले उठ जाए पौड़ी, हर सज्जन मेल प्यारे मिल पंथ दसाई। जो हर दसे मित तिस हो बल जाई, गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ते आई। हर सेवी प्यारा मित सेव हर सुख पाई, बलहारी सतगुरु तिस जिन सो जी पाई। श्लोक महला तीजा, पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुग चार। त्रै गुण माया मूल है विच हो मैं नाम विसार,

गुरुमुख आप निवारी है सब राज सुष्ट काले, नानक गुरुमुख बुझी है जा आपे नजर करे महला तीजा। जिन गुरुमुख नाम से आया आए ते परवान, नानक कुल उदार है अपना दरगे पावे मान पौड़ी। गुरुमुख सखिया सिख गुरु मेला आया,

पाली है किते काम न आई। जन लावो चित हर नाम स्यो अंत होए सखाई। जन नानक नाम ते आया गुरमुख सुख पा।

साधु संत चढ़ जाते, इनके कर्म कर्म कार्य सब पवित्र हैं, जो बोले हर हर राम नाम हर साते, जिनके पोते पुन्न हैं, से गुरुमुख सिख गुरु।

पौड़ी। जो हर नाम ते आए दे से हर हर नाम रते मन माही, जिना मन चित इक आराध्या तिना इक सुबिन दूजा को नाही। से पुरख हर सेम दे जिन तुर

तन तन भाग तिना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहतिया। तन तन भाग तिना संत जना जो हर जस श्रवणी सुनतिया। तन तन भाग तिना साज जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनतिया।

हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खा दिया सब रोग गवाते दुखा कान जिना सास गिरास ना

नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पिर कै पाणे।

मैं कपटे कपे कपाई सतगुर का पाना चित ना आवे अपने स्वाय फिराही कृपा करे जे अपनी ता नानक शब्द समाही। महला चौथा मन मुख माया मोह व्यापे दूजे पाए मनुआ फिर नाहे अन दिन जलत रहे दिन राती हों मैं खपे खपाहे अंतर लोभ मां गुबारा तिनके निकट न कोई जाहे ओए आप दुखी सुख कभू न पावे जन्म मरे मर जाहे नानक बख्श ले प्रभ साचा जे गुरचरणी चित लाहे पौड़ी। संत भगत परवान जो प्रभ पाया सही विचखण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निधान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पै पुनीत हर की रचनाया। श्लोक महला चौथा गुरुमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाये नामो चित वे नाम पढ़े नाम रहे लिवलाए नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाए सतगुरु मिले नाम।

है, करते मैं तुझ बिन अवर न कोई, तुझ आपे सिष्ट सिर जिया आपे सुन गोई, सब इको शब्द वर्तदा जो करे सो होई, वड्याई गुरुमुख दे प्रभ हर पावे सोई, गुरुमुख नानक आराध्या सब आखो तन तन तन गुर सोई, सो दे राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद। बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए सिर नाई, ओइले जारे ओइले गाडे, तेरी गत दोहू ना पाई,

पाई। दर्ब संच संच राजे मुए, गडले कंचन भारी। वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए, रूप देख देख नारी। राम नाम बिन सबै बिगूते, देखो निरख शरीरा। हर के नाम बिन

मरकट लो सब लोग कुटुंब भयो आ गए हंस अकेला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ झूठी माया।

निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ, कस कुंकम चंदन गारिया, बिन रैनो जगत निहारिया, पूत पिता इक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया, जाचक जन दाता।

पिखारी अछत राज बिछरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं अब कछ मर्म जनाया अनिक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट

पानी आपन बापे नाही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास।

माही ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुर प्रसाद।

साहिब अपना अवर न जाचो कोए, नानक ता का दास है बिंद बिंद चुक चुक होए, साहिब तेरे नाम बिटो बिंद बिंद चुक चुक होए रहाओ। तनासरी महला पहला, हम आदमी हाँ इकदमी मोलत मोत न जाना, नानक बिनवे तिसे सरेवो जाके जी पराना, अंधे जीवना विचार देख केते के दिना रहाओ, सास मास सब जियो तुम्हारा तू मैं खरा प्यारा, नानक साहिर एक कहत है सच्चे परवदगारा, जो तू किसे न देही मेरे साहिबा क्या को कड्डे गहना, नानक दिन मैं सो किस पाये पूर्व लिखे का लेना, नाम खसम का चितना किया कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया।

क्यों सिमरी सिमरिया नहीं जाए, तपे ही आओ जीड़ा बिल लाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहा वक्खर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीने ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तेरे आसमाए, तुझ बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे की तै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुन उठ चलना मोत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, बिन नजरी नानक नहीं कोए, श्री मेला पहला, नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हर्ष्यो चित लागे फिर काल न खाए, रहा सच सिमरिए हो वे प्रगास, ताते बिखिया मह रह उदास, सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, पंत नानक करे विचार, साची बाणी स्यो तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार, तनाफरी मैला पहला, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चक्षण होए, जिन बोले जाने सब सोए राव, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले ताक, जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सब्बा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखन तेरा नाओ,

संसार तुद पावे अदि परवान। नानक जाने जान सुजान तना फ्री मैला पहला। काया कागद मन परवाना सिर के लेख ना पड़े आना। दरगे करिए तीने लेख खोटा काम ना आवे वेख। नानक जे विच रूपा होए खरा खरा आखे सब कोई रहाओ। कादी पूर बोल मल खाए ब्राह्मण नावे जिया काए। जोगी जुगत न जाने अंध तीने उजाड़े का बंद। सो जोगी जो जुगत पछाने गुर प्रसादी एको जाने। काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे। सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप करे सगले कुलतारे। दान सुबंग सोई दिल धोवे।

सती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंजनो मोहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाम वा।

तन अखुट नान खुटे ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए, अपने सतगुर को सदबल जाए, गुर कृपा से हर मन वसाए, से तनवंत हर नाम लिवलाए, गुर पूरे हर तन पर गासिया, हर कृपा से वसे मन आए रहाओ, अवगुण काट गुण हृदय समाए, पूरे गुर कैसे सुवाए, पूरे गुर की साची बाणी, सुखमन अंतर सहज समाणी, एक अचरज जन देखो भाई, दुखदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसे मन आए, सब में वसे प्रभ एक को सोए, गुरमति कट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनात्री मैला तीजा, हर नाम तन निर्मल अच अपारा, गुर के शब्द परे पंडारा, नाम तन बिन होर सब दिख जान, माया मोह जले अभिमान, गुरमुख हर रस चाखे कोए, तिस सदा आनंद होवे दिन राती, पूरे पाक प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरते ते लोए, जो चाखे सो निर्मल होए, निर्मल नाम हो मैं मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिस सदा हरख नाही कदे सोग, आप

जाए शांत न पाए, सतगुरु मिले सब कृष्ण बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए, तनासरी मैला पी जाए। सदा तन अंतर नाम समाले, जी जंत जिन्हें प्रतिपाले, मुक्त पदार्थ सिन को पाए, हर के नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावे, अंतर प्रगाठ हर नाम ते आवे रहाओ, ए हर रंग गूड़ा तन पिर होए, सांत सिगार रावे प्रभ सोए, हों मैं विच प्रभ कोए ना पावे।

वड़ियाई पाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साथ रते प्रभ आप मिलाए, तनासी मैला तीजा, जग मैला मैलो हो जाए, आवे जाए दूजे लो भाए, दूजे पाए सब परज विगोई, मन मुख चोटा खाए अपनी पत खोई, गुर सेवा ते जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पत उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उभरे हर शरणाई।

सो तन पुरख जिस नाम प्यार। तिन प्रभ साचे इक सच लाए, उत्तम वाणी सबक सुनाए। प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार। तनास जी मैला तीजा, जो हर से मैं तिन बल जाओ। तिन हृदय साच सच्चा मुखनाओ, साचो साच संभालो दुख जाए। साचे शब्द वसै मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए। सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा अगन बुझाए। अंतर सांप सहज सुख पाए, गुर के पाने चले ता आप जाए। साथ महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी। मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुर पेटे ता सुख पाए। हों मैं विच्चों ठाक रहाए, किसनो कहिए दाता एक सोए। कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा। नानक साचे साचा धावा, त्रासी मैला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन हुए कैसे हर पाए। ए मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे हर देव डियाई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे, पाइस मन की सो जी पावे। मन में मत मैगल मिकदारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा। मन असाध साधे जन कोई, अचर चरे ता निर्मल होई। गुरमुख ए मन लया सवार, हौ मैं विच्चों तजै विकार। जो तुर रखियन मेल मिलाए, कदे न विछड़े शब्द समाए। अपनी कला आपे प्रभ जाने, नानक गुरमुख नाम पछाने। त्रासी मैला तीजा, काचा तन संचे मूर्ख गावार। मन मुख पूले अंध गवार, विख्या कै तन सदा दुख होए। ना साथ जाए ना प्राप्त होए, साचा तन गुरमति पाए। काचा तन सुन आवे जाए रहाओ, मन मुख पूले सब मरें गवार।